0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर

सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित

0: ये थी आज की वंदना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: अच्छी जिंदगी अच्छे उसूलों पर अमल करने का नाम है। दोस्तों, अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं, अच्छे आदमी की क्या पहचान है, अच्छी जिंदगी गुजारने के उसूल क्या हैं? अच्छी जिंदगी वो है जो खुद के लिए भी फायदा मंद हो और दूसरों के लिए भी। अच्छे काम करने से हर इंसान खुश होता है और बुरे काम करने से हर इंसान शर्मिंदा होता है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। जो इंसान दीनी और दुनियावी एतबार से सादा जिंदगी गुजारता है, वो आदमी हर मुआशरे में अच्छा कहलाया जाता है और अच्छे आदमी की पहचान भी यही है। अच्छा आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, दूसरों को देखकर नहीं जलता, बल्कि वो हर एक के काम आता है और हर एक के दुख दर्द में शरीक होता है। देखिए, जो इंसान हमेशा खुश रहे, सुकून से रहे, दिलचस्पी से काम करे, मेहनत से न घबराए, दूसरों से मिलजुल कर रहे, उनके काम आए, वो इंसान बेशक अच्छा इंसान है। उसकी जिंदगी को हम अच्छी जिंदगी कह सकते हैं। अच्छी जिंदगी कुछ उसूलों और कायदों के तहत गुजारी जाती है। ये उसूल बुजुर्ग और उस्ताद बताते हैं, क्योंकि वो खुद भी इस पर अमल करते हैं। क्या खूब किसी ने कहा है, जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते, काम दोजख के किए जन्नत के हैं उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना हर पार सा के वास्ते। हमारी जिंदगी मुख्तसर जिंदगी है, इस जिंदगी के शबो रोज किस चीज की आरजू और जस्तजू में गुजरते हैं, कामयाबी की। कामयाबी का लफ्ज, कामयाबी का तसव्वुर, कामयाबी का ख्याल, कामयाबी की मंजिल, इनसे ज्यादा हसीन, दिलनवाज और महबूब जिंदगी में कोई चीज नहीं। हम जिंदगी भर किसी ना किसी कामयाबी की तलाश में सरगर्दा और कोशा रहते हैं। हमारा हर काम, हर भाग दौड़, हर मुहिम का मकसद व मतलूब कामयाबी का हुसूल होता है। हम हर छोटा बड़ा कदम कामयाबी की धुन में उठाते हैं, बड़े बड़े हैरत अंगेज मारके भी इसी धुन में सर कर लेते हैं। और हर इंसान यही चाहता है कि उसकी पूरी जिंदगी कामयाब जिंदगी हो, तारीफ के काबिल जिंदगी हो। तो आइए अब देखें कि कामयाब जिंदगी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हर तरह के भेदभाव को मिटाना, आपस में मिलजुल कर रहना और

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर लक्ष्मी शंकर और रामकृष्ण चंदेश्री के थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चौगोट।
1: आज आमी गोठियामा मांडो बांगा ने कीड़ी मंचो रोकथाम चो उपाय चो बारे में असन तो तुम्ही सफाई जानास कि आमचो देश कृषि प्रधान देश है और एथा लोग मन जुगे करून खेती किसानी करून आपलो जीवना के चलासो। खेती किसानी ने भले आजिकाली साग भाजी चो कमानी के किसान भाई बहन मन आगर करूक मन करसो। असने दखा साग मांदी ने जोन राजा होय से हुनाय मांडोबांगा। मांडोबांगा ने देह काजे बल बफूबीती पोषक तत्व जसन के विटामिन ए और विटामिन सी मिरे से मानतर जसन की तुम्हें सफाई जानास कि कहीं कमानी हो कीड़ी मन हुनके दखू निसहोत। मांडोबांगा ने बोले असने कई प्रकार चो कीड़ी मन झपासोत। एचो काजे पल्हा तैयार करतो बेरा मोनोक्रोटोफास 36 SL 1 ml के 1 लीटर पानी ने घोरून छींचतो राय। संगे संग जाइनेब नहाले मैंकोजेब 2 ग्राम के 1 लीटर पानी हिसाब ले घोरून छींचतो राय। मांडोबांगा ने जुगे करून सफेद लट नाव चो कीड़ी होय से ये कीड़ी मन बूटा चो जड़ के खासोत और बूटा असन ने पूरा सुखुन जाए से। ए मन के मरलातो काजे 4-8-10 g नाव चो ओखत के 25 किलो के 2.5 एकड़ चो हिसाब ले रोपा लगातो पहिर बेड़ा ने लेन मन ने लगातो राय। असने गुटोक और कीट होय से जेके फर छेदक बलतोर होय से ये मन फर के काना बनासोत। ए मन के मरलातो काजे NPV 250 LE नाव चो ओखत के 2.5 एकड़ चो हिसाब ले करून एके एच संग आम के 20 ग्राम गुड़ के 1 लीटर पानी ने घोरून सफाई के मिर्साउन हुथा चीज तो राय। असने गुटक और ओखत होय से जेके मेलाथियान 50 EC बलतोर होय से तो मेलाथियान 50 EC चो 1 ml के 1 लीटर पानी ने घोरून किसान भाई बहन मन छिचुक सकोत। गोटक और कीड़ी होय से सफेद माछी। सफेद माछी 15 रंग चो नानी नानी कीड़ी मन होसोत। ए मन बूटा ने जोड़लो ने बूटा चो सफाई रस के चुहकुन बूटा के सुखान देसोत। ए मन के मरलातो काजे लीम चो पाना और हुंचो बीजा के अच्छा उखड़ाउन जो पानी तैयार करतो राय और हुन रस पानी के 5% हिसाब ले छींचतो राय। संगे संग एसी फेट 75 SP 2 ग्राम नहाले एसी टामीप्रिट 20 SP चो 0.5 ग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून छींचलो ने बोले लाभ मिरे से। असनेच माहू कीड़ी बोले मांडो बांगो ने झप के धरे से ए मन के मरलातो काजे डायमेथो 8 30 EC 1 ml नहाले थाया मिथोक्लाज्म 50 WG 0.4 ग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून छींचलो ने बोले लाभ मेरे से। संगे संग ले लीन जो उखड़ा पानी के बल छींचुक सकोत।

0: ने गोटोक और कीड़ी होय से जेके हरा तेला बलुक होय से ये मन भले बूटा के खूबे नुकसान अमरासोत ये मन के मरला तो काजे थाया मिथोक्लाज 25 WG 0.4 ग्राम नहाले डाई मेथोएट 30 EC 0.1 मिलीलीटर के 1 लीटर पानी ने घोरून चीज तो रहे नहाले एसीफेट 75 SP 2 ग्राम नहाले एसी टामीप्रिड 20 SP 0.5 ग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून चीज तो रहे सूत्र कृमि नाव चोकीड़ी बोले बूटा के सरसरा बाढ़ुक निदे ए मन के मरला तो काजे रोपा लगातोर पहिल 25 किलो कार्बोफ्यूराम 3 G नावचो ओखत के 2.5 एकड़ हिसाब ले माटी ने मिसान उता मिसा तो रहे असने सांगलो हिसाब ले किसान भाई बहन मन आप लो मांडो बांगा चो कमानी करला जाले हुन मन चो फसल कीड़ी ले बाचे दे अरु हुन मन अनगर लाभ धरुक सकुत।
1: आप सुन रहे थे बेड़ा खड़ा चोगोट, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001।

0: की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूं। नंबर नोट करो 870-001। बहुत आसान है, मैं बताती हूं। नंबर नोट करो 870-001।

हुलहुली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भागीरथी और साथियों का बजाया लौह जारीन माता पाड़। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7:05 पर नमस्कार जगदलपुर में आज के आकर्षण रसरंग प्रस्तुत करेंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। सुनिएगा हल्बी समाचार बुलेटिन और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर लेकर आएंगे बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। सुबह 9:00 झुमझुमा कार्यक्रम में सुनिए मोतीलाल बघेल और साथियों के गाए हल्बी गीत। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर आज सुनिए सन 1969 में प्रदर्शित फिल्म वारिस के गीत। सुबह 10:00 गुलशन कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे शीर्षक गीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा बदरा शीर्षक से कुछ फिल्मी गीत। गुरदुम कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कृति निषाद और साथियों के गाए हल्बी गीत। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम होगा दिन के 11:00। आज ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सलमा आका पर। 11:30 पर कार्यक्रम सबरस में आनंद लीजिए विभिन्न प्रदेशों के गीतों का। दिन के 12:00 आप सुनते हैं कला और कलाकार कार्यक्रम और 12:30 पर प्रस्तुत होता है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार। दोपहर 1:05 पर सुनिए बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनर्प्रसारण। श्रोता साथी अपने फरमाइशी फिल्मी गीत सुन सकते हैं दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर प्रसारण होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का। शाम की सभा में शाम 5:05 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। हल्बी बोली में युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। बस्तर के स्वर आप सुनते हैं रोजाना शाम 7:00 और आमचो गांव कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:21 पर। रात 8:00 कुड़ई फूल कार्यक्रम के अंतर्गत आपको आज सुनवाएंगे बसंती और साथियों के गाए हल्बी गीत। पिलामन काजे गोट इस कार्यक्रम में रात 8:30 पर लाला लाजपत राय पर जानकारी प्रस्तुत करेंगे सुबलू राम कश्यप। पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। इसमें आप सुनते हैं पुराने फिल्मी गीत। रात 9:30 पर शासकीय योजनाओं की जानकारी के कार्यक्रम उवाट में किसान नीति विषय पर जानकारी देंगे लखमूराम मरकाम। रात 10:00 परिचर्चा हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा बस्तर के लोक साहित्य और यहां की लोक संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। परिचर्चा में भाग लेंगे रुद्र नारायण पानीग्रही और विक्रम कुमार सोनी। परिचर्चा का संचालन करेंगे बलवीर सिंह कच्छ। और रात 10:30 पर पेश करेंगे पुराने फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। श्रोताओं हम आपको एक बार फिर याद दिला दें आज 9:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पुरानी फिल्म वारिस के गीत। एक ही कलाकार में सुनिएगा पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सलमा आगा पर कार्यक्रम। प्रसारण समय दिन के 11:00। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता

0: आवश्यकता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। इस सुविचार के साथ आरंभ करते हैं आज के नमस्कार जगदलपुर का। रसरंग हल्बी समाचार बुलेटिन और मधुरिमा लेकर हाजिर हूं मैं रानू। नमस्कार श्रोताओं,

नियमित सेवन से इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वहीं दिल की सेहत भी इसके सेवन से अच्छी रहती है। ये याददाश्त बढ़ाने का भी काम करता है और त्वचा में कसावट और चिकनाई बनाए रखने में भी ब्लूबेरी मदद करता है। इतनी सारी खूबियां जिस फल में हों और साथ में वो फल स्वादिष्ट भी हो, तो इसे तो जरूर आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए। अब हम आपको बताएं चॉकलेट के फायदों के बारे में। चॉकलेट और फायदा? जी हाँ श्रोताओं, चॉकलेट के भी अपने फायदे हैं, खासकर डार्क चॉकलेट के। आपको पता है डार्क चॉकलेट खाने से मूड अच्छा हो जाता है, इससे तनाव कम होता है और ये ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। यही नहीं, शरीर में हुई खनिज की कमी को भी चॉकलेट दूर करता है। तो अगर घर में बच्चे चॉकलेट की मांग करें तो उन्हें मना ना करें। हाँ, अति नहीं होनी चाहिए, ये तो हम सभी पेरेंट्स जानते ही हैं। रही बात आइसक्रीम की, तो भाई आइसक्रीम की हिमायत तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें स्वाद के अलावा सेहत जैसी कोई बात तो होती नहीं। हाँ, कभी कभी इसे खाने में कोई बुराई नहीं। वैसे भी उम्र के एक दौर में चॉकलेट्स और आइसक्रीम तो सभी को लुभाती है ना।

0: हम आपके हैं कौन, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
1: या फोन करें 222150 या 222400,
2: 222150 या 222400।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
7: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
6: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102।
9: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
12: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: इन संदेशों के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम रसरंग। रसरंग में आज का विषय है बरसात। प्रस्तुति है चंद्र ऋषि ठाकुर की। आइए सुने कार्यक्रम रसरंग।
13: रसरंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब और गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, आज रसरंग में हम बात करेंगे बरसात की।

कार्यक्रम का आगाज करना चाहूंगी कुछ इन पंक्तियों से। धरती से सावन की बूंदे मिलने जब आती हैं, कुछ रिश्ते नए बनाती और एहसास नया दे जाती हैं। हर एक कली को फूल, बाग को गुलशन कर जाती हैं, कुछ खुशी के पल, कुछ मुस्कान नई दे जाती हैं। धरती से सावन की बूंदे मिलने जब आती हैं। वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जो लगभग सभी लोगों को पसंद है, क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी के बाद ये राहत का एक एहसास लेकर आती है। ये हर एक के लिए शुभ मौसम होता है और सभी इसमें खुशी के साथ ढेर सारी मस्ती करते हैं। वर्षा ऋतु में हम भारतीय बहुत सारे त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। बारिश के पानी से पेड़ पौधे और घास बहुत हरे भरे, सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। साथ ही लंबे गर्मी के मौसम के बाद उनमें नई पत्तियां भी आती हैं। पूरा वातावरण हरा भरा हो जाता है, जो आंखों को सुकून पहुंचाता है। इस मौसम का आनंद सभी खुल कर लेते हैं। बारिश की सुबह हो, शाम हो या रात हो, हमें अच्छा लगता है। बरसती बूंदों को देख मन में कई धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं, या यूं कहें कि बरसात की भीगी रातों में फिर कोई सुहानी याद आई, कुछ अपना जमाना और कुछ अधूरी कहानी याद आई।

किसानों के लिए वर्षा ऋतु अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि सूखे खेतों से जब सौंधी सी खुशबू आती है, सूनी आंखों में फिर से एक नया ख्वाब दे जाती है। इस मौसम में फसलों की तंदुरुस्ती के लिए किसान भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं। भारत में किसानों के लिए इंद्रदेव की बहुत महत्ता है, क्योंकि इंद्रदेव को वर्षा ऋतु का स्वामी माना जाता है। वर्षा ऋतु इस धरती पर पेड़ पौधे, इंसान और जानवरों के लिए नया जीवन लेकर आती है। सभी जीव जंतु बारिश के पानी में भीग कर इस मौसम का आनंद उठाते हैं। इंसानों के साथ ही पेड़ पौधे, चिड़िया और जानवर सभी उत्सुकता के साथ इसका इंतजार करते हैं और इसके स्वागत के लिए ढेर सारी तैयारियां करते हैं। आकाश में सफेद, भूरा और गहरा काला बादल भ्रमण करता दिखाई देता है और ये बादल आसमान को और अधिक सुंदर बना देते हैं। कई बार तो सात रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई देता है, जिससे पूरा वातावरण सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। उद्यान और मैदान सुंदर दिखाई देने वाले हरे मखमल की घासों से ढक जाते हैं। वर्षा ऋतु का एक महत्व ये भी है कि ये कलाकारों को अपनी कला को उभारने का एक मौका देती है और साथ में प्रेरणा भी। वर्षा, बारिश या कहें सावन, हिंदी सिनेमा जगत में भी अपनी एक अलग जगह रखता है। अधिकतर निर्देशक बारिश में अपनी फिल्मों को शूट करना पसंद करते हैं। इसके लिए कभी कभी वो कृत्रिम बारिश का उपयोग करते हैं और कभी कभी प्राकृतिक बारिश का। हिंदी सिनेमा के शुरुआत से ही, चाहे पुराने फिल्मी गीत हो या नए फिल्मी गीत, बारिश पे फिल्माया गया हर गीत सभी दर्शकों और श्रोताओं के दिल को छू जाता है।

वैसे तो वर्षा ऋतु सभी को पसंद है, लेकिन वर्षा ऋतु के ढेर सारे फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। एक तरफ तो ये लोगों को गर्मी से राहत देती है और किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन दूसरी तरफ इससे कई सारी संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। इससे शरीर की त्वचा को काफी असुविधा होती है। गर्मी के कारण जो नदी और तालाब सूख जाते हैं, वे फिर से बारिश के पानी से भर जाते हैं। जलचरों को नया जीवन मिल जाता है। यह उद्यानों और मैदानों को उनकी हरियाली वापस देती है। सामान्यतः हम सब ने ये महसूस किया है कि गर्मी की ऋतु में जल संकट की समस्या होती है, और जब वर्षा ऋतु आती है तो बारिश के जल को हम व्यर्थ बह जाने देते हैं। इस बारिश के जल का हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। हम वर्षा जल संचय करके इसे खेती किसानी

प्रयोग में ला सकते हैं और साथ ही वर्षा के जल को हम भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ये मौसम सभी जानवरों और पक्षियों को भी पसंद होता है क्योंकि उन्हें चरने के लिए ढेर सारी घास और पीने के लिए पानी मिल जाता है। वर्षा ऋतु के आते ही हर तरफ हरियाली ही दिखाई देती है, पेड़ पौधे और लताओं में नई पत्तियां आ जाती है, फूल खिलते हैं। इस मौसम में सूरज भी लुका छिपी खिलता है, मोर और दूसरे पक्षी अपने पंखों को फैलाकर झूमने लगते हैं और हमारा भी मन करता है कि इन्हीं के साथ हम भी झूम लें।

0: श्रोताओं, उम्मीद है कि आप भी वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे होंगे और वर्षा जल संचय के क्षेत्र में एक कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: बरसात पर रसरंग प्रस्तुत कर रही थी चंद्र ऋषि ठाकुर। और श्रोताओं नमस्कार, जगदलपुर में अब वक्त है प्रदेश की खबरें जानने का। तो अंचल की जानकारियां ली हल्बी समाचार बुलेटिन में इन कुछ संदेशों के बाद।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1502।
1: और अब सुनते हैं हल्बी समाचार बुलेटिन।

जुहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर आए हलबीने समाचार बुलेटिन संगे मैं हितप्रीता ठाकुर। पहल आजी चो मूर खबर मन। संसद चो मानसून सत्र 20 जुलाई ले होए दे मूर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान VBG रामजी अधिनियम का दे राजमन के 25,000 करोड़ रुपया चो सहायता राशि करला जारी। छत्तीसगढ़ चो 5 ठान संभाग मुख्यालय आरु जमाए जिला मन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चो मूर्त स्थापना करतोर होए दे। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना चो समय 30 सितंबर तक बढ़ातोर होली। अदाय समाचार सरसरा। संसद चो मानसून सत्र ए महीना चो 20 तारीख ले मूर होए से जे 13 अगस्त तक चले दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सांगला की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जुलाई ले संसद चो मानसून सत्र हक दे तो सरकार चो प्रस्ताव के मंजूरी देऊन दिला सी। सोशल मीडिया पोस्ट ने श्री रिजिजू बल्ला की सत्र ने राष्ट्रीय महत्व चो गोठमन उपरे नगद गोट बात बहस चर्चा और निर्णय धरतो ने ध्यान केंद्रित करतो होए दी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह गेलो 6 जुलाई के सहकारिता मंत्रालय चो 5वां स्थापना दिवस समारोह

शामिल होला। इमोका हुनमन बल्ला की सहकारी आंदोलन सुधार मन डिजिटलीकरण आरु पेशेवर प्रबंधन जो उवाट ले बाढ़ती जो गुटुक नवा ढाका ने आगे बढ़ते जाए से श्री शाह सांगला की राष्ट्रीय स्तर जो नौठान प्रमुख सहकारी समिति बनातर होली से हुनमन बल्ला की सहकारिता मंत्रालय गेलो 5 बरस ले सहकारिता उवाट जो लागून समृद्धि जो मंत्र जो पालन करे से जे चोले मंत्रालय बाटले लाखों लोग मन जो जीवना ने फरक बदल इली से श्री शाह काश्तकार मनले जैविक कृषि उत्पादन मंच उत्पादन कमानी बढ़ातो संगे संगे चे रासायनिक खत भात अरु कीड़ा मन के मरला तो ओखद मन के कम बावर तो अपील करला। हुनमन बल्ला की गेलो 5 बरक ने सहकारी प्रणाली के नवा बल्ले आधुनिक पारदर्शी औद्योगिक सक्षम अरु प्रतिस्पर्धी बनातो बाट ने सहरा तो असन काम करतोर होली से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 1 जुलाई ले विकसित भारत रोजगार अरु आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम चो सफल रूप ने लागू होतो काजे हरिक मन होला। आरु श्री सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उवाटले ये मिशन लागून राजमन की 25,000 करोड़ रुपया चो सहायता राशि जारी करला। श्री चौहान जमाय राजमन आरु केंद्र शासित प्रदेश मन जो ग्रामीण विकास मंत्री मन संगे VBG रामजी योजना मन ने काम करतो उवाट मन चो समीक्षा करला। हुनमन बल्ला की 5 जुलाई के जारी कर लो पहल किस्त चो उद्देश्य ए सुनिश्चित करतो राय कि राजमन चो लगे भरपूर धनराशि हो जे चो ले भूती भाड़ा चो दिया ठोवा 15 दिन चो भीतरे करतो होक सको। हुनमन बल्ला की मनरेगा के लागू करतो काजे 3 बरक ले आगर समय लागून रहे मांतर विकसित भारत जी राम जी के गुलाय देश ने सोझे 1 दिन ने लागू करून देतो होली। श्री चौहान बल्ला की VBG राम जी योजना लागून मजदूरी भूती पैसा दर ने लमसम 10% चो बाढ़ती करतुर होली से। भारतीय जनसंघ चो संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चो जयंती मोहका 6 जुलाई के हुनमन की सुरता करुन श्रद्धांजलि देतुर होली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मुखर्जी चो जयंती हुनमन के मूर्त ने मान फूल चे घाउन हुनमन चो हिम्मत राष्ट्रवाद अरु निस्वार्थ सेवा चो सायका चीना रूप असन सांगला। हुतै छत्तीसगढ़ चो राज्यपाल रमेंडे का लोक भवन अरु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर ने रलो आपलो रत्न निवास कार्यालय ने डॉक्टर मुखर्जी के श्रद्धांजलि दिला। ए मौका ने राज्यपाल बल्ला की डॉक्टर मुखर्जी चो राष्ट्र चो एकता अखंडता अरु लोकतांत्रिक मान मोल मन उपरे चो समर्पण सफाई देश चो लोग मन का जे प्रेरणा स्रोत असन नंगत सिकतो असन गोट आए। हुतै मुख्यमंत्री बल्ला की डॉक्टर मुखर्जी चो दखालो बाट ने हिंडुन आमी विकसित अरु सकत बल संग चो भारत बनावा। श्री साय बल्ला की छत्तीसगढ़ चो 5 ठान संभाग मुख्यालय अरु जमाय जिला मन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चो मुरित थापना करतुर होए दी। ए चो काजे लमसम 10 करोड़ रुपया चो धनराशि स्वीकृत करतुर बले होली से। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना चो समय 30 सितम्बर तक बढ़ातोर आदेश जारी करुन दिली से। ये योजना लागून निम्न दाब घरेलू BPL आरु कृषि लागून श्रेणी चो पात्र उपभोक्ता मन के बकाया बल्लो ने बाचलो बीती बिजली बिल चो मूल राशि आरु अधिभार ने नियम हिसाब ने छूट देतो होए से। पावर कंपनी पात्र उपभोक्ता मन ले 30 सितंबर तक ये योजना चो लाभ धरतो अपील कर ली से। लेख कर तो गोट ये आए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना चो समय के 1 महीना बढ़ा तो घोषणा करुन रला। छत्तीसगढ़ के खरीफ सीजन का जे 46,500 मीट्रिक टन उपरहा DAP खत भात आवंटित करतोर होली से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एचो काजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री JP नड्डा चो आभार मानला से। मुख्यमंत्री बल्ला की उपरहा DAP मिरलो ने काश्तकार मन के समय ने खत मिरे दे। हुनमन सांगला की राज ने यूरिया आगे ले अदाय भरपूर आसे और अदाय खरीफ सीजन बरसा बतर कमानी काजे बले खत भात उर्वरक मन जो सफाई बाटे नगद उपलब्धता पूरा तो उवाट व्यवस्था होन गेली से। राज्य सरकार चो हिसाब ने राज्य के बरसा बतर कमानी काजे रासायनिक सरकारी खत भात चो भंडार आसे 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन ले अधिक खत भात मन चो भंडारण करतोर होन गेली से जे गेलो बरक चो हिसाब ने आगर आसे। जुलाई महीना ने छत्तीसगढ़ के 46,500 टन DAP चो उपरा आपूर्ति बले मिरली से। एबे तक कास्तकार मन की 7,27,000 मीट्रिक टन ले अधिक खत बाटतोर बले होली से। पहरले लमसम 5,89,000 मीट्रिक टन खत उर्वरक चो भंडारण एबे बले भरपूर आसेता। सरकार बल्ली से की बरसा कमानी ने कास्तकार मन के खत चो काई कमी हो नी देवा। नई दिल्ली ने 16वां वित्त आयोग चो अनुशंसा मन बल्ले आपलो बाटले दिलो सलाह सुझाव मन उपरे होलो उदिम राष्ट्रीय कार्यशाला ने छत्तीसगढ़ चो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल होला। कार्यशाला ने ग्रामीण स्थानीय निकाय मन का जे अनुदान चो गोठ जानकारी राखतोर होन रली। ए लागून छत्तीसगढ़ के ए तो 5 बरक ने 11,600

गोट जानकारी राखतोर होन रली। ए लागून छत्तीसगढ़ के ए तो पांच बरख ने 11,664 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ चो राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई संगे दूसर नेता मन बले तीजन बाई चो मृत्यु निधन हो तो के खुबे दुखी होला सर। प्रधानमंत्री तीजन बाई चो मरना ने दुख होन आपलो सोशल मीडिया पोस्ट ने बल्ला की हुनमन छत्तीसगढ़ चो लोक कला के आपलो भव्य प्रस्तुत

छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन वित्त आरु विकास निगम 11,000 जन दिव्यांग मन की स्वरोजगार का जी कर्जा दिया तो लक्ष्य निर्धारित कर ली से। छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन वित्त आरु विकास निगम चो अध्यक्ष लोकेश कावड़िया भीने भीने बैंक मंचो प्रतिनिधि मंचो बस का धरून योजना मंचो समीक्षा करला और बल्ला की हितग्राही मन के कौशल विकास प्रशिक्षण उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहायता दिया तो हो दे। नारायणपुर जिला चो छेरी बेड़ा एकलव्य आवासीय विद्यालय चो दल राजस्थान चो उदयपुर ने होलो जोनल राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता ने उप विजेता चो ठान पावला। विद्यालय चो 8 झान पढ़तो पीलामन की राष्ट्रीय स्तर चो काजे बास्तुर होली से। ये पढ़तो पीलामन नई दिल्ली चो संसद भवन चो शैक्षणिक भ्रमण कर दे और संसद चो कार्यवाही के नगद दग दे। एमन ने हर्षा के लोकसभा अध्यक्ष चो भेष धरलो काजे पहल ठान मिरली। पहले मनसाय और अनुराधा उप विजेता रला। अंजिला निकिता वेदिका जयवती और सामी वाले नगत प्रदर्शन करला। बस्तर जिला चो कोंटी साकड़ी चो ठान परगन मन ने 141 झान बैंक सखी मन गांव गांव ने बैंकिंग सेवा अमरायसर माइक्रो एटीएम और आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागून गांवरिया मन के नगदी पैसा जमा कर तोर बैलेंस बल्लो ने कितरो आसे कितरो इली गेली सफाई जांच अरु धन अंतरण बलो ने पैसा पठातो जसन सुविधा मन गांव ने ची मेरे से। एचे संगे संग हुनमन गांव चो लोग मन के डिजिटल भुगतान सुरक्षित बैंकिंग अरु वित्तीय साक्षरता का जे जागरूक बले करे सर। जे चोले गांव मन ने डिजिटल वित्तीय लेन देन के सर लगा बढ़ावा मिरे से। जून महीना ने बैंक सखी मन पेंशन महतारी वंदन मनरेगा और दूसर योजना मंचो संगे चे वी बी जी रामजी योजना उवाटले बले हितग्राही मन के करोड़ों रुपया चो भुगतान करला। इचले गांवरिया मन खास लागून सियान मन मेहरार मन आरु असकत लोग दिव्यांग जन मन के बैंक जातो जरूरत नी पड़े से। हुताय बैंक सखी मन स्व सहायता समूह मन चो मेहरार मन नानी व्यापारी आरु गांवरिया परिवार मन के हरमेशा चो बचत बैंक खाता मन चो उपयोग आरु डिजिटल भुगतान का जे हरिक मन ने तैयार करे सर। नारायणपुर जिला चो अबुज मारने कॉफी चो कमानी मूर करतो का जे सज करतो होय से। इलागुन जिला कलेक्टर भारत सरकार चो काफी बोर्ड चो जाचाकारी खोजाकारी जानकार मन संगे कुतुल कच्चा पाल कुडलियार इरिक भट्टी अरु तोके संगे अहले फैले चो गांवरिया ठान परगन मन चो निरीक्षण करला। विशेषज्ञ मन सांगला की एथा चो लेहरा पानी अरु माटी काफी उत्पादन काजे नंगता से। परियोजना हिसाब ने ठाने रतो लोग मन के अरु स्व सहायता समूह मन के जोड़ून रोजगार अरु स्थायी आय चो मोहका बिकसातोर होय दे। मुरियानी बेरा भूई चो चीनाबाना अरु नर्सरी सर्च करतोर होय दे। कॉफी बोर्ड चो अधिकारी मन चो सुझाव ने कलेक्टर जिला चो कृषि अधिकारी मन और कर्मचारी मन के

प्रतिभागी मन हुनर गुण बीता बीती कलाकार मन के नवा पहचान दिया तो संगे संग स्वरोजगार और उद्यमिता के बढ़ा तो बांटने महत्वपूर्ण साबित हो दी। कोंडागांव जिला चोर रक्षित केंद्र ने निशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण मिरालो 110 जन अभ्यर्थी मन के विधायक लता उसेंडी ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज बांटला। ए मौका हुनमन बल्ला की गांवरिया मन और धुरिया ठान परगन ने रतो जुआन पीला मन ने हुनर गुण चो कोई कमी निहाय नगद बाट दखाले नियमित प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन मिरलो ने हुनमन पुलिस सेना और दूसर सुरक्षा बल मन ने चयनित होन प्रदेश चो नाव के ऊपरे नियुक्त सकत। हुनमन सफाई अभ्यर्थी मन के अनुशासन मेहनत और सरलगा अभ्यास संगे आप लोग लक्ष्य चो बांटने पूरे तो काजे सहरानी गोट मन बल्ला। सरासरी दाय मूर खबर मन एक हार फेर संसद चो मानसून सत्र 20 जुलाई ले हुए दे मूर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीबीजी रामजी अधिनियम का जी राजमन के 25,000 करोड़ रुपया चो सहायता राशि करला जारी। छत्तीसगढ़ चो 5 ठान संभाग मुख्यालय और जमाई जिला मन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चो मूर्त स्थापना करतोर हो दी। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना चो समय 30 सितंबर तक बढ़ातोर होली। संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ये अंक इथाय सरे से।

0: आप सुन रहे थे हेल्बी समाचार बुलेटिन। और श्रोताओं नमस्कार, जगदलपुर में अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर। मधुरिमा सुनते हैं इन संदेशों के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: और अब पेश है मधुरिमा।

जी हाँ, बारिश के दिनों में आसमान के स्याह कागज पर बादल लिख जाते हैं कुछ भीगी सी शफाक रुमानी सी इबारत। जिसने इसे पढ़ लिया समझ लीजिए मौसम का संदेश उसने समझ लिया।

मौसम के ताल में ताल मिलाती ये थी आज की मधुरिमा। इन्हीं गीतों के साथ अब आज के नमस्कार जगदलपुर से मुझे रानू को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और असर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। पंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत

0: करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित

0: कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेन देन,

0: विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन,

0: के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई।
1: आवास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन अवैध निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि हॉर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद

0: आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृहमंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

लोक मंजरी कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना सुशीला कश्यप और साथियों के सुर में। ये गीत हल्बी बोली में था। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं राजकुमार अग्रवाल और साथियों के सुर में। सुनिए ये छत्तीसगढ़ी गीत।

कार्यक्रम लोकमंजरी अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है बस्तर के लोकगीत का कार्यक्रम झुमझुमा। इसमें आज हम आपको सुना रहे हैं मोतीलाल बघेल और साथियों के गाए हल्बी गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं बस्तर के लोकगीत का कार्यक्रम झुमझुमा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोतीलाल बघेल और साथियों के गाए हल्बी गीत।

0: झुमझुमा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मोतीलाल बघेल और साथियों के गाए हल्बी गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब

0: ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
3: पवन के ठंडे झोंके के साथ
2: हिलोरे लेगी
3: आकाश की वाणी।
2: आकाशवाणी
4: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
2: या फोन करें 222-150 या 222-400।
3: 222-150 या 222-400।
5: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1969 में प्रदर्शित फिल्म वारिस के गीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

फिल्म वारिस में मुख्य भूमिकाओं में हैं जितेंद्र, हेमा मालिनी, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अरुणा ईरानी और जॉनी वॉकर। ये फिल्म तमिल फिल्म नान की रीमेक है, जिसके निर्माता हैं वासु मेनन और फिल्म का निर्देशन किया है टी रामन्ना राव ने। फिल्म की बाकी जानकारी इस गीत के बाद।

फिल्म वारिस एक खोए हुए राजकुमार की कहानी है, जिसके पिता यानी महाराजा चाहते हैं कि उनकी मृत्यु से पहले अपने विरासत का वारिस उन्हें मिल जाए। साथ ही उनकी इच्छा है कि अपने उत्तराधिकारी का विवाह अपने दीवान की पुत्री राधा से वो कर दें। जब लोगों को इस बात की खबर लगती है तो महल का वारिस बताकर चार व्यक्ति अपने आप को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बड़ी संशय की स्थिति के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि असली वारिस का पता लगाने के लिए उनकी परीक्षा ली जाए। फिल्म की सारी कहानी इसी कथा के केंद्र में घूमती है। सुनते हैं फिल्म का अगला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है वारिस। इस फिल्म में कुल 6 गीत हैं जिन्हें लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। इन गीतों को संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। इनमें अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

चरणों में तेरे आम केला अमरूद है, पीने को मैया भूरी गाय का दूध है। भूल भूल भूल हाय हाय भूल भूल मैया भूल भूल हाय भूल हुई भूल हुई भूल हुई मैया मांसधारी है, फल वाले जा कसाई की

ये कॉमेडी गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है सन 1969 में प्रदर्शित फिल्म वारिस। सुनते हैं फिल्म का अगला गीत और चलते चलते हम आपको बता दें कि बहुत से घटनाक्रमों के बाद अंततः महल के वारिस का पता लगता है, जिसका नाम है राजा। इधर राजा और राधा यानी जितेंद्र और हेमा मालिनी इन बातों से बेखबर है कि महल के वारिस की तलाश हो रही है। वे पहले से ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिल्म के अंत में सारी बातें खुलती हैं और नायक और नायिका का मिलन होता है। साथ ही महाराज को मिल जाता है अपने महल का असली वारिस। सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज की फिल्म थी वारिस। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रदेश में 11 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल आयोग बोर्ड समिति और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरी शंकर श्रीवास की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का दायित्व डॉ ममता साहू को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व राजेश कुमार राजपूत को सौंपा गया है। वहीं शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेन्द्र नायक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर सुधीर गौतम की नियुक्ति की गई है। जारी आदेश के अनुसार रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर डॉ जे पी शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आनंद कुमार तिवारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मंगल दास ठाकुर की नियुक्ति की गई है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश भी जारी किया।

है। राज्य की 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयाम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जीआर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। यह विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 1 मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच कर दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आज सुबह कवर्धा में नए भाजपा कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम रायपुर के डूमरतराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा रायपुर के बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 338 पदों पर भर्ती की जाएगी और आवास और पर्यावरण विभाग के सचिव तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष अंकितानंद आज रायपुर में मॉनसून के दौरान राज्य की औद्योगिक इकाइयों में संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रदेश में 11 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन। इस कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है बदरा।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, आया सावन झूम के फिल्म से। आनंद बख्शी के बोलों में संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गुलशन कार्यक्रम का अगला गीत बद्रा शीर्षक से सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार मजरूह, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम धरती कहे पुकार के है।

छोटे नवाब। इस फिल्म का गीत आइए सुनें आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द रचना शैलेंद्र की, गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध गीत अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आदमी से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

इंदु जैन का लिखा गीत अब हम आपको सुनवाते हैं, येसुदास और हेमंती शुक्ला के स्वरों में। संगीत निर्देशन राजकमल का है। ये गीत हमने लिया है फिल्म चश्मे बद्दूर से।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म भाभी के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलशन अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए बदरा शीर्षक पर कुछ फिल्मी गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड़दुम।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं कीर्ति निषाद और साथी। आप सुन रहे हैं इनके गाए हल्बी गीत।

कार्यक्रम गुड़दुम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। लोक गीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कीर्ति निषाद और साथियों के गाए हल्बी गीत।

0: बस्तर के लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप हल्बी गीत सुन रहे थे। स्वर था कीर्ति निषाद और साथियों का।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: На сансане.
1: На утечна.
0: На шоур дин ра.
1: Нахи эхенка. Кевал маноранжан, гьянвардхан और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती है। एक ऐसी ही मधुर, नाजुक और दर्द भरी आवाज की मल्लिका हैं सलमा आगा। वे चुनिंदा कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने अभिनय और गायन दोनों क्षेत्रों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम जानेंगे सलमा आगा के जीवन, उनके फिल्मी सफर और उनके सदाबहार गीतों की कहानी।

सलमा आगा का जन्म 29 अक्टूबर 1954 को कराची, पाकिस्तान में हुआ। बचपन से ही संगीत और कला का माहौल इन्हें मिला। उनकी रुचि गायन में थी और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। उनकी आवाज में एक अलग मिठास और दर्द था जिसने आगे चलकर उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। नीली आंखों की मासूमियत, चेहरे की सादगी और आवाज की कशिश, इन तीनों का अनोखा संगम थी सलमा आगा। हिंदी सिनेमा में उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि अपनी पहली ही फिल्म के गीतों से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने लगी। उनकी गायकी को इतनी सराहना मिली कि पहली ही फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस दौर की स्थापित पार्श्व गायिकाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाकर सलमा आगा ने साबित कर दिया कि अगर प्रतिभा सच्ची हो तो पहली दस्तक भी

सलमा आगा की पारिवारिक विरासत भी हिंदी सिनेमा से गहराई से जुड़ी रही। सलमा के नाना जुगल किशोर मेहरा पृथ्वी राज कपूर के सगे मामा थे, यानी पृथ्वी राज कपूर की माता और सलमा के नाना सगे भाई बहन थे। इस रिश्ते से सलमा की मां नसरी नागा राज कपूर की बहन लगती थी। दिलचस्प बात यह है कि सलमा की नानी स्वयं अपने दौर की अभिनेत्री रह चुकी थी, लेकिन फिल्मों की बदलती तस्वीर और अनिश्चितताओं को देखकर वे नहीं चाहती थी कि सलमा फिल्मों में कदम रखे। जब राज कपूर ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म हीना की कल्पना की थी, तब उनकी इच्छा थी कि सलमा आगा को इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया जाए, लेकिन सलमा की नानी ने इस प्रस्ताव के लिए सहमति नहीं दी और ये सपना अधूरा रह गया। हालांकि किस्मत ने सलमा आगा के लिए कुछ और ही तय कर रखा था, जिसका बेसब्री से सलमा आगा इंतजार कर रही थी।

हिंदी फिल्मों में सलमा आगा का प्रवेश किसी सुनियोजित योजना का नहीं बल्कि एक खूबसूरत इत्तेफाक का नतीजा था। एक बार वे एक गीत के रिहर्सल के सिलसिले में संगीतकार नौशाद के पास पहुंची थी। संयोग से उसी समय वहां प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा भी मौजूद थे। जैसे ही उनकी नजर सलमा आगा पर पड़ी और उन्होंने उनकी आवाज सुनी, वे बेहद प्रभावित हुए। उसी क्षण उन्होंने अपनी नई फिल्म निकाह के लिए सलमा आगा को लेने का निर्णय कर लिया। कहा जाता है कि फिल्म निकाह के गीतों को लेकर संगीतकार रवि की शुरुआती इच्छा थी कि उन्हें आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड कराया जाए, लेकिन जब सलमा आगा ने गीत गाकर सुनाए तो लगा कि फिल्म की नायिका की भावनाएं, उसकी मासूमियत और उसके दर्द को उनकी आवाज कहीं अधिक सजीव ढंग से अभिव्यक्त कर रही है। यही कारण था कि आखिरकार वे गीत सलमा आगा की आवाज में रिकॉर्ड किए गए।

आगा ने नीलोफर का किरदार निभाया, जबकि उनके साथ राज बब्बर और दीपक पराशर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए। तलाक जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित इस फिल्म में सलमा आगा ने अपने भावपूर्ण अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। खासकर उनकी नीली आंखों में छलकता दर्द और चेहरे पर उभरती बेबसी ने हर किसी को भावुक कर दिया। फिल्म निकाह जब प्रदर्शित हुई तो वो जबरदस्त सफल रही और सलमा आगा रातों रात हिंदी सिनेमा का चर्चित नाम बन गई। इतना ही नहीं, इस फिल्म का अमर गीत दिल के अरमां आंसुओं में बह गए के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। ये सलमा आगा की प्रतिभा का ऐसा सम्मान था जिसने उन्हें अभिनय और गायन दोनों क्षेत्रों में एक अलग पहचान दिला दी।

ने कहा कि अप्रत्याशित सफलता के बाद सलमा आगा के लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे पूरी तरह खुल गए। अब उन्हें लगातार नई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। उनकी एक खास पहचान ये बन गई कि जिन फिल्मों में वे अभिनेत्री होती उनमें अधिकतर गीत भी उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए जाते। यही बात दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बनाती थी। संगीत की दुनिया के दिग्गज संगीतकारों ने भी उनकी आवाज पर पूरा भरोसा जताया। बप्पी लहरी, आर डी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे नामचीन संगीतकारों ने उनकी आवाज का भरपूर उपयोग किया। युगल गीतों में भी सलमा आगा ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने उस दौर के कई लोकप्रिय गायकों जैसे किशोर कुमार, शब्बीर कुमार, महेंद्र कपूर और मोहम्मद अजीज के साथ सुरों का खूबसूरत संगम पेश किया। इन्हीं में से एक लोकप्रिय गीत था जिसे उन्होंने मोहम्मद अजीज के साथ फिल्म पति पत्नी और तवायफ के लिए गाया। ये गीत आज भी मधुर धुन और दोनों गायकों की दिलकश आवाज के कारण श्रोताओं की पसंदीदा फेहरिस्त में शामिल है।

निकाह की अपार सफलता के बाद सलमा आगा के फिल्मी सफर को नई उड़ान मिली। वे कई हिंदी फिल्मों में दिखाई दी। इन फिल्मों में प्रमुख थीं कसम पैदा करने वाली की, सलमा, ऊंचे लोग, महावीरा, पति पत्नी और तवायफ, जंगल की बेटी, कन्वर लाल, गहरा राज और मीत मेरे मन का। और इसके अलावा भी उन्होंने हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी अभिनय और गायन प्रतिभा का परिचय दिया। हालांकि निकाह जैसी ऐतिहासिक सफलता उन्हें दोबारा नहीं मिल सकी। सलमा आगा की निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही। उनके जीवन में कई मुश्किल दौर आए। उन्होंने 3 शादियां की, लेकिन वैवाहिक जीवन उन्हें स्थायी सुख नहीं दे सका। उनकी 2 संतानें हैं, 1 बेटी और 1 बेटा। उनकी बेटी जरा आगा खान ने भी हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने साशा आगा के नाम से औरंगजेब फिल्म में काम किया। सलमा आगा ने कभी संगीत और कला से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। सलमा आगा की मधुर आवाज और उनकी संवेदनशील अदाकारी आज भी श्रोताओं और दर्शकों के दिलों में उसी अपनत्व के साथ जीवित है।

एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सलमा आगा पर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रदेशों के गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत हम गुजराती गीत से कर रहे हैं। आवाज़ है फाल्गुनी पाठक की, संगीत है ललित का।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: विभिन्न प्रदेशों के गीत आप कार्यक्रम सबरस में आज सुन रहे हैं। अब लीजिए, प्रस्तुत है पंजाबी गीत। स्वर है मीनू पुरुषोत्तम और दिलराज कौर का। संगीत दिया है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने।

0: अभी आप सुन रहे थे विभिन्न प्रदेशों के गीत कार्यक्रम सब रस्में। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:55 होने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

जिनके साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 11 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को B1 खसरा ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश भी जारी किया है। राज्य की 11 जिला पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयाम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जीआर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को B1 खसरा ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने को कहा। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी का वोट निरस्त होने के मामले में कार्रवाई की है। प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने बताया कि प्रत्याशी और उनके पिता का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। ये विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्य प्रदेश के हैं, जबकि एक मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को आज दोपहर रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के अनेक लोक कलाकार गीत पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के

पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के अनेक लोक कलाकार गीत पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजनबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादा, दादा, दादा, दादा, दादा, दादा, दादा, दादा, दादा, दादा,

जुहार जुहार रेडियो कार्यक्रम कला और कलाकार सुन तो सब पाए दादा दीदी और संगवारी के मन की चौबाटले खुब्बे खुब्बे जुहार और रेडियो कटा कटा बसलो नानी नानी पिला झीला के मचो बाटले खुबे खुबे माया और दुलार। दादा दीदी आज ही चुग बाटते चुग आए आज काली समया बदलते रहे से कोनी जमाना ने हाथे पाथे काम बोता होते रली मानतर एदाएं कल मशीन चो जुग चले से आमचो पहल समया चो सियान मन आप लोग बुता के खुद करते रला जसन खेती बाड़ी चो बुता नाई तो फिर कला चो बुता के अपनी हाथ ले करते रला। अबरे समया ने खेती बाड़ी काजे कला के सरल करतो काजे कितरो प्रकार चो कल मशीन चो उपयोग हुए से देखा दादा दीदी पहल समया ले आमी कला के जानन से और दखुन से हुन बेरा आमचो सियान सजन मन आमचो जोन कलाकार भाई बहन मन आत्मी कएक प्रकार चो कला के बनाते रला जसन डोकरा कला बेल मेटल कला बाउंस कला लोहा चो मूर्ति कला रुख चो मूर्ति बनातो कला गीत गोविंद गावतो कला और नाचा कला ये कला चो इतरो प्रकार आसे की गिनती नहीं होए असन कला के असन हुनर मन के गोटोक पीढ़ी ले दूसर पीढ़ी ने एते रहे से बल्लो ने विरासत ने मिरे से कितरो घरे तो कलाकार मन रसोत ने फिर हुनचो हुन घर ने कुन पीला जन्म ले जो नुआ पीढ़ी आए नी हुन कला के सीखे से और कलाकार बने से तो कितरो घर में लोग मन

कलाकार बन सोत और ये कलाकार मंचियात जोन कला के जीवता संगाला सोत। ये भी ये बारती चो समया ने बले कला चो खूबे आगरनी मान आसे। पुरवानी बेरा ले धरुन एबे तक आमचो संस्कृति ने, आमचो सभ्यता ने, आमचो परंपरा ने कला दखा दे से। ये कला चो माध्यम ले आमचो परंपरा जीवता आसे। दखा जसन बिया टीका था ने, तियार बहार ने, जत्रा ने, रीति रसूम सब पाए था ने, बाजा मोहरी लागे से, गीत आसे और नाचा रहे से, संगे संगे चित्रकला रहे से और देवी धाम चो जन मूर्ति कला ने मूर्ति रहे से, बिहा काजे महुड़ा से। ये सबू कला आमचो परंपरा के हर पीढ़ी ने जीवता संगाली से। और दादा दीदी आगे ये तो समय आने बले नी ये कला नी बाढ़ते रहे दे और आप लोग बाढ़ती करते रहे दे। दादा दीदी तुम्ही तो जाना जी जसन एबे गोंचा अमरे से ने बस्तर गोंचा ने तुप की बाजू आए और ये तुपकी के जोन कलाकार जानकार लोगा जोन बनावात हुन मन तुपकी बना तो काजे खूबे मसागत करुआत। और ये थाने नी ध्यान दून भाती बाउंस के गोंदुन काय मंजा छुक नाय तुपकी चो आकार दिवात। फिर हुन तुपकी ऊपरे नी रंग रंग चो कागज ले सजावात तो कितरो सुंदर तुपकी बने से। और ये तुपकी थाने पेंगू भर के भोरन भाती टुपले टुपकी के बजावात। ये थाने नी भगवान जगन्नाथ के सलामी दिवात बल्लो ने मान दे तो काजे नी टुपकी के बजावात। तो ये तुपकी बनातो कला आमचो गोंचा परंपरा के नी सुरता कराए से और हर बरख हर पीढ़ी चो लोग के ये तुपकी के दखुन कला और परंपरा के उनके जान सोत। बल्लो ने दादा दीदी आमचो कला विरासत आए और ये कला भविष्य तक चलते रुआ। ये कितरो सुंदर आमी कला चो गोट के तो जान लू इदा एचो संगे संगे सुंदर सुंदर गीत के सुन ले तो और हरिक लागती तो बेर नहीं करूँ। और सुनू ये योगेश्वर पुजारी और हुंचो संगवारी मंचो गालो ये काय सुंदर हल्बी गीत। आलिया ये गीत के सुनू।

दादा दीदी, कलाकार कौन है? जो उन कलाकाजे तप करे से, दिन राते अभ्यास करे से, आप लोग कलाचो काय सुंदर प्रदर्शन करून लोगचो मन के मोहे से, मानतर लोग ले आगरनी हुन ऊपर बिताचो भजन करे से। आजी मैं आजी चो कलाकार चो भितरे मध्य प्रदेश राज्यो मालवा चो गोटोक असन महान कलाकार चो गोट के सांगेन से, जेके निर्गुण भक्ति संगीत और पारंपरिक कबीर भजन गातो काजे महान कलाकार चो रूप ने पूरा भारत देश जाने से। हुंचो नाव आए भेरू सिंह चौहान। भेरू सिंह चौहान आप लो अद्भुत राग ने और खड़ताल बाजा चो थाप ने कबीर, मीरा और गोरखनाथ चो निर्गुण भजन के गाउन भाती लोग लगे भजन के अमराला। आलिया भेरू सिंह चौहान चो कलाजीवना चो ये सफर के विस्तार ले जानो। तो दादा दीदी, भेरू सिंह चौहान चो जन्म 27 जुलाई 1961 ने मध्य प्रदेश राज्य ने देवास जिला चो संदेहड़ा गांव ने होली। खूबे साधारण किसान परिवार ने ये जन्म धरला। परिवार ने धार्मिक रीति रुसुम चो माहौल रली और जो ने चो बाबा रहोत हुन बले खूबे भजन गावते रला। बल्लो ने आपलो बाबा बिताले भेरू सिंह गावतो कला के सीखला। भेरू सिंह के पीला बेराले गीत गावतो चो खूबे शौक रली। गावने नी जेब बले गीतकुरिया मन चो मंडली बसे गीत गावतो काजे, तो नानी असन भेरू सिंह

भजन जसन, मोको कहाँ ढूंढिए रे बंदे, गुरु समान दाता नहीं, निर्भर कबीर, संत कबीर के शब्द जसन प्रसिद्ध भजन मन आए। 50 बरख लेनी आगर

कला आए हुनके कसन अमरातो राय, इतरो बड़े बड़े मंच ने आप लोग कला के कसन दखातो राय, ये गोटकिया में सीखुन से। भेरू सिंह चौहान खूबे महान कलाकार आए, ये आप लोग संस्कृति का जे आप लोग गांव का जे खूबे काम करला और आप लोक कला और संस्कृति के हाजुक नहीं देवत। आज जो नुआ पीढ़ी काजे नी भीरू सिंह चौहान ने खूबी प्रेरणा देसोत। ये काय सुंदर आज जो कलाकार था ने आमी भीरू सिंह चौहान चो कला जीवना चो गोट के जान लू। आम चो लगे और भले गोठा से आले ये गोठ मन के।

0: से उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
4: तो दादा दीदी आमी कला और कलाकार कार्यक्रम भित्रे तुमचो काजे लोकगीत मन के धरुन अमरुन से आमचो लोकगीत ने असन बोली ने मिठास आसे कि जोन जोन बोली ने आमी गीत के सुनुन से तो आम के हरिक लागे से कितरो प्रकार चो गीत आसे आमी सुनुन से और जानुन से जे के दखुन भाती आमचो लोग मन आमचो प्रसिद्धि के जान सोत असनी गोटोक बस्तरिया गीत आए ककसाड़ गीत बोलुआत तो हुन गीत के गावला सोत हड़मारा मरकाम और हुनचो संगवारी मन तो आलिया ये गीत के सुनू।

0: तो दादा दीदी ये काय सुंदर ककसाड़ गीत के आमी सुन लूँ। और ये ककसाड़ गीत के माड़िया और अबुज माड़िया जो छत्तीसगढ़ राज्य जो बस्तर जिला ने रोहत हुनमने के गावत। तो ये गीत के सुनो नाम के खूबे हरिक लागली। तो गोटोक और गीत सुन ले और नगत लागती ने तो हुनिका जे तुम चो काजे मैं गोटोक छत्तीसगढ़ी बीती गीत के धरुन इले से एक गावला सोत शेख हुसैन और हुनचो संगवारी मन ये गीत के वाले आमी सुनवा हुनचो पहलिए जहला के सुनू।
1: मिस सीमा
2: जी
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
7: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
8: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: अलीया शेख हुसैन संगवारी मंचो गालो ये गीत के सुनो।

तो दादा दीदी एक काय सुंदर छत्तीसगढ़िया गीत के सुन लो। तुम संगे गोठ करते रहे पता ही चले समया केबे हुए से मांतर एबे विदा धर तो समया तो इली तो असनी आमचो कला और कलाकार कार्यक्रम के सुनते रहा और आम के असनी मया देते रहा और अबर दिया मके विदा तो जातो पूरे कार्यक्रम कला और कलाकार सुन तो मचो सब पाए दादा दीदी और संगवारी के मन की चो जुहार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम कला और कलाकार। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

रेडियो कार्यक्रम घर द्वार सुन तो मचो सब पाए दीदी बहिन के और संगवारी के, मैं तुम चो बहिन मन की करिन से खुब्बे खुब्बे जुहार। बहिन मन, तुम्हें आप लोग बुता के निपटाउन रेडियो लगे अमर लास ने, फिर मैं बले तुम जो संगे भेंट हो तो काजे समयाने अमर ले। बहिन मन, आज जो नुआ जुग ने लेकी मेहरार मन जो भूमिका खूबे जरूरी होली से। आम जो बहिन मन आप लोग घर परिवार पीला जिला के दखा रखा कर सोतने, संगे संगे समाज ने नौकरी स्वरोजगार और सब

क्षेत्र ने आपलो गोटोक विशेष पहचान बना लासो। मानतर इतरो जिम्मेदारी इतरो बूता ने बहिर मन आपन आपके नी भूलक सोत और मन ने फिर काय ऐसे तनाव दुख चिंता फिकर ये घर करे से। घर चो बूता हो पीला चो सियान सजन चो दखा रखा करतो ने आपलो धंधा पानी ने इतरो मत भूल हो जासोत बहिन मन कि ये बूता भीतरे खुद के हाजुन जासोत। हुनी काजे एदाय जरूरी होली से कि आमचो बहिन मन आपलो चिंता के आपलो फिकर के आपलो तनाव के दूर करतो काजे उपाय करोत और समझोत कि ये तनाव के दूर करतो खूब जरूरी है। बहिन मन तनाव असन स्थिति आए जब आमचो सोच और आमचो परिस्थिति चो मंजी तालमेल नहीं बने से और मन ऊपरे भार लागे से। यही तनाव आगर सोच विचार कर तो बीमारी है। गोट की गोट के घन घन विचार करून दुखी होतोर मुरुस नाय होन रतोर ये तनाव आए और जब तनाव आगर समय तक नहीं रहे से तो हुन देह पाए के खूब नुकसान करे से। ये चोले नी बीमारी मन झोटे से और आमचो जोन हरिक रतोर जो नाय नी हुन कम होए से। ये तो जान लो कि ये तनाव काय आए मानतर ये जो उपाय बल तो जानतो खूब जरूरी है। तो बहिन मन सबले पहल तो आप लोग का जे समय निष्कातो रहे कितरो दीदी महिन मन आप लोग नी जरूरत चो ध्यान नी देवत सब पाए चो जरूरत के ध्यान दीवात मानतर खुद के नी सबले आखिर ने संगावात। तनाव ले बास्तो काजे नी सबले पहल उपाय आए कि खुद काजे समय निष्कावन भांति आप लोग मन चो बुता के करतो रहे। जसन मन चो गीत गोविंद सुनतो रहे कोनी कहानी सुनुक भाय से कोनी कहानी पढ़ुक भाय से तो उन कहानी के पढ़तो राय कोनी जानकारी बीती पुस्तक के पढ़तो राय नहाले फिर कोनी जगह बुलुक भाय से तो उन जगह जाऊन बुलू ने तो राय। ये तो संगे संगे घर थाने छत ऊपरे आप लोग द्वार थाने कोनी पौधा होए से पाक फरचो बूटा होए से फूल चो बूटा होए से उनके रोपुन दखतो राय उनके नी लगा ले खूबे हरिक लागू आए और उन जो दखा रखाने बलनी जीव के अस्थिर लागू आए और कोनी बले तुम चे लगे कला और हुनर आसे नी हुनके सीख तो राय काय काजे की कला लेनी सबले आगर हरिक लागू आए और तनाव नी लापी गुचू आए। और बहिन मन जेचो मन नंगत आसे नी हुनचो देह पाए बले नंगत रहे से। मन के अच्छा संगातो काजे योग और नी ध्यान करते रहतो राय और देह के निको संगातो काजे सबले पहल तो आम के खूबे पानी पीतो राय हुनचो संगे संगे आम के बल बपू दे तो जीनीस जसन पाक फर साग भाजी के नी खातो राय। घर चो लोग चो खातो के ध्यान तो देतो राय बहिन मन मानतर आपन जो देह के बल तो ध्यान देतो राय। दखा कसन जेब गोटोक रूख अच्छा रहे दे नी गोटोक रूख नंगत रहे दे तो तेबे हुन दूसर लोग के छाए दे दे और आमी जानून से कि कितरो बहिन मन आप लो दुख के दर्द के आप लो मन भीतरे लुकाउन रसो जेचो लेनी चिंता फिकर बाड़े से। दखा बहिन मन काचे संगे नी दुई गोट गोठ्याले मन के हल्का लागू है तो हुनी काजे आप लो सहली ले दीदी आया भाई मोनुख कोनी बले तुमचो भरोसा चो लोग आतनी हुन मन संगे गोट भात करून आप लो मन चो गोट के सांगा सांगी होतो राय। एचो ले मन के अस्थिर लागू है और जे बले तनाव आसे नी हुन खिंडी लापी गुचे से। दखा बहिन मन आपन चो बाढ़ती काजे नी सबले जरूरी काय आए आपन आपके मया करतोर खूब आगर जरूरी है। तो मुझे बहिन मन आदि चो ये जोन गोट में तुमके सांग ले मैं जाने कि ये गोट तुमके पक्की ले नंगत लागली वे और गोट की सुन लू हुन संगे संगे

0: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुक जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: तो बहिन मन आमी आमचो घर द्वार कार्यक्रम भित्रे तुमचो काजेनी नंगत नंगत गोट के धरून येऊन से असन भेटवार्ता मन आनून से जे थाने आमी स्वरोजगार करतो जन दीदी बहिन मनात हुन मनचो जीवना के जानून से कि हुन मन कसन स्वरोजगार के मूर करला और कसन आपलो जीवना ने आगर कमानी करून हरी कुदीम ने आसोय। तो असनी आजी मैं भेटवार्ता ने गोटोक सब्जी बीती स्वरोजगार दीदी चो गोट के आनले से ये बहिनात श्रीमती कांति और एचे संगे भेट कर सोत बलबीर सिंह कच्छ। तो आलिया ये भेंट वार्ता के आमी सुनो।
4: मन मैं गोटोक दीदी संगे गोट बात करें से सब ले आगे तू चो नाव और गांव चो नाव सांगु दे।
5: मस नाव कांति है।
4: अच्छा कांति और गांव चो नाव
5: परचन पाल।
4: अच्छा परचन पाल। हाँ तो कांति दीदी ये सांग जसन की तु बोले तु चो बुता तु चो काम बोले ने काय हो से जाले
5: ए दे काय कुली बुती करते रहे असनी असनी करते करते फिर कुली की जाए बुती जाए किडी खमा फिर देखे दे लगे घरे पनस मान रही दे लग बसन ते भी बोल ले आउ उन लग सड़क लग बस ले उतली उतली फिर काई काई काई काई आन ले उन दिन ले फिर लग बसन ची चौक में बसन पाल चौक में।
4: अच्छा बल्ले साग भाजी काय काय सब
5: मंडाई साग भाजी टमाटर भेंडा भाजी
4: अच्छा
5: चुरचुटिया बरबटी वांगा तो पायानवा टमाटर टोरिया बिकवाए लगे।
4: अच्छा तो बल्ले अच्छा कांति दीदी कितलो बरकसन होली जाली है सोचो ये साग भाजी बिक तो बीती
5: ओए से जानो ओए से गुण तो बस है से
4: नहीं कितलो बरकसन होली ये काम बले से
5: नो आए दे पुरुत ले बस है से।
4: अच्छा बरककार होली बोलू ने
5: ओ साल भर होय से
4: असन। अच्छा तो बोले ने ये जो साग भाजी वगैरह बोले कहां ले आंसिस
5: ए पलट पलट तान ले डगर डगर जाओ और आनू है।
4: अच्छा
5: बिकवाए।
4: अच्छा लगे लगे चो जो खेती बड़
5: लगे लगे चो।
4: हां हां हां अच्छा तो बोले ने एच काज कहीं बैंक बाट ले कहीं पैसा कोड़ी छ मदद धर लिस कि तू छ खुद छ पूंजी आ जाल।
5: ओ मुझे खुद छ पूंजी आ सर काज मदद धर तो वाजित लो।
4: हां
5: हां पवन भी ठीक बोलते डर लागुआय सरकार बात भी ठीक बोले
4: हाँ।
5: के रुआय के बे नहीं रहे बोलते सरकार बात से मदद नहीं धर लेते।
4: अच्छा हां हां हां बोले ने खुद छ पैसा कोड़ी बनान बाती सब काम कर। हां
5: हां
4: अच्छा बोले ने लगे लगे कौन कौन गांव पारा मन ने जाऊ जाली साई साग भाजी काजी
5: वहां दे खोल चुरवाड जाऊ आए ये बिरलिंगा बाट जाऊ आए।
4: अच्छा
5: की बाट बाट ले आनु आए।
4: अच्छा हां हां बोले रोजे कितला है तू बसा हुआ साले
5: मैं भी आने 6-8 बज ले बस हुआ से 4 बज बंद करवा जाऊ आए।
4: असन अच्छा तू बिक्री भांजरी हिसाब ने बोले कसन होइसे जाल। अच्छा तू जो साग भाजी उठे
5: होइसे जानो
4: वैसे
5: गुण तो चार आना आठ आना वैसे गुण बस है नॉले का।
4: हाँ हाँ उन तो
5: है नहीं वैसे की।
4: अच्छा हाँ हाँ तो ये चुका जी किलो बाट वगैरह बल बना दिस किसने कूड़ा कूड़ा मंडा हुआ साले
5: नहीं वो गेन लेस किलो बाट।
4: अच्छा
5: आठ किलो बाट बाटी।
4: हाँ
5: टमाटर टरी वांगा वांगी कुताई उताई तो उन दे वाई
4: हसन। अच्छा तो हर समय ये जो बल्ले रेट बदलते रहे से होती भी है कि नहीं।
5: हां बदलते रहे से समय बदलते रहे से चेकते रहे से बढ़ते रहे से।
4: हां
5: हे बेटा मटर ओली 400।
4: हां हां अच्छा तो बल्ले ने जसन की घेन तो लोग होले ने कहां जो लोग खूब घेन से दूसरे गांव पारा छ की आना जाना जसन लोग रहे
5: आना जाना लोग घेनवा गांव पारा लोग घेनवा।
4: अच्छा हां हां
5: आना जाना लोग बोल घेनवा सर गांव पारा लोग बोली वाद घेनवा नेवा।
4: अच्छा बोले ने सड़क रेटे मंडा रहे से बोले ने
5: ओ सड़क रेटे मंडा रहे से।
4: अच्छा कहीं असन दुकान वगैरह असन बना लिस का असनी खुला असन जगह आ जाले
5: ओ किन लाड़ी असन मना ले।
4: अच्छा लाड़ी बना लिस। हां
5: हां किन लाड़ी असन मना ले से मन दान बोल जिले जिला छाव लिस किडी पानी लेने थाम बोलते।
4: अच्छा
5: किडी लुक एंड बोल

0: मना लेब।
1: असन अच्छा हाँ हाँ बोलिए बिहान सब बोझा धरू जाऊस फिर सँझ बेरा सबके घरे आनू आज बे
0: तो ए लगानो आ भी आने और फिर पास सँझ बेरा घरे नहीं हुआ।
1: अच्छा हाँ हाँ हाँ तो ये जो आगे बोले ने जैसन की साल भर होसन होली बोल आगे तू चो काय बुतार ली जाल काय करत रही
0: आगे मैं कुली बुती करते रहे सर।
1: अच्छा अच्छा
0: कुली जाए पलट बाटे
1: हाँ
0: बिहान 6 बजे जाए 10 बजे आए घर आए रांधे खाए 3 बजे फिर जाए।
1: असन अच्छा
0: हाँ
1: हाँ तू अरे भी जैसन की साग भाजी तु बल्ले मंडाइसिस लगाइसिस तो कुली ले आगर खिनिक मेरे से का है
0: हाँ
1: मेरे से अच्छा
0: मेरे से
1: हाँ हाँ बोले खिनिक
0: मेरे
1: एदा खिनिक अस्थिर बल लागली से होती बोलू
0: और अस्थिर लागली खिंडी कुलास बल लागली
1: हाँ
0: अले कुली बुती जाते रहे लकर लकर दारू डगरा किट रहा डगरा काय के डगरा कुरुन कुरने वेतनो आए
1: हाँ
0: इले बजा बिकुन बिकुन देला किट का जीत का बोल डगरा रहे दे
1: हाँ हाँ
0: जब मैं रानुन खा तो असन बुनवाया रो खिंडी कुलास बल होली।
1: असन अच्छा हाँ
0: हाँ
1: हाँ बोले कि अस्थिर लागे से दाई कहीं
0: खिंडी का अस्थिर लागे
1: हाँ उतलो कहीं झंझट बलनी होए बोलो बने
0: हाँ झंझट बोलनी हो
1: हाँ
0: कहीं ची झंझट नहीं हो सबर।
1: हाँ
0: अच्छा संज बेरा बोल जाओ और एक ने रांधो खाओ उन बाट लो ने के नहीं उनके कर एक एक कर।
1: हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ उन तो आए थे
0: हाँ
1: बल्ले ने कांति दीदी बल्ले ने कहा बिक तो इतलो बिक सीज बल्ले तू चो खातो काज बल्ले हो ऐसे है कि नहीं
0: हाँ खा तो काज बोलो ऐसे बिक तो काज बोलो ऐसे सब
1: हाँ अच्छा
0: काज हो ऐसे।
1: हाँ हाँ तो ये बाड़ी मन ने गेलेन तो ऐसा नहीं उधारी बोला आंसिस की पूरा पैसा देवन बात आनु आसा
0: हाँ उधार बोल देवरुवा सब
1: अच्छा दे सो ने हाँ
0: देवरुवा
1: हाँ तो आन
0: पैसा
1: लो
0: रोल दिने
1: हाँ
0: पैसा रोल दिन पैसा चंद रुवाई
1: हाँ
0: देवरा बोले देवन बोल रुवा सब बिक लेने उन्ने वाई।
1: अच्छा हाँ हाँ
0: हाँ
1: बल्ले रोजे दिना चुत सब चंगे दाए मिलजुल होली से बोलू
0: हाँ
1: हाँ
0: हो
1: अच्छा तो बल्ले ने ये भी कहीं आगर करें दे बोलते कहीं पैसा कोड़ी धर तो हिसाब नहीं बनाए बैंक वगैरह बांट ले मन ने नहीं सोचे
0: उतली रोता उतली बेड़ा खड़ा बुना बुनी बोला से था काय के अगर उठा रहे दे
1: अच्छा अच्छा
0: आ उसके बेरू आई के भी नहीं रहे के पानी दीने तो बहुत उखलाई नहीं होए
1: नहीं हाँ हाँ
0: आना बोझ डगर जाई नहीं होए।
1: हाँ हाँ उन

0: खुली,
1: अच्छा
0: मुंह रोट फिर
1: हाँ
0: फिर खुद चुका रहे।
1: अच्छा हाँ, बोले ने कोरोना हो तो बोले तू चो रोजगार की बाढ़ लिया सन लागे से
0: ओहो,
1: तो बोले ने ये भी कि अच्छा लागे से बोलो बने। हाँ
0: अभी अच्छा लागे से। हाँ,
1: हाँ बोले दाएं ये काम के निछांडे से बिकाए करते चरस से।
0: नी चाड़े नी चाड़े,
1: हाँ।
0: अब सब बढ़ गए ले, सबके दख ले, पर
1: हाँ
0: काय चाड़े दे।
1: हाँ उन तो आए छी। हाँ
0: हाँ,
1: तो आले कांति दीदी तू इतना अच्छा तू जो साग भाजी बीन तू तू जो जीवना चो गोट के सांगली साल खूब खूब जुआर ते दीदी
0: जीवार दादा
1: जुआ
0: जीवार।
1: जुआ।
2: हाँ तो बहन मन, ये कांति बहन चो ये जन स्वरोजगार मूर कर लो गोट क्या मैं जान लू। और कितरो बहन मन आसो ताम चो आरा पारा ने हुन मन भले नी साग भाजी चो व्यवहार कर सो ने और आप लोग कमानी कर सो। ये कितरो सुंदर भेंट वार्ता के सुन लू एदाएँ गीत गोविंद बाट मूर कर तो समया बले होली तो बेर नी करूँ और ये सुंदर सुंदर गीत मन के बले सुनूँ। तो पहिल गीत आए बिपिन बिहारी दास और हुनचो संगवारी मंचो गालो ये काय सुंदर हल्बी गीत के आलिया सुनूँ।

0: तो बहिन मन, ये कितरो सुंदर हलबे गीत की आमी सुनलू। और जेब आमी गीत गोविंद की सुनू आनी, आमचो मन के हरिक लागू आए। आ मन में जे बले चिंता धोखा फिकर रहे से नी, हुन लापे गुचे से। असनी गीत गीत ने गीत और आसे मचो लगे, हुन गीत के बले सुनुआ, मांतर पहलिए जहला के सुनू।
1: सो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता, डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो। इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़, अदेन के इलाज तले खर्चा वेंट कम लगे माता। जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता, अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता। सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता, अद कम मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोरकीता।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे, आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाई समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाई सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: तो बहिन मन, गीत गोविंद काजे जोन आमचो भित्रे माया आसे हुन कम नी पड़ो। और हुन काजे मैं ए आमचो कार्यक्रम चो सरासरी बेरा गोटक और गीत के सुनायन से। तो ये गीत कुरियात लखमुराम और हुंचो संगवारी मन आलेया, ये गीत के सुनो।

तो बहिन मन, एक काय सुंदर बाजा संगे आम्ही गीत की सुनलू और काय सुंदर गीत बल रहे ने। बहिन मन, घड़ी बले से मन की तुझे मोंडरा के सकल काय काजे की जातो समया होली। तो बहिन मन, असनी आम चो कार्यक्रम के सुनते रहा और असनी आम के मया देते रहा और मके दिया विदा। तो जाते पूरे कार्यक्रम घर द्वार सुन तो मचो सब पाए दीदी बहिन के मन की चो जुहार।

0: अभी ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देश

0: संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
2: आज आमी गोठियामा मांडो बांगा ने कीड़ी मंचो रोक थामचो उपाय चो बारे ने असन तो तुम्ही सफाई जानास कि आमचो देश कृषि प्रधान देश है और यथा लोग मन जुगे करून खेती किसानी करून आपलो जीवना के चलासोत। खेती किसानी ने बले आजिकाली साग भाजी चो कमानी के किसान भाई बहन मन आगर करूक मन करसोत। असने दखा साग मांदी ने जोन राजा होय से हुनाय मांडोबांगा। मांडोबांगा ने देह काजे बल बफूबीती पोषक तत्व जसन के विटामिन ए और विटामिन सी मिरे से मांतर जसन की तुम्हें सफाई जानास कि कहीं कमानी हो कीड़ी मन हुनके दखू निसहोत। मांडोबांगा ने बोले असने कई प्रकार चो कीड़ी मन झपासोत। एचो काजे पल्हा तैयार करतो बेरा मोनोक्रोटोफास 36 SL 1 मिलीलीटर के 1 लीटर पानी ने घोरून छींचतो राय। संगे संग जाइनेब नहाले मैंकोजेब 2 ग्राम के 1 लीटर पानी हिसाब ले घोरून छींचतो राय। मांडोबांगा ने जुगे करून सफेद लट नाव चो कीड़ी होय से ये कीड़ी मन बूटा चो जड़ के खासोत और बूटा असन ने पूरा सुखुन जाय से। ए मन के मरलातो काजे 4-8-10G नाव चो ओखत के 25 किलो के 2.5 एकड़ चो हिसाब ले रोपा लगातो पहिर बेड़ा ने लेन मन ने लगातो राय। असने गोटोक और कीट हो से जेके फर छेदक बलतोर हो से ये मन फर के काना बना सोत।

0: अपन के मरलातो काजे NPV 250 LE नाव चो ओखत के 2.5 एकड़ चो हिसाब ले करून एके एचई संग आम के 20 ग्राम गुड़ के 1 लीटर पानी ने घोरून सफाई के मिसाउन हुथा चीज तो रहे असने गुटक और ओखत होई से जेके मेलाथियान 50 EC बलतोर होई से तो मेलाथियान 50 EC जो 1 मिलीलीटर के 1 लीटर पानी ने घोरून किसान भाई बहन मन छिचुक सकोत गोटक और कीड़ी होई से सफेद माछी सफेद माछी 15 रंग चो नानी नानी कीड़ी मन होसोत ए मन बूटा ने जोड़लो ने बूटा चो सफाई रस के चुहकुन बूटा के सुखान देसोत ए मन के मरलातो काजे लीम चो पाना अरु हुंचो बीजा के अच्छा उखड़ाउन जो पानी तैयार करतो राय और हुन रस पानी के 5% हिसाब ले छीज तो राय संगे संग एसी फेट 75 SP 2 ग्राम नहाले एसी टामी प्रिट 20 SP चो 0.5 ग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून छिचलो ने बोले लाभ मिरे से असनेच माहू कीड़ी बोले मांडो बांगो ने झप के धरे से ए मन के मरलातो काजे डायमेथो 8 30 EC 1 मिलीलीटर नहाले थाया मिथोक्लाज्म 50 WG 0.4 ग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून छिचलो ने बोले लाभ मेरे से संगे संग ले लीन जो उखड़ा पानी के बल छिचुक सकोत असने गोटोक और कीड़ी होय से जेके हरा तेला बलुक होय से ये मन बले बूटा के खूबे नुकसान अमरासोत ये मन के मरलातो काजे थाया मिथोक्लाज्म 25 WG 0.4 ग्राम नहाले डाई मेथोएट 30 EC 0.1 मिलीलीटर के 1 लीटर पानी ने घोरून छीच तो रहे नहाले एसी फेट 75 SP 2 ग्राम नहाले एसी टामी प्रिट 20 SP 0.5 ग्राम के 1 लीटर पानी ने घोरून छीच तो रहे सूत्र कृमि नाव चोकीड़ी बोले बूटा के सरसरा बाढ़ुक निदे ए मन के मरलातो काजे रोपा लगातोर पहिल 25 किलो कार्बोफ्यूराम 3 G नाव चो ओखत के 2.5 एकड़ हिसाब ले माटी ने मिसान उठा मिसा तो रहे असने सांगलो हिसाब ले किसान भाई बहन मन आप लो मांडो बांगा चो कमानी करला जाले हुन मन चो फसल कीड़ी ले बाचे दे अरु हुन मन अनगर लाभ धरुक सको
1: अभी कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट का पुनः प्रसारण किया गया ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर और FM बैंड 100.1 MHz पर भी सुन रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम श्रोता सुमन। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मनिंदर सिंह देवगुण और आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम श्रोता सुमन। आइए आज की सुहानी बेला में संगीत के सुंदर सुमनों से महकाते हैं आपका मन और सुनते हैं आपकी पसंद के एक से बढ़कर

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में अभी आपने कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म वो सात दिन से सुना। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने की चाहत आप सबकी थी।

हम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू, अघनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णा राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी रोजा मास्टर शिवांशु, डी सोमशेखर राव नायडू, आप धनोरा जगदलपुर से हैं, वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, रीशु, वी चैतन्य, दुर्गेश कुमार, अक्षय कुमार और अभिषेक नायडू। इस गीत की फरमाइश नांदुड़ा महाराष्ट्र से आई थी सोपान तायड़े, विजया तायड़े, अमोल और सरिता तायड़े की। नांदुड़ा जी गांव के श्रोता हैं वसंतराव भोजने, सुनंदा भोजने, राजू भोजने, सोनू भोजने और निवृत्ति याडोकार। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन कमनेकर, धीरज सव्वासेरे और वरुण जामटी से मुकेश कासलेकर और विशाखा बोबड़े थे। आप मोर टक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल थे। लोरमी चचेड़ी के श्रोता कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी थे। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री और महेंद्र सुथार थे। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर। सुनीता बाई घायाल, सानिका गजानन घायाल, आप सभी मालेगांव के श्रोता हैं। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं रामचंद्र ढोंडीबा हिंगोले, सिद्धांत, टिंकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम हिंगोले, नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल और सुनील जबड़े हैं। सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी इस गीत की फरमाइश की थी कोंडा गांव के भंडार सिवनी से। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, क्षीरसागर और संजय कुमार चौहान। मछली गोदाम कैदीगुड़ा रायगढ़ से फरमाइश आई थी पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका पूजा, लीलू, रीतु और ऋषभ सिंह की। आप हैं उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री, गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश।

0: प्रमोद रोहित और मोहित के साथ बिना आर्य गोल बाजार बक्सर के श्रोता हैं। लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और उनके साथी हैं। इसी गीत की फरमाइश आई थी गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले की। पहाड़ा हीरवार दुर्ग से भी सुनना चाहते थे पोषण बंछोड़, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोड़। और इसी गीत की फरमाइश दादी नादुरा महाराज से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे ने भी की थी। आप हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवी से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ चर, डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, गांधी चौक पंजाब से हरदेव बलदेव, जयतेग और मिक्का विर्क, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार चंदन के साथ गजेंद्र कुमार चंदन, सोंगा मगरलोड धमतरी के श्रोता हैं। और आप हैं खुपटी महाराष्ट्र से बंधु लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट, साथ में हैं हरिभाव भिड़वे, श्रावण और अनिता भिड़वे, श्रीरामपुर भोकर के श्रोता।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: श्रोता सुमन कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन, पुष्पराज और पंचू सेन। आप हैं बलोदा बाजार पलारी से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। बड़गांव बुल्ढाना महाराज से हैं वासुदेव वोदवड़े, माधुरी वोदवड़े, आकाश कुमार वोदवड़े। आप शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी हैं। बुल्ढाना महाराज के श्रोता हैं अनिता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े, लोकेश कुमार गाठोड़े। लौंडीगुड़ा बस्तर से चंदन नाग, हरीश नाग, मोतीलाल मौर्य, दुखुरा मौर्य और रामधर बघेल। हरियाणा से हैं चोटाला के श्रोता दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। आप हैं दिल्ली राजरा से ललित यादव, श्रीनिवास, सुरेश नागवंशी। दरभा बस्तर के श्रोता हैं रामधर कश्यप, सोनू राम ठाकुर और भीमा सोड़ी। जलालाबाद से हैं सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से आप श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना और खुशी गोस्वामी। बिलाईगढ़ के श्रोता हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। ऊपरकोट मोहल्ला चौकनटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निखात परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान। और अब हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई, जिला झालावाड़ा राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्य नारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास तेलीपारा बिलासपुर से हैं। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन हैं। बमहर चाटीडी से हैं गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन हैं। पन्नालाल सेन, तारा, कौशल और खुशबू सेन बागबहरा भदर सी से हैं। यवतमाल विदर्भ से हैं संतोष और विनोद खड़से। जेल रोड रायगढ़ से हैं भाई नरेंद्र कुमार तिवारी। गुमला झारखंड से हैं एस एम जावेद, शगुप्तांजू। गोरबा बिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामिनी और यश कर्ष हैं। और प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक मुकुल, दिव्यांश धैर्य और आराध्या आप सभी उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापुर के श्रोता हैं। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय ठाकुर। सोना डी के श्रोता हैं सुब्रत चौधरी, बीबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना और बिट्टू कुमार। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल हैं। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से हैं दरियानमल, अनिता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी। गांधी बाग नागपुर से अशोक कुमार सावली, झूलेलाल

तिलदा से हरीश, कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू, मोनीश और अनुराग कश्यप हैं। घंटाघर चौक खंडवा के ये श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी रावत, शुभम और सौरभ रावत, आप लोहेड़ी महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, रिया, राघविंद, दिव्यांशी, रागिनी और द्रोणिका यादव हैं। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया हैं। और ये श्रोता हैं नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, बेमद्रा से हैं श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्य, श्रीमती सुषमा सारथी, सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर, मध्य प्रदेश पन्ना से हैं कौशल किशोर, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू, और आप हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। आप सबके अनुरोध पर हमने फिल्म साजन का गीत लिया है। मिली जुली आवाजें हैं कुमार शानू पौड़वाल और एस पी बाला सुब्रमण्यम की। समीर की बोल, मौसीकार नदीम शवन।

श्रोता सुमन कार्यक्रम की अगली गीत की फरमाइश करता हूँ कि नाम चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, आप हैं हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव और भीषण दास मानिकपुरी, जरूर वरूर महाराज से हैं बाबा साहेब वाड़ोदी, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक और युवराज, सांवरगांव से रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर और मीनल नारे, अनूपपुर के श्रोता हैं जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी और कृष्णा केवट, रोहनसी पलारी से श्यामलाल साहू, युवराज साहू, बिंदु साहू और वर्षा साहू, गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक, नागर कोहरा राजनांदगांव के श्रोता हैं छग्गर राम साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, आप सभी हैं उत्तराखंड के श्रोता। बगला मटिया बालोद से हैं शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रंबिका, लीना अंशु, माला आशुतोष अंगारे, ग्राम भर्री टोला डोंडी बालोद से हैं नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू, प्रियंका और मुरली गौतम। हीरावाली फजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, भीमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, चंडीगढ़ से हैं शेफाली, अरुण कुमार, शेफी और हिमांशु सेठी, हनुमानगढ़ बुर्ज फाजिलका से रमन अमन वर्मा के साथ डॉक्टर मदनलाल वर्मा हैं। आप हैं रेडियो रामेश्वर नगर भनपुरी रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता, राष्ट्रपाल गजबी है राधिका, बेबी अनिश कौर तन्मय गजबी है राजनंदगांव के आप श्रोता हैं, कंडला बंदरगाह से हैं जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी और जेनिश, गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी हैं ये श्रोता हैं, विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोक, सुशीलपुरी, नीलम, बीकेपुरी, कैलाश, रमा और आरएसपुरी, आप सभी श्रोता हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से, वाशिम महाराज से हैं मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि निधीश और मायरा सुरोशी, डोंबिवली मुंबई से भावना, अधीश यादव, स्मित कोरे और श्रियांश कोरे हैं, संतोष कुमार सोनी, सुनीता, अखिलेश, नेहल, पीहू, छोटी दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा रामापूर्वी, पुलकिता, खुशी, लल्लू पांडे और भूषण सोनी गोल बाजार खपरी कला के ये श्रोता हैं, ग्राम बग बुड़वा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दीपिंदर, वीरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत, आप सभी भटिंडा पंजाब से हमें पत्र भेजे हैं। आप हैं कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन, आशीष और अस्तिका चक्रधारी,

मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा। नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ कोली महाराष्ट्र के आप श्रोता हैं। गीदम रोड से हैं टी राजू राव, टी सुनील, शिवानी, कृष्णा, तुलसी, भाग्यलक्ष्मी, आनंद, मनीषा, नानू, साक्षी, काव्या, राशि, राधिका और श्रवण कुमार राव हैं। आप ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया, साथ में है रिजवान खान, आयशा, सबियाना, शौर रेहान, परसा टोला, अंबागढ़ चौकी के ये श्रोता हैं। गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जीएस रामगढ़िया, ये सभी श्रोता हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से। सेमिनरी हिल्स नाना, नागपुर से नाना डोंगर दीवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल डोंगर दीवे, जबलपुर, जवाहरनगर के श्रोता हैं जिनेन्द्र जैन, महेंद्र और सत्येंद्र जैन। ग्राम मामड़पाल दरभा से हैं गणपत बघेल, मनीष और अनंत बघेल। बटिंडा रोड डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नांगरंग। बटेना से बलकरण, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा। चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सोहद्र वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। और मदनपुर कवर्धा से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। और आप हैं भिलाई से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म आशा के इस गीत को, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, स्वर लता मंगेशकर का है, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद के श्रोता हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली, मास्टर अल कबीर, बेबी पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया। ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव से हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, कुमारी अंजलि सारवा। किकिरमेटा बेलहारी पाटन से हैं संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा। गुरामी डोंडी लोहारा बालो से हैं पीयूष नेताम, जोहर त्रिबाई नेताम। आप हैं मेघापारा लोरमी से कृष्ण कुमार साहू, धनंजय सत्यम, कुमारी गायत्री और मनोज कुमार साहू। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। पारण विश्रामपुरी से हैं प्यारीदास मानिकपुरी, शिव कुमारी, खिलेश, नमिता और टिम्पी मानिकपुरी। राजनगर मधुबनी बिहार से हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी और संतोष सिंह। आप हैं पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी और गुरमंतन। महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे वरुड़ जौलका के आप श्रोता हैं। सुरित रमेश साहू, तारा विद्या, किशन कुमार, चंद्रहास, हीरेंद्र कुमार, सुनीता, त्रिलोक कुमार, जितेंद्र राजा, रणजीत सिंह साहू, ये सभी श्रोता हैं जुनवानी जिला दुर्ग के श्रोता। बेमित्रा से हैं भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल और भगवान सिंह राजपूत। अनारकली बजराव जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीपी काव्य और भाई सुच्चा पाठक। आप हैं केशकाल से सुनील यादव, शिव कुमार, बीपी तनिष्का और नौबत यादव। रानीगांव नगरी से हैं किलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम सेजल, इंद्राणी, रोहन भरोसा। हटोत बाजार लाहौद के श्रोता कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर और राजकुमारी पटेल। कस्बा गुन्नौर से हैं फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फरिया और ताहिरा। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से हैं कमलेश साहू, जितेंद्र और पायल साहू। आप हैं यमुनानगर बुलंदशहर से धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता और मून सोलंकी। संबलपुर कांगेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, शिका और तेजल यादव। कुंडलवाड़ी नांदेड़ से हैं गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी, राजेश, राकेश और रक्षित सावनकर। बुलंद शहर से हैं पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति और वंशराज सिंह। उमरगांव नगरी से हैं दीपक कुमार साहू, अंजनी बाई, उमाशंकर और ठामेश्वरी साहू। बोरागाछी से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप हैं शंकर सलाम, नरसिंह थापा, चैतराम नेताम, शिव राम जैन, रामधर कश्यप और डोमन लाल कोठारी के साथ ललित नागवंशी, ये सभी बस्तर के श्रोता हैं। बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा, नसरीन, परवीन, रोजी, परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया, ये सब जमशेदपुर के श्रोता हैं। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा राठौड़। आप पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति बुजगहन के आप श्रोता हैं। जालना महाराष्ट्र से हैं विजया पाटिल, पद्मा बाई, ज्ञानेश्वर और तेजस्वी।

ये श्रोता हैं कांवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज शिमाली। चित्तलवाड़ी अकोला से हैं अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले और उनके साथ ही। भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर हैं। आप सबकी चाहत पर पेश है फिल्म आत्माराम का ये नगमा। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं, शब्द रचना है विश्वेश्वर शर्मा की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान और उत्तम जमधाड़े। प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले गौतम नगर जिला नांदेड़ के श्रोता हैं। धमधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकून जंघेल, आरुषि ओशिका और अंजलि जंघेल। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां लक्सर हरिद्वार के श्रोता। गुलाबदास मानिकपुरी।

राजादास मणिकपुरी और रानी मणिकपुरी लेवई छत्तीसगढ़ से हैं। आर्य नगर कोहका भिलाई से हैं। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल भिलाई के श्रोता हैं। सुशील जैन, कल्पना जैन, सोया, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन, गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री आप सभी देवरी भाटापारा के श्रोता हैं। पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा के साथ वीरेंद्र साहू। उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका, भानुप्रिया दिवाकर, पीपर पारा, पालचुआ, मुंगेली के आपने पत्र भेजा यहाँ से। भाटापारा बलौदा बाजार से विष्णुपुर पूरब, वीरा, योगेश्वरी, कुमकुम और हर्ष साहू हैं। विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दिशा और कुश मुड़त आप सभी हैं बोरखेड़ा उज्जैन से। धरसीवा से हैं छेंदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। रायपुर से है छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव। औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद और सुभाष बोरगांवकर। बेरड़ी से है हुकुम कर्मकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु कर्मकर। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नतीम अली और जुनेद अब्बासी। ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। अमरपुर पेंट्रा से हैं दीपक कुमार साहू, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव आप सभी शिवाजी चौक राजीम से हैं। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक और अमोल मानकर, निप्पी साहनी, सुनीता और संदीप मक्कड़ आप सभी हैं रामगढ़ कैंट झारखंड से। बुरसुंदा से हैं चंद्र प्रकाश, श्री चिराग सेन, संतोषी, नेहा सेन, भगवानी और गजेंद्र सेन। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और अवधेश राय के साथ श्रीमती प्रीति और नवनीत राय हैं। और दुर्गा चौक जूनापानी सनावद मध्य प्रदेश से हैं कालू सिंह वड़ोले, सीताराम, हीरा लाल, तेज सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन और रमा कंचन।

आप इस गीत का आनंद ले रहे हैं फिल्म नमक हलाल के। इस गीत को गा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले। और श्रोताओं, अब मुझे कार्यक्रम श्रोता सुमन से विदा लेने की अनुमति दीजिए। आशा है आज का ये संगीत मेरे साथ आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी एक नए दिन, नई ताजगी और आपकी पसंद के मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।

0: अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: संगीत आरटी

0: West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in 3rd India-Australia Annual Summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका

0: ऑपरेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा

0: प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली NCR में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई EMI नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक VK बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5,500,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़ गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 50

0: सी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के पांचवें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का

0: सहयोग जरूर करें।
1: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
0: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
0: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
0: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
0: जी।
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं।
0: आज
1: हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
0: जी।
1: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
0: जी। अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
0: जी।
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
0: जी।
1: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
0: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
1: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,

0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते।
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना।
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना।
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें।
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें।
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता।
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता।
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना।
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना।
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता।
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता।
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते।
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया।

अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।

0: और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
0: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
0: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद पट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया

0: ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए

0: कैसे चित्र?
1: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
1: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
1: आई
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
0: अरे इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
0: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
1: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
1: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
1: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
0: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
1: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
0: वाकई कमाल है।
1: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
0: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
1: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
1: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
0: सच?
2: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCRT सुन रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। युवाणी शाम 5:10 पर। गोंडी समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर। बस्तर के स्वर कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव। रात्रि 8 बजे कुड़ई फूल कार्यक्रम में सुनिएगा बसंती और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। पिलामन काजे गोट हल्बी बोली में रात्रि 8:30 पर प्रस्तुति होगी सुब्लू राम कश्यप की। पुरानी फिल्मों से रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम वार्ड, इसमें आप सुनेंगे शासकीय योजनाओं की जानकारी के तहत वार्ता। विषय होगा किसान नीति। प्रस्तुति होगी लखमू राम मरकाम की। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम परिचर्चा। विषय होगा बस्तर की लोक साहित्य लोक संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। प्रतिभागी होंगे रुद्र नारायण पानीग्रही और विक्रम सोनी। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा हम आपके लिए लेकर आएंगे आज रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र दोपहर 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम, 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:55 और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक एकांश, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रातःकालीन सभा में कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुबह 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा मधु महापात्र का। सुबह 6:25 पर सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर होगा मालिनी का। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे 35 मिनट और दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। हुलहुली कार्यक्रम में कल सुबह 6:40 पर सुनिएगा मावली माता पाड़। वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। कल के आकर्षण होंगे वार्ता। विषय होगा महिलाओं की स्वयं की पहचान और स्वतंत्रता के सही मायने। वार्ताकार होंगी माधवी यादव। साथी होगी फिल्मी गीतों की मधुरी माँ। लोक मंजरी कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। पाटाविनार कल सुबह 9 बजे, इसमें सुनिएगा सुगदई और साथियों के गाए धुरवी लोकगीत। एक ही फिल्म से कल सुबह 9:30 पर। कल की फिल्म है तुमसे अच्छा कौन। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। सुबह 10:30 पर होगा कार्यक्रम गुड़दुम, इसमें आप सुनेंगे सामनाथ और साथियों के गाए धुरवी लोकगीत। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। कल का कार्यक्रम केंद्रित होगा बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया।

का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 2 बजे प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर 2:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सांध्यकालीन सभा में कल शाम 5:05 पर होगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्पी बोली में। युवाणी का प्रसारण समय कल शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनिए जलधर और साथियों के गाए हल्पी लोकगीत। बस्तर के स्वर कार्यक्रम का प्रसारण समय कल शाम 7:00। शाम 7:21 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। डांडामाली कार्यक्रम में रात्रि 8:00 आप सुनेंगे बालमती और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। पिलामन का जगोट हल्पी बोली में कल रात्रि 8:30 पर। कल रात्रि 9:15 पर सुनिएगा ग्राम पंचायत की विकास गाथा कार्यक्रम। रैनी का प्रसारण समय कल रात्रि 9:30 पर। गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का आनंद लीजिएगा कल रात्रि 10:00। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

0: हॅलो, गुड इवनिंग संगवारी मन. तो स्वागत आहे तुमच्या मनपसंत कार्यक्रम युवाणीने. आजीचो युवाणी कार्यक्रम के धरून अमरलू से मैं आहे तुमचो कंपेयर दोस्त खीर सागर
1: और मैं आहे तुमचो कंपेयर दोस्त किरण कश्यप. हमें दोनों करू से सपाय संगवारी मन के जुहार. तो खीर सागर.
0: हाँ किरण.
1: आजीचो समय ने मानसिक स्वास्थ्य बल्लो ने काय के बल वज्जा निस.
0: हाव किरण. मानसिक स्वास्थ्य बल्लो ने मनुष्यचो समग्र स्वास्थ्यचो गोटक महत्वपूर्ण भाग आहे. विश्व स्वास्थ्य संगठनचो अनुसार मानसिक स्वास्थ्य हुन अवस्था आहे जोचो ने मनुष्य आपलो क्षमता के पहचानू आहे और जीवनचो सामान्य तनावचो सामना करू आहे.
1: हाव काय. और स्वास्थ्य शरीर संगे संगे स्वास्थ्य मन बले होतो जरूरी आहे. बल्लो ने मनुष्य चो विचार भावना और निर्णय धरतोर क्षमता हुन मन का जे मानसिक स्वास्थ्य ने निर्भर बल करुआ है. और व्यक्ति मानसिक रूप ले स्वस्थ रह दे तो हुन जीवन चो कठिन परिस्थिति मन चो सामना बले धैर्यपूर्ण करु सको और आप लोग काम काज के कौशल पूर्व पूरा करु सको. और बल्लो ने पारिवारिक और समाज चो संगे अच्छा संबंध बले बना सको.
0: हाँ, मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक रोग चो अभाव न आए बल्कि ये असन स्थिति आए जोन थाने लोग आप लोग विचार भावना और व्यवहार के संतुलन बनाओ रखवात. और मानसिक रूप ले स्वास्थ्य व्यक्ति आप लोग क्षमता के बले पहचानवात और तनाव चो बले सामना करवात. समाज ने सकारात्मक योगदान देवात और संतोषपूर्ण जीवन जीवात.
1: मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति जो संपूर्ण विकास ने बले जरूरी होए से कसन बल्लो ने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ने वृद्धि तनाव और कठिन परिस्थिति जो सामना करु सको. निर्णय धैर्यों का जे क्षमता जो विकास पारिवारिक और सामाजिक संबंध ने सुधार कामकाज और उत्पादन ने वृद्धि शारीरिक स्वास्थ्य ने सकारात्मक प्रभाव जीवन ने संतोष खुशी और मानसिक शांति बले मिले से.
0: हाँ, मानसिक स्वास्थ्य ले समस्या मन बले उत्पन्न होए से जैसन कि तनाव जहाँ व्यक्ति चो कार्य पढ़ाई परिवार और आर्थिक समस्या मन चो अत्यधिक दबाव हुआ है और तनाव उत्पन्न हुआ है और खुबे समय जो तनाव मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के प्रभाव करुआ है.
1: हाँ काय. और चिंता भविष्य के धरुन अत्यधिक डर घबराहट और बेचैनी चिंता बले बलुआत. सामान्य चिंता स्वाभाविक आय मंतर अत्यधिक चिंता दैनिक जीवन ने प्रभावित करुआ है.
0: हाँ. शराब तंबाकू और नशा पदार्थ मानसिक स्वास्थ्य के गंभीर रूप ले प्रभावित करुची है ने.
1: हाँ
0: और कई मानसिक रोग मंचो कारण बले बनु सके कसन.
1: हाँ काय. और मानसिक स्वास्थ्य चो समस्या के लगातार उत्पीड़न जसन की चिड़चिड़ा अत्यधिक चिंता रीस नींद चो कमी अधिक नींद और सामाजिक गतिविधि लेबले हो सके. आत्मविश्वास की कमी निराशा और नकारात्मक सोच विचार थकान बले उत्पन्न हो से.
0: तो मानसिक स्वास्थ्य के बनाव रख तो काजे हम के प्रतिदिन व्यायाम योगा और प्राणायाम बले करु पड़े से ने. तनाव कम हो और मानसिक शांति बले मिलुआ है. तो पौष्टिक जसन भोजन मस्तिष्क के आवश्यक पोषक प्रदान करुआ है और मानसिक स्वास्थ्य के
1: बेहतर
0: बनाऊ है.
1: हाँ काय. और प्रतिदिन 7-8 घंटा जो नींद बल धर तो जरूरी हो से.
0: हाँ.
1: जो चले मानसिक संतुलन बनान रूप हो से.
0: हाँ.
1: जरूरी है जैसन की ध्यान ने मेडिटेशन और प्राणायाम मन शांत रहुआ है और एकाग्रस्त बनाउन रुआ है.
0: हाँ.
1: और योजना बनाउन समय जो सही उपयोग कर लेने तनाव बले कम हो से.
0: आजकल जो जीवन ने विद्यार्थी मन ने परीक्षा चो दबाव बले रहे से प्रतियोगिता चो करियर कसन बनात रहे उनचो बले चिंता रहे से और सोशल मीडिया चो कारण तनाव बले बढ़े से.
1: हाँ
0: तो अभिभावक और शिक्षक के विद्यार्थी मन चो मनो

0: बल्कि आगे बढ़ा तो जरूरी आए और हुन मंचो स्वास्थ्य जीवन शैली अपना तो काजे प्रेरित बले करतो
1: रहे। हाँ, और महिला मन घरेलू जिम्मेदारी, कार्यस्थल चो दबाव, सामाजिक भेदभाव और हिंसा जसन समस्या मन चो सामना करवात हुनी काजे हुन मन चो मानसिक स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, सुरक्षा और सामाजिक सहयोग बले जरूरी हो छे।
0: बढ़तो उम्र ने अकेलापन, बीमारी और आर्थिक समस्या जैसन मानसिक स्वास्थ्य के प्रभावित कर हुआ है और परिवार जो सहयोग, नियमित स्वास्थ्य जांच और सामाजिक गतिविधि ने भागीदारी बुजुर्ग मानसिक स्वास्थ्य के बेहतर बना हुआ है।
1: हाँ, और समाज ने मानसिक रोग मनले जुड़ने ने भेदभाव और गलत धारणा के समाप्त कर तो काजे जरूरी है। विद्यालय, महाविद्यालय और कार्यस्थल ने मानसिक स्वास्थ्य चो प्रति जागरूक कार्यक्रम आयोजन कर तो सरकार चो मानसिक स्वास्थ्य सेवा चो विस्तार, अस्पताल ने उपचार चो सुविधा, परामर्श केंद्र, परिशील विशेषज्ञ जो उपलब्ध और जन जागरूकता अभियान चलातो बले जरूरी है।
0: हाँ, मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुखी और सफल जीवना जो आधारशिला है। मानसिक रूप ले स्वास्थ्य व्यक्ति न केवल परिवार, समाज और राष्ट्र चो विकास ना ने बले महत्वपूर्ण योगदान दे हुआ है। हुनी काजे मानसिक स्वास्थ्य चो देखभाल बले जीवना चो हिस्सा बनातो रहे ने।
1: हाउ का है तो आज ही का जे ये गुड बात इतली रहोग दे संगवारी मन। और कार्यक्रम ने धरु नीलू से हमें यादों के स्वर जोन थाने तुम्हें सुना से पुराना फिल्म गीत मन और सामान्य ज्ञान और संगे संगे धरु नीलू से हमें कवि पाठ।
0: तो संगवारी मन आज चो हम चो यादों के स्वर चो भीतरे आज चो पहल गीत आए फिल्म सौतनले जोन 1983 में रिलीज होन रहे। हुन साल चो एक सदाबहार और रोमांटिक गीत रहे। ये थाने आप लोग आवाज़ दिला सोत दिग्गज गायक लता मंगेशकर और किशोर कुमार और गीतकार प्रदीप कौशिक और संगीतकार उषा खन्ना अली यसुनु।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5

0: आज पर कॉल करें।
1: तो संगवारी मन, अगला गीत है फिल्म अगर तुम ना होते तो। प्रसिद्ध गीत है जोन थाने सहलेंद्र सिंह और रेखा आपलो आवाज दिला से। इचो बोल गुलशन बावरा लिखला सोन और संगीतकार आर डी बर्मन। तो यह सुनो ये गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: किरण,
4: हाँ।
3: गीत गोविंद तो सुनते चलो हमें ने
4: आज
3: हम जो मोड़रा ने कविता पाठ के बोलते धरो नीलू से संगवारी मन लगे एक बोल तो हमरा तोरा कसन
4: हाउ कैन।
3: तो आज ये जो कविता पाठ जो शीर्षक है वक्त, जो कि प्रियांशु गोस्वामी सांगला से अलिया सुनो ये कविता पाठ।
5: रेडियो की तरंगों पर एक बार फिर आप सुन रहे हैं प्रियांशु गोस्वामी की आवाज, जो प्रस्तुत है अपनी स्वरचित कविता लेकर। पहले भी मैंने अपनी कविताएं सुनाई हैं, आप मुझे पहले भी सुन चुके हैं। वो समय बीत गया, आपको याद हो न हो मेरे लिए याद बन गया। मेरी यादों में वो सारी तस्वीरें कैद है जो मेरे लिए जरूरी है। कुछ लम्हे हैं जो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो कुछ हैं जो मुझे दुखी भी करते हैं। पर कुछ भी हो, उन लम्हों ने मेरे मन में एक अलग ही छाप छोड़ दी है, जिसे मैं याद कहता हूँ। ऐसी ही यादें आपके पास भी होंगी। मैं अगर कहूँ आपकी खुशी का कारण, शायद किसी का चेहरा आपके मन में आया हो, उसका नाम आपकी जुबा तक पहुँच चुका हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी यादों में बसा है। अच्छा, आपके दोस्तों में किसकी यादें आपके मन में सबसे पहले आती है? उनके साथ की गई कौन सी ठिठोली आपकी मुस्कान बरकरार रखती है? देखा जाए तो ये यादें ही तो जिंदगी है, और आज की जिंदगी ही कल के लिए यादें हैं। तो चलिए, इन्हीं यादों पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, जिसे मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो सुनिएगा, ये पल क्यों इतने याद आते हैं, बीत कर भी क्यों याद बन रह जाते हैं। कुछ भले ही इन्हें याद करे, पर कुछ क्यों हमेशा भुला दिए जाते। हर याद कहने को तो याद ही होती है, किसी के लिए खुशी तो कभी गम की बात होती है। किसी की याद कभी ताज बन जाती है, तो किसी की याद बस काम काज रह जाती है। यादों की खूबसूरती देखो, एक शिशु की याद जब उसकी याद में ना हो, उसकी जी हुई जिंदगी उसके साथ में ना हो, तब वो लम्हे जिन्हें याद है उन्हें बोझ नहीं लगते। किसी के बचपन में ऐसे खो जाते हैं कि अपनी खोज नहीं करते। किसी चांदनी रात में एक प्रेमी की याद में, एक चकोरी नारी के हाथों हाथ में, तब साथ बिताए लम्हे कभी पूरे नहीं लगते। वो यादों के गुच्छे फिर अधूरे नहीं लगते। यौवन की यादें जो बाद में हंसाती हैं, बचपन की अटखेलियां जो धीमी सी गुदगुदाती है, वो यादें फिर उदासी में साथ नहीं छोड़ते, अकेलेपन में भी कभी अकेले नहीं छोड़ते। ये यादें कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी शांत मन में हल्की गुनगुनाती है, कभी बुदबुदाती है तो कभी सहमा देती है, कभी भारी भीड़ में भी खुद से मिला देती है, कभी थाम लेती है, कभी चला देती है, कभी सिखा देती है तो कभी मज़ा चखा देती है, कभी यहाँ वहाँ पूरा जहाँ घुमा देती है तो कभी लापता बनाकर खुद में घुमा देती है। वो अनजाने जो बस एक बार मिले, वो अब बस यादों में मिल सकते हैं। वो यार और रिश्तेदार जो साथ नहीं, उनके साथ केवल यादों में खेल सकते हैं। आज के पल कल याद बन जाएंगे, हम आज हैं कल हो ना हो किसी की यादों में पाए जाएंगे। बीते कल के उन लम्हों को चलो सजोए रखते हैं, क्या पता आते कल में हम कैसे पहचाने जाएंगे। आता हुआ कल आने वाला वक्त है,

और आज का वक्त कल के लिए याद। यादें अच्छी बनाने के लिए हर वक्त खुल के जीना जरूरी है। वक्त को याद बनाने से पहले वक्त को याद रखना जरूरी है। टिक टिक टिक टिक, सबको सबका वक्त याद दिलाता है, जो शायद किसी के लिए थम सा गया है और किसी के लिए जल्दी बीत जाता है। अंजाम हर कोई जानता है, फिर भी वक्त को ठहरने को कहता है। वक्त जिसकी कद्र कोई नहीं करता, वो सबकी कद्र सिखा जाता है। ये धूप जो ठंड में सुहानी लगती थी, वो गर्मियों में बेगानी लगती है। ये बूंदें जो मौसम तरोताज़ा बना दे, वो बरसात में कीचड़ का पानी लगती है। बच्चे चाहते हैं वक्त जल्दी निकल जाए, बड़े चाहते हैं बीता वक्त फिर आ जाए, पर वक्त बेफिक्र हो बस चलता चला जाए। किसी करीब के करीब आने में जब एक एक क्षण सालों सा लगे, उन यादों की किसी याद में जब हर पल मुस्कुराते हुए कटे, ऐसे में वो वक्त काटना कोई बहाना नहीं लगता। वो बीता हुआ वक्त भी फिर पुराना नहीं लगता। आते कल में भी बस यादें हों अगर, तो कल का समय भी नया सा नहीं लगता। आज और कल जब

0: लोग हैं दोष वक्त का होता है, बदलते जज्बात हैं दोष वक्त को जाता है। बेवजह वक्त को दोषी ठहरा दो तो समय किसी का सगा कैसे हो सकता है? आईना जो सच्चाई का डंका बजाता है वो मुखौटों को कैसे उतारेगा? सच्चाई को ढकता बाहरी पहनावा वो आईना आखिर कैसे नकारेगा? पर वक्त की तो बात ही अलग है, बदलते लोग दिखा देता है, मीठे खट्टे बोक चखा देता है, रिश्तों की पहचान करा देता है, पंछियों को भी बेचैन बना देता है, अपने पराए में फर्क बताता है, किसी को करीब या कोसों दूर ले जाता है, भीड़ में भी अकेला रहना सिखा देता है तो किसी अकेले को भी भीड़ का भागी बना देता है। जो सपने पलकों के अंदर थे उन्हें पलकों के ऊपर बिठा देता है, जिन्हें पलकों पर बिठाए रखते थे उन्हें भी पलकों से नीचे गिरा देता है। सब समय समय की बात है, कोई हमसे आगे तो कोई हमारे साथ है। वक्त को यूं ही खफा बता देते हैं जबकि वही बताता सबकी असल जात है। आज किसी का है कल किसी का होगा, शायद किसी समय सचमुच सवेरा होगा। एक आशा हर किसी के मन में कि किसी दिन मैं वक्त का नहीं वक्त मेरा होगा, मैं वक्त का नहीं वक्त मेरा होगा। धन्यवाद।
1: तो संगवारी मन तुम्हें सुनते रहलास एवे कविता पाठ जो जो शीर्षक रहे वक्त और एक सांगते रहला प्रियांशु गोस्वामी।
2: हाओ किरण, एक अच्छा मस्त प्रियांशु आम जो गोस्वामी जो अच्छा कविता पाठ के सांगलो और वक्त चो बारे में सांगलो ने।
1: हाओ का
2: तो अले संगवारी मन अले दाय फिर आमी मूर करू गीत बाटे। फिल्म लव ये 1991 में रिलीज होन रहे। ये थाने स्वर दिलासो एस पी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा, और ये थाने गीतकारात आनंद संगीतकारात आनंद मिलिंद और गीतकारात मजरूह सुल्तानपुरी। तो अलिया सुनिए गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो संगवारी मन गीत गोविंद तो सुनते रहो आबे ने, आज जो कार्यक्रम ने सामान्य ज्ञान जो गुड बात बोलतो आसे उनके बोलता ले सांगो। तो आज बस्तर सांस्कृतिक और इतिहास जो रचिता डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद मिश्र आए, ये बस्तर क्षेत्र जो इतिहास, जनजातीय जीवन, लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत जो गहन शोध काजे जाना जाऊ आए, और हुन मंचो रचना मनले बस्तर चो समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के समस्तर महत्वपूर्ण योगदान आए।
3: छत्तीसगढ़ जो राजधानी रायपुर आए, नवा राज्य बल्लो ने रायपुर जो राजधानी एक आजे बन ली, क्योंकि ये राज्य जो मध्य भाग ने स्थित आसे, इथाने सड़क और रेल संपर्क बेहतर आसे और प्रशासन चला तो काजे आवश्यक सुविधा पहले ले उपलब्ध रहे, यही कारण ले एक राज्य के मुख्य प्रशासनिक केंद्र चो रूप ने चुनला।
2: हाँ, छत्तीसगढ़ जो प्रथम महिला साहित्यकार डॉक्टर

0: जावा है।
1: छत्तीसगढ़ ने सबले प्रसिद्ध चीज आप लोग प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और खनिज संपदा का जो पूरा भारत ने प्रसिद्ध आसे। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विरासत और कृषि उत्पादन जो कारण भारत जो प्रमुख राज्य में से गोटोक गिना जा हुआ है।
0: तो संगवारी मन तुम्ही सुनते रहला सामान्य ज्ञान जो गोडबात। तो खीरसागर मैं बोलते रहले, बेर नहीं करूँ और कार्यक्रम ने आगे बढ़ूँ। और फिर सुनाओ संगवारी मन के यादों के स्वर जो गीत मन।
1: हाँ, तो संगवारी मन बहुत ही प्यारा गीत और लोकप्रिय मजेदार गीत आए फिल्म सौदागर ले। ये गीत के आनंद बख्शी लिखलासोत और मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले आप लोग प्यारा आवाज दिलासोत और संगीत तैयार करलासोत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अलिया सोनू एक गीत।

तो संगवारी मन असनी ची तुमके आर्गोटोप गीत सुनाऊं दे फिल्म स्वीकार किया मैंने ले। तो स्वर दिला से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और गीतकारा निंदा काजी और संगीतकार उषा खन्ना। तो यह सुनो ये गीत के।

संगवारी मन अगला गीत आए मूवी संगीत ले जोन थाने स्वर दिला से अनुराधा पौड़वाल और सुरेश वाडेकर और संगीतकार नरेश शर्मा और गीतकार संतोष आनंद अलिया सुनू ये गीत।

0: संगवारी मन आम से बोल तो अब जा तो समय होए से ने ताले आम के आदाय विदा बोले दिया आम के मैं खीर सागर
1: और मैं किरण कश्यप
0: हम दोनों करो से
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया।

0: श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख

0: मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाश
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

0: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठका लीन। जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तिजन बाई के नाव ऊपर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर साल दे जाही राज्य सम्मान। गनियारी गांव ला कला ग्राम के रूप में बनाया जाही। और महतारी मंदन योजना के पात्र हितग्राही माई लोगिन मन के ई केवाईसी के पंजीयन के तारीख ल 30 अगस्त तक बढ़ा देगी है। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक लीन। पत्रकार मन

0: आनंद कुमार तिवारी और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मंगलदास ठाकुर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा बने अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य मन बधाई और शुभकामना दे हवें। राज्य शासन ह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 जिन अधिकारी मन के प्रभार में फेरबदल करे है। एकर अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारी मन के तबादला आदेश जारी कर दे गए है। उन्हें राज्य के 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मन ल घलो बदले गए है। प्रतीक जैन ल जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाटाला जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गवला जिला पंचायत दंतेवाड़ा तो उन्हें तन्मय खन्ना ला जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी ला जिला पंचायत राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाए गए है। इकर अलावा गोकुल राम रावटे ला जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी ला जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता ला जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी ला जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयम ला जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास ला जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाए गए है। संगे संग सुरुचि सिंह ल नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त नियुक्त करे गए है तो उन्हें विजेंद्र सिंह ल नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम ल नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा ल नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कामकाज के समीक्षा करें। ओमन राजस्व मामला में जीरो टॉलरेंस के नीति अपनाए और लोगन मन ल बढ़िया सेवा दे के निर्देश दिन। मुख्यमंत्री ह किसान मन के B1A खसरा ऋण पुस्तिका और भूइया ले जुड़े जानबा व्हाट्सएप के माध्यम ले दे जाए के व्यवस्था करे बर कहिन। ओमन लंबित राजस्व प्रकरण मन के जल्दी निपटारा, राजस्व अभिलेख के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवा मन के विस्तार ऊपर जोर दिन। पद्म विभूषण ले सम्मानित जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तिजन बाई ला आज रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच में संगीतमय श्रद्धांजलि देगी। ये मौका में संस्कृति मंत्री राजेंद्र अग्रवाल ह डॉक्टर तिजन बाई के नाव ऊपर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर साल राज्य सम्मान दे जाए के घोषणा करीन। ओमन कहिन कि उखर गृहग्राम गनियारी ल कला ग्राम के रूप में बनाया जाही। संगे संग तिजन बाई के तंबूरा ल रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में देखाय बर राखे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बांचे समाचार कोती। महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राही माई लोगिन मन के EKYC के पंजीयन के तारीख ल 30 अगस्त तक बढ़ा दे गए है। बस्तर जिला के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज सिन्हा हाँ बताइन कि जिला में करीबन 90% हितग्राही मन माई लोगिन मन EKYC करवा ले है। ओमन छूटे हितग्राही महिला मन ले तय करेगे बेरा तक EKYC कराए के अपील करे हवे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के जम्मो पात्र परिवार मन ला घर देवाए बर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ले जरूरी पहल करे के विनती करे हैं। ओमन बताइन कि आवास प्लस 2.0 के सूची और ग्राम सभा के दौरान जौन पात्र हितग्राही मन के नाव शामिल नहीं हो पाए है ओखरो मन के समस्या के समाधान पर जरूरी निर्णय लेके विनती करें। ऐसो दिसंबर में हो या नगरीय निकाय के आम और उपचुनाव की तैयारी के समीक्षा पर आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले बैठक लेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह सचिव स्तरीय बैठक में अधिकारी मल्ला बेरा में पूरा काम करे के निर्देश दिन। जानबा के मुताबिक प्रदेश के 15 नगरीय निकाय जिमा 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद के संगे संग 6 नगर पंचायत शामिल है। एकर कार्यकाल एसो दिसंबर में खत्म हो गया है और संगे संग 2 नवा बने नगर पंचायत में घलो आम निर्वाचन की तैयारी करे जाते। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के गतिविधि ल और ज्यादा प्रभावी बनाए बर उच्च शिक्षा विभाग 29 जिन अंशकालिक जिला संगठक मन के नियुक्ति करे है। ये संगठक मन ल 2 साल भर उपराह जिम्मेवारी दे गए है। उन्हें कलेक्टर मन के समन्वय ले जिला स्तरीय सलाहकार समिति बना के एनएसएस के कामकाज के सरलग निगरानी करे के निर्देश दे गए है। रायपुर के तीर उरलामा एक्ठिन फैक्ट्री में काली संझा होए हादसा में 3 मजूर मन के मौत हो गए है। जानबा के मुताबिक ये घटना ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के स्थिति हुई। विस्फोट के बाद 2 मजूर के मौकच में मौत हो गए और 1 मजूर के अस्पताल ले जात खानी मौत हो गए। 2 मजूर मन मध्य प्रदेश के रहैया रहे तो उन्हें 1 मजूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के रहैया रहे। ये फैक्ट्री में पिग आयरन के रिफाइनिंग के काम होते। पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है। यही बीच औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के निर्देश पर कारखाना प्रबंधन है मृतक श्रमिक मन के परिवार वाले मन ल 30-30 लाख रुपया के आर्थिक सहायता दे ऊपर मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल है इंडोनेशिया में पीटी क्राकाओ टाऊ स्टील परसेरो टीबीके के संग समझौता ज्ञापन ऊपर दस्तखत करे के घोषणा करे है। इस समझौता के तहत स्टेनलेस स्टील स्लैब के उत्पादन पर 1 संयुक्त उद्यम बनाए के संभावना खोजे जाही। सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा कहिन कि ये साझेदारी पारंपरिक सीमा ले परे और अवैया बेरा बर क्षमता निर्माण करे के प्रति सेल के प्रतिबद्धता ला दर्शाते। अफ्रीका में 4-12 जुलाई तक चलत एशियन पैसिफिक और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के जयदीप साहू ह स्वर्ण पदक जीते है। जयदीप ह 66 किलोग्राम सीनियर वर्ग में बढ़िया प्रदर्शन करत 452 किलो ले ज्यादा के वजन उठाइन। जानबा के मुताबिक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 2 आने खिलाड़ी प्रियंक मिश्रा और अमान शुक्ला घलो भाग लेवत हैं। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हां आज अल्लिनो के संभावित प्रभाव के समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक लीन। जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तिजनबाई के नाव पर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर साल दे जाही राज्य सम्मान। गनियारी गांव ला कला ग्राम के रूप में बनाया जाही और महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राही माइलोगिन मन के EKYC के पंजीयन के तारीख ल 30 अगस्त तक बढ़ा दे गई है। सिरावत है। जय जोहार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र।

0: निम्बानन मन्दिरस्य ऐतिहासिकं भ्रमणम्। प्रतिपादितं यत् मन्दिरस्य संरक्षणे भारतस्य सहभागिता द्वयोः देशयोः सांस्कृतिकन्यासं प्रकटीकरोति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः जलाप्लावितेन प्रभावितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं दूरभाषेण सम्भाषणं विधाय केन्द्रसर्वकारपक्षतः सम्भाव्य सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनम् अयच्छत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागानुसारं देशस्य मध्य पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च सम्भावना वर्तते। अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उदघोषयत् यत् ईरान देशेन साकं युद्धविरामाय कृतं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदम् एति। वैश्विक भूराजनैतिक चिन्तन प्रभावात् भारतीय शेयर विपणौ भीषणः ह्रासः। सेन्सेक्स निफ्टी सूचकांकौ सार्धद्विशतात्मिका अपचितिः दृश्यते। अपि च फीफा विश्वकप पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां स्विट्जरलैंड दलेन कोलंबिया दलं पराभूय प्रागुपांत्य चरणे अर्जेंटीना दलेन सह क्रीडा सुनिश्चिता कृता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य इंडोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे संस्थिते यूनेस्को विश्व न्यास स्थले प्रम्बानन मंदिर परिसरे इंडोनेशिया राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना साकं भ्रमणम् अकरोत्। तत्र पारंपरिक गैमेलिन संगीत ध्वनिभिः शास्त्रीय नृत्यैश्च प्रधानमन्त्रिणः अभूतपूर्वं अभिनन्दनं विहितम्। नवमशताब्द्याः अस्य मंदिर परिसरस्य अवलोकनावसरे प्रधानमन्त्रिणा मुख्य शिव मंदिरे विशेष पूजार्चना कृता। सहैव भारत इंडोनेशिया देशयोः सहयोगेन मन्दिरस्य संरक्षण प्रयासाः दृष्टाः। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना प्रतिपादितं यत् प्रम्बानन मन्दिरं भारत इंडोनेशिया देशयोः शतशः वर्षाणां प्राचीन सभ्यतायाः प्रतीकभूतं वर्तते। मन्दिरस्य पुनरुद्धाराय च तेन भारताय कार्तज्ञ्यम् आविष्कृतम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यदियं यात्रा अतीव आध्यात्मिकी अविस्मरणीया च अजायत। द्वादशशताब्देः अस्य न्यासस्य संरक्षणाय श्रीमोदी इंडोनेशिया जनेभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: जकार्तायां द्विपक्षीय वार्तानंतरम प्रेषिते संयुक्ते घोषणापत्रे भारत इंडोनेशिया देशाभ्यां सर्वविध आतंकवादस्य तीव्रा निंदा विहिता। द्वयोर्देशाभ्यां अंतरराष्ट्रीय नियमानुसारेण आतंकवादस्य सम्मुखं दृढ़ वैश्विक प्रयासस्य आह्वानं विहितम्। उभाभ्यां प्रमुखाभ्यां वैश्विक स्तरे प्रतिबंधितानां आतंकवादिनां संघटनानां च विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय बलं प्रदत्तम्। उग्रवाद विरोधी सहयोगं च दृढीकर्तुं सहमतिः प्रकटिता। स्वस्य त्रिदेशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे प्रधानमंत्री अद्यैव त्रीणि दिनानि यावत् ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरं प्राप्स्यति। तत्र सः ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा एंथनी अल्बनीज इत्यनेन साकं तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। अनेन साकमेव सः भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् उभय देशस्य शीर्ष उद्योगपतीन तथा च मेलबर्न नगरे प्रवासी भारतीय सभां च संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः अद्य अतिवृष्ट्या जलौघ सदृश परिस्थित्या सहैव भूस्खलनेन प्रभावितानां संकटग्रस्तानां अनेकेषां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं दूरभाषेन सम्भाषणं विहितवान्। तेभ्यः केन्द्रसर्वकारस्य पक्षतः सम्भाव्य सर्वविधसाहाय्यस्य दृढाश्वासनं च असौ अयच्छत्। श्रीशाहेन महाराष्ट्र

0: राज्ये भीषण अतिवृष्ट्याः जलप्लावनस्य च स्थितेः समीक्षां कर्तुं महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन सह विशेष चर्चा अकारी। संवादावधौ गृहमन्त्रिणा मुख्यमन्त्रिणं प्रति संकटकाले महाराष्ट्र सर्वकारस्य सहयोगार्थं केन्द्रीय प्रशासनात् सर्वविध साहाय्य प्रदानस्य प्रतिश्रुतिः अभिव्यक्ता। अनेन सहैव गृहमन्त्रिणा गुजरात राज्ये अतिवृष्ट्या जल अवरोध स्थिति सन्दर्भे गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन साकमपि मन्त्रणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य देशस्य मध्यम एवं पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अनेन सहैव ऋतु विभागेन जम्मू कश्मीर लद्दाख हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेशेषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। विभागेन अनेन संसूचितं यत् आगामिषु द्वित्री दिनेषु प्रावृट् उत्तर अरब सागरस्य अवशिष्टेषु क्षेत्रेषु तथा च राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रान्तानां शिष्टेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धमानः सन् सम्पूर्णे देशे पूर्णतः व्याप्तो भविष्यति। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उदघोषयत् यत् ईरान देशेन सह सैन्य संघर्षं निर्वापयितुं हस्ताक्षरितं संधि ज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदं सम्प्राप्तो विद्यते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् अमेरिका सम्प्रति तेहरान प्रशासनेन सह संभाषणं कर्तुं नैव वांछति। राष्ट्रपतिः ट्रंपस्य इदं वक्तव्यं तुर्की देशस्य राजधान्याम् अंकारा नगरे आयोजिते नाटो शिखर सम्मेलनस्य वार्ताहर सम्मेलने आगतम्। एषः घटनाक्रमः होमूर जलपोते त्रिषु तैलग्राहक पोतेषु अस्त्र प्रहारेण संजातस्य विवादस्य पश्चात् अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये प्रवृत्तस्य प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणस्य परिणामो वर्तते। यद्यपि ईरानेन अस्य आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं प्रत्यक्षतया नैव अंगीकृतम्। अद्य भारतीय शेयर विपणौ महती विक्रय प्रतिस्पर्धा दृष्टा, यस्य प्रभावात् सेंसेक्स निफ्टी इत्येतौ उभावपि प्रमुख सूचकांकौ शत प्रतिशतं सार्ध द्वि प्रतिशतात्मिका अपचितिः अभवत्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन अद्य श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकं च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्यपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनाङ्के एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमित संख्यासु एव उपलब्धा वर्तते। फीफा विश्वकप फुटबॉल प्रतिस्पर्धायां फ्रांस मोरक्को नॉर्वे इंग्लैंड स्पेन बेल्जियम अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देशैः राउंड ऑफ 16 इत्याख्ये द्वंद्वे विजित्य अंतिमाष्टमेषु स्वस्थानं सुरक्षितम्। शुक्रवासरे तावत् प्रथमे प्रागुपान्त्यचक्रे रात्रौ सार्धैकवादने फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में विज्ञापनों के पश्चात प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो

0: क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ईकेवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई के नाम पर राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष सम्मान दिया जाएगा। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनके गृहग्राम गनियारी को कला ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ईकेवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। बस्तर जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में लगभग 90% हितग्राही महिलाओं ने ईकेवाईसी करवा लिया है। उन्होंने छूटे हुए हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ईकेवाईसी कराने की अपील की है।
1: महतारी बंधन योजना का जो ईकेवाईसी का प्रोग्राम चल रहा था 30 जून तक उसका लास्ट डेट था, तो उसमें कुछ लोग छूट गए थे, तो हमारा भी यहाँ 91% तो हो ही गया था, लेकिन अभी जो छूटे हुए लोग हैं उसके लिए 30 अगस्त तक का डेट बढ़ा दिया गया है ताकि उनका ईकेवाईसी 100% पूर्ण हो सके। ये सभी जिलों के लिए है, पूरे छत्तीसगढ़ का।
0: प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरीशंकर श्रीवास की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का दायित्व डॉ ममता साहू को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व राजेश कुमार राजपूत को सौंपा गया है। वहीं शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र नायक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग का अध्यक्ष सुधीर गौतम को बनाया गया है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। वहीं राज्य की 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और साध अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहलामानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त नियुक्त किया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को आज रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीत में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने डॉ तीजन बाई के नाम पर पंडवानी कला क्षेत्र में हर वर्ष राज्य सम्मान दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके गृहग्राम गनियारी को कलाग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही तीजनबाई के तंबूरे को रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में प्रदर्शन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। श्री शर्मा ने बताया कि 24 जून को छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची ग्राम सभाओं को प्रस्तुत की गई, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान पलायन और अन्य कारणों से कुछ पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सके। इस कारण पात्रता सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया जा सका है। इसके अलावा तकनीकी कारणों से कुछ पात्र परिवारों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृति से वंचित रह गए हैं। श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी पहल करने का आग्रह किया है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा एक भी उचित पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि एक कोई प्रक्रिया हमको बता दी जाए ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सके, उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक बुलाई गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सचिव स्तरीय इस बैठक में अधिकारियों को समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों जिनमें 4 नगर पालिक निगम 5 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल हैं, इनका कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही 2 नवगठित नगर पंचायतों में भी आम निर्वाचन की तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव आर संगीता ने नगरीय निकायों के परिसीमन और आरक्षण की प्रगति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने इंडोनेशिया में पीटी क्राकाटाऊ स्टील पर सेरो टीबीके के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। समझौते के तहत स्टेनलेस स्टील स्लैब के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना तलाशी जाएगी। यह समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते औद्योगिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 29 अंशकालीन जिला संगठकों की नियुक्ति की है। इन संगठकों को 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कलेक्टरों के समन्वय से जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन कर एनएसएस की गतिविधियों की नियमित निगरानी और प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। यह विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्यप्रदेश के हैं जबकि एक मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के निर्देश पर कारखाना प्रबंधन ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने पर सहमति प्रदान की है। अफ्रीका में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित हो रहे एशियन पैसिफिक और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने स्वर्ण पदक जीता है। जयदीप ने 66 किलोग्राम सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 452 किलो से अधिक का वजन उठाया। जयदीप के इस प्रदर्शन पर भारतीय टीम के कोच और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टर कृष्ण साहू ने खुशी जताई है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 2 अन्य खिलाड़ी प्रियंक मिश्रा और अमान शुक्ला भी हिस्सा ले रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। आज प्रदेश में दिनभर बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा की गतिविधि में कल कुछ वृद्धि होने की संभावना है। आगामी 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि कहीं भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर अगले 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव

दौरान अधिकृत प्रत्याशी का वोट निरस्त होने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रत्याशी और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में कुम्हारी थाने में पदस्थ आरक्षक सोलोमन राजू को निलंबित कर दिया है और रायपुर विकास प्राधिकरण ने पहले चरण में कमल विहार और राव भाटा सहित लगभग 121 आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई के नाम पर राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष सम्मान दिया जाएगा। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनके गृहग्राम गनियारी को कलाग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना सोनो राम राम
1: राम राम ना चेत मग राम राम अमरली
0: अमरली संग बोले पाई दिन ले भेट घाट होलू ना
1: हाँ भाई
0: देख वो तो भाई ना बोलते समय आए ने तो अले तो आमी ऐसी संग संगे दादी मन संग बोल जुआर भेट करू ना तो बस्तर के स्वर सुन तो सब पाए गांव करी दादी दीसी आंसर जान और संग जो रिया संगवारी मन के मैं चेत मन
1: और मैं सोनू
0: आमी दोनों करूँ से राम राम और पीला मन बोलतो ना रेडियो खटा खटा सियान मन संग बसू रसत ने तो रेडियो सुन तो नंदनी पीला मन के बोले आमी दोनों चो बाटले खूबे खूबे मया
1: देख पीला मन सुरता करतो पीला मन संग तर मतलब सियान मन बल काय संदर बसू रसत ने
0: पीला मन संग तो खेला महा सियान मन गुरुच रसत ने
1: वलन दादा बीता होय छे ने दादी बीती मन बोलतो सियाने चिया
0: सियाने चिया सियाने ने सत्य चिया देख पीला मन संग मात्र गोटक गोट तो लेख करसित कसना ना सांग असने ची देख जो नाम चो पीला मन लाड मया करू से नहीं तो उसने आम चो घरे तक सियान मन बोल रहा सत ने और सियान मन बोलो ने तो जान सीत ना और सोचे बाल के निपो का ला सत ने हुमन तो दख कितरो दिन ले हुमन काई काई के जान सोत ने हुमन लग कितरो असन असन अनुभव मन रह से उन सब बे गोट के हुमन
1: जान सत सत तुझे बोलो गोट एकदम सत्य भाई तुझे बोलो सन फोका उन मन बोलो चुंदिक नी पका ला सो बोलो तो कोचत बोलो सन जुरलो चाउरा
0: जुरलो
1: चाउरा नुआ चाउर तो गीला हुआ है ने जुरलो चाउरो नुआ है उसने आप लो जीवन चो हर दुख सुख ने कसम दिला खाद ला ने कमानी धमानी देश दुनिया के दखला सो नुआ है
0: सत्य बोलो
1: साले उन पिला जिला कनी असन
0: सांगु सांगु बोले दख के की मैं गोटो क लेग बल करेस ना तीज बेड़ा बुड़ी बाट जवरल नहीं सियान मन लगडन ठिया उठुन दख मने
1: हैं
0: हुमन पर नहीं गोटक गोटक कह का खुमन सांगते जाते
1: हो
0: ने हुमन जो समिया छो हैं बेड़ा ने असन धान पाकते रली हुन बेड़ा ने असन काई फसल के बनाते रली
1: हैं
0: असन बोलो ने हुमन गोटक गोट के मूर करला वल्ले नहीं तर हुमन सरतले असन सांग देना हुन आप लो समय आ चो ने
1: हां
0: हां और मन जो गोट के सुन सुन सुनते रहा हां
1: लगे हां अब चोसन कचत बोलवात ने मैं तो ज्यादा बात नहीं का जरा से बोलवात सुन नो आए उन मन जो सुन लो ने उन गोट के नहीं आगे बीती गोट के हां बोल लो सन खड़ी के रस रहे
0: रस रहे हां और उमा सत्य गोट के सांग सतरा
1: देख
0: आगे एबे तो लोग बाग द काम मोबाइल दिन ले ने मोबाइल दिन ले मोबाइल ने देखन देखन लोग बाग सीख सो
1: सीख सो
0: मातर हुमन ना हुमन आप लो अनुभव आगे चो सियान सजन पढ़े लिखे नहीं रहो
1: नहीं रहो
0: महातर हुमन लगे अनुभव जो नहीं नहीं असन असन अनुभव आसे और हुमन सांगले हुमन चो जोन गोट के आम के सीखतो रहे
1: आए
0: ने तो सियान मन तो आम के दख पीला जिला मन के तो आप लोग घर चो सांगु सियात मातर जन नहीं जान लो बीती काम के हुमन चो अनुभव के आम के सीखतो बोले हुमन के पूछतो बोले
1: बोलो नहीं कोनी कोनी पेन दवा तू सन बत नो आई
0: नहीं आई
1: काय जन आई काली चो एप चो डिजिटल आ
0: हां
1: बार दी जुग उस नाम ही बोलो ने जो नकच बोलो सन नेगेटिव गोड बोलो सन नकारात्मक बोलो
0: हां
1: उन नसे दे उन मन तो मतलब पूरा आगे चो जमाना न कहीं नहीं रहे भाई
0: नहीं रहे
1: उसन बेरा उन बाप दादी पुरखा उन मन के सांगला उनी भी ती काम के सांग
0: सांग सो तार उमन सत्य भी ती दखुन बाते हम तो मोबाइल थान ले आजकल टीवी थान दखलो भी ती काम सीखू से
1: सीखू से
0: मात्र उमन आप लो आई चो पूरे हो तो भी ती जन दखलो भी ती उमन के उमन सीख सोत ने तो दखना ये सोनू
1: हाँ भाई
0: दादी मन के गोट के तो अमी मूर कराऊं दिलू ने राम चल के मोटा ने और बल नगत नगत गोटा से अले मन बोले सुना
1: आले थे सुनो
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब
1: घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: हाँ तो
4: सोनू,
3: हाँ भाई,
4: दखे नगत नगत जहला मन के अमी दादी मन के अमरों दिल
3: ने
4: मात्र रसनी श्याम चो मोटरा ने और बल नगत नगत असन गोट मन के अमी धरुन भतरे उर उसे आए कि नहीं
3: आए का
4: तो दख ये बेचो लोग मन तो सब गोट मन के नहीं जान सत आवेज लोग मन जान सत बोले ने
3: जान सत बोले
4: तो उन्हीं हिसाब ने आज ये जो ना कविता पाठ भीतर नहीं घोटुल एक कविता के आम से लगे आनला सो श्रीमती नीता पांडे तो अले मन आप लोग कविता ने काय के सांसद लेके हम दादी मन लगे हमरा दियो
3: हालते हमरा
5: मुचो बस्तर चो दादा दीदी मन सियान सज्जन मन तुम सबके मैं नीता पांडे करे से जुहार और नानी चुन लेका लेके मन के खूब बेखूबे मया आज मैं हल्बी कविता धरो नीले से मुचो कविता आए गोटुल। बस्तर मुचो चोला आए, बस्तर मोचो चोला आए, बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए, बस्तर मोचो चोला आए, बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए, एदे सुना गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए, गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए, बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धर्म आए, मैं बस्तरिया चो धर्म आए, गोटुल ज्ञान चो गुड़ी आए, गोटुल ज्ञान चो गुड़ी आए, ए गुड़ी ने लेखा लेखी के ज्ञान मिरु आए, ए गुड़ी नानी बड़े के मानोन गुनो रतो गोट के सिखाऊ आए, पिकोर पेन देव लोक के बरसक करु आए, बस्तर मोचो चोला आए, बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए, एदे सुना गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए, बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धर्म आए, मैं बस्तरिया चो धर्म आए, जोन थाने बसुत देवधामी, जोन थाने बसुत देवधामी, सबु करू से नगद काम हामी, बसला सोद गोटुल ने लिगो देव सामी, लिंगो देव गीत चो देव आए खुबे नामी, एदे गीत चो देव आए खुबे नामी, बस्तर मोचो चोला आए, बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए, गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए, बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धर्म आए, 18 पाड़ बाजा गोटुक संगे बजातोर आसे सकत लिंगो देव की, गीत संगीत बाजा गाजा सिखा तोर सकत आशे गोटुल गुड़ी के, नव जमाना चो लोग खराब समसुत नाद गीत के, इहा खुबे सुरक्षा करवा गोटुल चो रीत के, गोटुल चो रीत के, बस्तर मोचो चोला आए, बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए, बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए, बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तर याचो धर्म आए, गो और टुल, गो और टुल ले मिसुन बनली गो टुल, गो बल्लो ने गियान और केंद्र आई टुल, लेकी मन मोटियारी और लेका मन चेलिक, लेका मन दीवान और लेकी ब्रासी बेलोसा, ये जगह आए गियान चो मालिक, समिया समिया ने, समिया समिया ने बैठक होए से, गांव चो गायता माजी पटेल संगे परसानी चो चर्चा होए से, इथा चर्चा होए से, काय चर्चा होए से, बस्तर मोचो चोला आए, बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए, गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए, बस्तर चो संस्कृति के बचातोर मैं बस्तरिया चो धर्म आए, लेकर आसी दीवान आप लो गोट संगाए से, इथा निपटारा होए से, इदे निपटारा होए से, इथा गोटुल आए गांव चो सूरज, गोटुल आए गांव चो सूरज, और चेलिक मोटियारी गांव कारी चो निभासुत रक्षा चो फरज, गोटुल चो गीत, गोटुल पाटा आए गांव चो धीरज, गोटुल चो गीत गोटुल पाट्टा आय गाँव चो धीरज असन सुंदर आय गोटुल चो कारज असन सुंदर आय गोटुल चो कारज बस्तर मोचो चोला आय।

रीत मोचो आत्मा आए। यदि सुना गुटुल बस्तर जो सुंदर संस्कृति आए, बस्तर जो संस्कृति के बचातोर, मैं बस्तरिया चो धर्म माए, मैं बस्तरिया चो धर्म माए। गोटुल आए बस्तर चो पागा, गोटुल आए बस्तर चो पागा, रख्या करुन देश दुनिया के सांगा। गोटुल आए बस्तर चो पागा, रख्या करुन देश दुनिया के सांगा। मांगा मांगा बस्तर भूई चो मया के मांगा, बस्तर संस्कृति सुरक्षा के मांगा। इदे बस्तर संस्कृति चो सुरक्षा के मांगा। बस्तर मोचो चोला आए, बस्तर चो रीत मोचो आत्मा आए। गोटुल बस्तर चो सुंदर संस्कृति आए, बस्तर चो संस्कृति के बचातोर, मैं बस्तरिया चो धर्म आए। सुना मोचो देशवासी, सुना मोचो देशवासी, मोचो बस्तर आए काशी। इदे मोचो बस्तर आए काशी, चेता चेता चेता चेता मोचो नवा जुगिया लेका लेकी चो राशी। खूबे पवित्र मोचो बस्तर आदिवासी, मोचो बस्तर आदिवासी, मोचो बस्तर आदिवासी। मोचो दूसर कविता आए मिलन मिसुन बंचो रक्षा करवा, मिलन मिसुन बंचो रक्षा करवा, मिलन मिसुन बंचो रक्षा करवा। गच कुटके नी काट तोराय बलून गाँव गाँव ने सांगवा। मिलन मिसुन बंचो रक्षा करवा, गच खुट के नी काट तोराय बलून गाँव गाँव ने सांगवा। रंग रंग चो झाड़ झड़ुका, रंग रंग चो झाड़ घरो झड़ुका रोपुन पर्यावरण चो सुरक्षा करवा। हाँ पर्यावरण चो सुरक्षा करवा, या दादा दीदी मन, या दादा दीदी बंचो रक्षा करवा, बंचो रक्षा करवा। पीला छीला सियान सज्जन, पीला छीला सियान सज्जन, सबू चलासोत मोटर गाड़ी। पीला छीला सियान सज्जन, सबू चलासोत मोटर गाड़ी। फैले से धुआ होए से प्रदूषण, नी लगाओत कोनी जंगल झाड़ी। पहले से धुआं होए से प्रदूषण, नी लगाओत कोनी जंगल झाड़ी। बरसा नाई होए से घाटा धान पान के भारी। भूई ने गरम बड़ली जानू छत विछत हो सोत नर नारी। मिलुन मिसुन बंचो रक्षा करवा, गच

0: है बलून गांव गांव ने सांगवा या गांव गांव ने सांगवा रंग रंग चो झाड़ छकड़ू का लगाऊन पर्यावरण चो सुरक्षा करवा या मचो दादा दीदी मन वन चो रक्षा करवा इदे वन चो रक्षा करवा।
1: तो दग भाई
2: हाँ ना सुनो
1: का सुंदर ये घोटल के गोट के सुन लो ने कविता पाठ ने
2: कविता पाठ के
1: मन आता श्रीमती नीता पांडे ने
2: हाँ, तो दके मन घोटल कविता पाठ के ने मन सांगला
1: हाँ।
2: और दके भी आजकल जोन पीला झीला मनात नहीं ये तो नहीं जान सकते सब चीज के
1: हाँ।
2: तो उसने कहनी असन कविता असन एथन सुनन भातर हम मन जान सत ने तो सुनू दक कविता पाठ तो हमें हम रहूं दिलू ना ने
1: गांव के दादा दीदी मन बल बोलतो सन ने
2: ये
1: सुनवारु चेत मन भूला लासत बोलतो सन
2: आई छी ना और दक आजकल तो बेड़ा बूता होली से और दादा दीदी मन बोले काय मजा चाह के ने प्यून प्यून रेडियो के सुन सो तो मैं बोलते रहे दादी मन दक पक्की जान सोत की कविता संगे कहानी संगे गीत के बल हमी अमरों से तो असनी ची आमचलक मोटान गोटो गीता से ना लेके अमरों दे होते
1: आलते मामरों पाँच गीत गुराज ना हो सांगवा
2: हाँ हाँ

0: तो चितमन भाई गीत किसन लु नै
1: सुन लु और संगे देखम जा तो समय होइस मा गीत कुरिया के हम साउ दियु त नै ए गीत के गावला सत मधुरा मोर मन संगवारी मन तो एची संग संगे आमी विदा मांगू तो जातो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम फ्रॉम तो सप्पाए गांव कर दादी दी मन के मैं चेतमन
0: अर मैं सोनू
1: आमी दोनों करूं से
0: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: हो।
1: ने
0: आए काय
1: बोलो ने मनोरंजन साधन बोलो ने जहन की आगे समय ने खेल मन बारा डांडी आए ईबा आए कबड्डी आए ने
0: हो
1: उन बोले मतलब खिंडी मनोरंजन बोलो मां खिंडी मन आगे खेलते रहो
0: बोल भात साग मतलब भात भात दिखाउन बटन गिर रहो ना
1: हो सत्य बोल सीधा मिज बोल पिला जिला बेरा ने झार बेंद्रा खेल लो मां किन गर्मी छुट्टी होलो ने बारा डांडी खेल लो मां कोनी गच छाए लगे बाटी खेल लो मां बोलो ने बोले मनोरंजन चो गोटक साधन मन
0: साधन है
1: ने अब तक केबे समय ने तो पिला मन बल मैं देखुआ बोले अच्छा चीज तो नुआ मात्र नन पिला मन बल मोबाइल मन के धरुन भाते हुन थाने खेलते रहस
0: हो बोलो ने बे गांव ने नहीं ना शहर ने नहीं बोलो ने मोबाइल बल गोडक मनोरंजन छ साधन बोलाय और ज्ञान छ साधन संग संग ने और बोलाय समझो
1: मात्र एबे छ समय ने गांव आगे बोलो ने खेल ऐसा पाए रहे मात्र एबे छ जुन जुगाय ने भारतीय जुग ने एबे गांव मन ने बोले खिंडे का मनोरंजन छ साधन मन एबे होते गेल
0: होते गेल हो ने जोन मतलब जोन मनोरंजन छ साधन ने बोलो ने आसे शहर सागर ने उन गांव ने बोला से
1: गांव ने बोला
0: आगे चल रस ने फरक
1: नहीं आए नहीं आए उतरो फरक नहीं आए बे बे काय की बे लोग मन दखुन दखुन बोले सिख सोत ने एबे सफाई घर तक गांव पारन बोले बे दख टीवी मन होली
0: ने रेडियो
1: रेडियो मन होली है एबे मोटर गाड़ी टीवी रेडियो सफाई मोबाइल मन
0: एबे कंप्यूटर होली लैपटॉप होली
1: हो
0: पायलक बोलो ने सीमित मात्रा ने
1: मीरे से और द गांव ने कुछ ही घर आसपारन बोले सबे लोग हुंथन दख सोच
0: दख सोच
1: आए ने तो बोल तो गोटे आए कि ना एबे आगे समय महानु आएबे तो मनोरंजन साधन गांव पारन बोले बे होते ही ली
0: हां
1: तो दखना ई गोट कम दादी मन के सुनाऊं दिलु अमरों दिलु ने आम से लगे असन और बोले मोटर ने असन जिनिस मन अनुरु दादी मन का जे
0: हां
1: कि कभी कविता असन नाटक असन कहानी महा तो असनी ची दकाजी गोटो के हलबी नाटक असन ने એ હલબી નાટક નામ હોય માટી માય
0: માટી માય હા
1: તો એકે આમ છો લગે જો લિખું બાદ પઠાલા સોત ના એક સાંગું દસ
0: હેમનાત્રી આદિત્ય કુમાર આચાર્ય હા રામ લોગ અમરાલા સોત હેમનાથ વેલવીર સિંહ કચ્છ હા
1: માત્ર દખના એ જો નાટક ને નહીં ભાગ ધરલો જો કલાકાર ભાઈ મનાથ નહીં એમન દાદીન બોલ ચૂતા સુનુન ભાતે રામી એ મંચ નાવ કે પાછે સાંગવા
0: હા હા

0: जुआर साहब, जुआर।
1: जुआर धनसा है जुआर, अलावे लग बस।
0: अच्छा वाली साहब भेटघाट होली, मैं तुमको भेटघाट हो तो काजे बड़े बिहान निकलू ना इले से।
1: अच्छा कर लिस संजका रिलीस, मैं दौरा जातो बीता रले संजका रिलीस गुन भेट लिस। अरे काय गोटा झट के सांग।
0: मके गोटक विपत्ति पड़ली साहब।
1: आई
0: देखा मोचो बेड़ा ने।
1: हाँ।
0: मैं रोजे बरक उन सरकारी खतमन के लगाए से।
1: हाँ।
0: अरे तेबने बोले नहीं अरे उपजन नगद नी हो से।
1: हाँ।
0: काई माटी में रीस होली असन लागे साहब, मैं कसन करें दे मके तो हेके ना विचार बोल ली साहब।
1: हाँ, ये गोट का जी लिस धन साई सियान ने।
0: हाँ।
1: देख चुच्छा सरकारी खत बोलून लगा ले काम नहीं चले। भीने भीने किसम चो माटी ने माटी दखून खत लगातर होए से। कौन माटी ने फास्फेट कम आसे जाले फास्फेट बीती खत, सल्फर कम आसे जाले सल्फर बीती खत, अरु हिसाब दखून कौन माटी ने काय जीनिस कम आसे उसन बीती खत के लगाऊ पड़े से।
0: हाँ।
1: यूरिया चाय बोलून भाती चुचा यूरिया के बेड़ा न्यून बिखर लो ने नी पड़े
0: जाले। मैं ये भी कसन करें दे साहब, ये के तो सांगा मके।
1: दख भाई धन साय, सबले पहिल तो तुई तुचो माटी चो जांच कराओ।
0: माटी चो जांच
1: हो, और माटी चो जांच होलो ने तुई जान से कि तुचो माटी ने कितरो पीएच मान चो आसे, फिर हुन हिसाब ने तुई नंगत फसल धरुक सकसे। और गोटो गोठाय ता धन साय सियान।
0: काय गोठाय साहब?
1: हुन गोठ ए आए कि सरकारी खत देतो के धीरे धीरे बेड़ा नस्ते जाए से।
0: बेड़ा नस्ते जाए से?
1: हाओ।
0: ये सरकारी खत ने?
1: एई काजे जैविक खत चो उवाट निकरली से। जैविक उवाट ने जैविक खत की तुई तुचो घरे नहाले बेड़ा ने खुदे बना उक सकीस।
0: हाँ।
1: और हुनके बेड़ा ने लगाओ नस्लो बेड़ा के बले सुधरा उक सकीस, समझ लीस?
0: समझ तो के तो समझ ले साहब, मात्र ये चो उवाट के मैं कसन जाने दे साहब।
1: देख भाई ये चो उवाट के आमी सांगवा।
0: हाँ।
1: नाडे फिसाप चो खत हो कि केचवा कीड़ी बीती खत हो।
0: हाँ।
1: हुनके बनाऊन फसल चो नंगत दखा रखा और नंगत माटी हिसाब ने कमानी करूं तो नंगत फसल कमा सकी।
0: ये तो खूबे हरिक चो गोट है साहब, है तुमके शरण लागो साहब, तुम अच्छा गोट के सांग लास। तुम्ही तो ये फादा ने पड़ो लोग के ऊपरे उठा तो काम कर लास साहब। आले साहब जुहार साहब, तुम जय हो साहब, जुहार जुहार।
1: देख कोनी दिन काम पड़ ले फिर असने आओ।
0: हाँ, यहीं दे साहब। आले जुहार साहब।
1: आले जुहार जुहार।

0: सोनाय, ओ सोनाय, दखानुए बाले के किदली दाए तो घरे रती, कहाँ गेलीस रे?
1: काय होली हो? काय काजे इतलो चीची आसास?
0: काय गोट के सांग से तुई सोनाय, मैं जाऊ रहे बोंड का सौकार लगी।
1: हाँ।
0: ये पानिक सो असन लागा अधर तो काजे जाऊ रहे मैं। अले सौकार दखनु फेरे सहरे गेलो से मने।
1: नहीं तुम जो काज घरे बोसु रहे दी। हाँ,
0: तो ये गोटक फेर, हाँ।
1: काय करा से हो? हैं? अले इत्रो बेड़ा खड़ा रू रू बले। काय होली जाले? माता खाती जे कौन आए जाले हम जो बेड़ा खड़ा के नसालो आए हुन के तो
0: सत्य आए सोना है तू सत्य बोल सी अली दखनु रोजे बरक छो असन येसु बोले बेड़ा ने ठोक का सरकारी खत के लगा ले मैं आए और तक समय ने मिंजानी समय ने घसानी सब पायवार तो कर ले मंत्र काचो नजर लागली जाले आमचो बेड़ा ने दखानु फसल बिल्कुल नाजुन होए हो
1: मंत्र ये हो
0: कसन
1: हम चो बेड़ा रेटे चो हुन धन साय चो बेड़ा ने कसन असन नी होए
0: हो है? हो
1: हुन चो फसल तो इतरो सुंदर लल हुन जाय से
0: हाँ। है
1: ये हो
0: होए
1: काय हुनी तो काय नी करलो से हम चो बेड़ा के
0: सत्य आए तू जाले सत्य बोलसीस आमचो बेड़ा ने विपत हुंचो बेड़ा ने सकत हाय ये असनी तो होक नी सके सोनाय
1: हाँ।
0: काई नाले काई गोट तो जरूर आए हो बिल्कुल सत्य आए हुनिची आए पांगू बिल्कुल हुनिची आए पांगू हुनिची आए देवधामी बनाऊ बीता नाले हुंचो बेड़ा ने कसन का आए सुंदर फसला से और मोचो बेड़ा ने काई नहीं
1: होय हो हुनी चाय बे
0: ओ नी काय
1: आम के असन अनगतान करू नाले बेड़ा खड़ा रो रो वाले आम के दूसर थाने भूती कर तो काजे काय जाउक लागती हो
0: सत्य बोल सिस्ती सोना ये सोना
1: है
0: सुन लीस
1: ओगा
0: मोके जाले तो अदाय खूबे रिस लागे से हाँ असन लागे से जोड़ान लगे टकू रून भाती नहीं धन साय के मरते मारून देव वहां लागे से हाँ यदा ये बे डरून चलतो दिन गेली बेदाय हाय जान दे तानू जान दे हुंचो भूत के नीखे दान जाले काय के सांग से जान तम जाय से हो
1: ये हो, ये हो ये ए,
0: कसन
1: ये दे दे सुनो सुनो सुनो
0: कसन
1: अले कहां जा साथे बानो
0: हो गाय रानू तू मोके जाउक देस मुजी मुजी नी हो म जाय से
1: हो ये हो ये दे दे थे बानू थे बा थे बा थे बा थे बा ये
2: राम राम सरपंच दादा राम राम
3: ए, राम राम धनसार राम राम धनसार आला बस आज कसन बियाने बियाने तरोली ना
2: काय के सांगे दे सरपंच दादा गोटक अर्णापचे असन गोठाय जानू अली रोजे चो खटखट के सौख नी होय सरपंच दादा
3: काय खटखट होन गेली का
2: काय के सांगे सरपंच दादा सोनू हुन खाले पाराचो हुन मके खूबे खटखट करे सरपंच दादा
3: सोनू काय खटखट करे सोनू
2: काय के सांगे दादा उन बेड़ा ले घरे बोर ते बेरा नहीं
3: हाँ।
2: उन जोड़ान लगे मके टाकून रही से आरू रोजे मके तीन दिन होली बे एक हार ऊपरी है इसे खीजे से मार तो पेट तो काज ऊपरी है इसे बारा बाखना बोले से अले असन करन कसन होए दे सरपंच दादा
3: खीजे से मार तो पेट तो काज ऊपरी है इसे
2: हो दादा
3: काय काजे
2: हुन बोले से कि हुंचो बेड़ा ने येसु जो नाय फसल खींडी घाटा होली मने
3: हाँ।
2: और येसु चे नहीं गेलो दुई बरख ले उन घाटा चे होय से अरु ये चो काजे हुन मके हुन लौटा दे से मैं हुन चो बेड़ा के पांग ले मने देव बना ले असन बोले से यार एकदम ऊपरी ऐसे सरपंच दादा
3: असन कसन होक सके ना धन साय
2: हो
3: हुन असन कसन तू के बोले से
2: मोचो बेड़ा ने फसल एबे बोले दादा चमक राया से और मैं बेड़ा के येसु नहीं उन्नत किसाब हिसाब ने कमाए से और रोजे बरख मैं उन्नत वाट ने कमानी करे से और मोचो फसल अच्छा रहे से और हुन चो फसल खिंडी अच्छा नी रहे उन मके दका तीन दिन होली उन टाकून टाकून बाटे रहे से और जोड़न बाटे अमरते नहीं एकदम मार तो पीट तो काज होई से बारा बाखना बोले से मके देव बनालीस बोले से पांगलीस बोले से अल असन कसन उन बोले दे सरपंच दादा मके
3: उन कसन बोलुक सके धन साय तू असन कर
2: हाँ।
3: सोनू क्या मैं समझावा मान तो रह चुका जे नहीं बैठक हाक दुख लागे दे
2: हाँ
3: तू जा घरे मैं कतवाल के हाक देऊ नहीं गाँव ने हाका पड़ोक बोले दे
2: हाँ सरपंच दादा।

0: नहीं बल्कर हम खूबे खटखट करे सरपंच दादा मके तो एक दा जीव जंजाल लाग ली मके डर लागे से
1: हाँ हाँ हाँ उनके हम समझा
0: हाँ दादा
1: ठीक है
0: हाँ हाँ
1: हाँ
0: हाँ मजा आए से
1: आले आले
2: सुना सुना सुना आई तो आर दिने ग्राम पंचायत भवन ने गोटो खूबे काम चो बस काय मने हो ए बसका ने सब पाए किसान लोग के अमर तो राय हो सुना सुना सुना आइतवार दिने ग्राम पंचायत भवन ने बसकाय हो आजी गोटो गोट काजे यथा सपाय के हाक दिलो आसे हुन गोटाय धनसाय ऊपरे सोनू दोष लगाए से हुंचो बेड़ा के नसालो से बोलून हाँ यही गोट चो आजी ये था फासला होए दे
1: सफाई लोग के राम राम हो जुआर तो सियान सजन मन देखा सपाय लोग के मैं गोटक नगद काम काजे हाक दिले से असन तो मोर गोट सोनू आरु धनसाय चो मंजी आए मांतर मैं ये था ये मंच लागू नहीं हाक दे ये मंचो झगड़ा दंड के तो मैं एकलाई बोले निपटा सकते मांतर सपाय के हाक दे तो काजे असन वाट होली से कि सोनू चु बेड़ा ने कमानी नहीं हुई आरु धनसाय चु बेड़ा ने कमानी हुई से ये चो फरक कसन आए आरु ये चो काजे धनसाय काय कर लो से यही कहने के आमी सपाय लोग जानवा हाँ तो होनी हिसाब ने ता हाक दिलो रहा से आ सपाय लोग खिनिक ध्यान दे उन सुना अल्ला आओ ना धनसाय
0: हो दादा
1: तू ये लोग पूरी आओ आरु ये तू चो खेती कमानी चो जो फसल गोटा है ने अले के सब चो लोग सांगों देस
0: आले आले आले दादा सांगे दे सपाई गांव कारी लोग के सियान सजन मन के मैं जुहार करें से
3: जुहार
0: सर लगा मोचो बेड़ा ने सरकारी खत मैं देते रहे मोचो फसल बोले कमानी हिसाब ने खिंडी कम चे होते के लिए तेबे मैं 5 बरक पहिल गोटक शिविर ने जाऊन भाती ये गोट के सुन ले कि आप लो बेड़ा के नगद उपजास काजे कोनी बोले तुम्ही खोजाकारी भाई मन लगे भेट हुआ बोलून तेबे मैं खोजाकारी भाई लगे गेले आरु आपलो बेड़ा चो सप्पाय गोट मन के हुन मन के सरसरा मैं हुता सांगले तेबे मोचो गोट के सुनून हुताले मके माटी के जांच करा तो काजे बल्ला आरु फिर मैं पाचे माटी चो जांच करा ले और हुन दिन ले मैं मोचो कमानी उवाट के उन्नत कमानी उवाट बना ले घरे चे मैं नादेप खत चो टंकी बना ले फिर हुन खत के मैं बेड़ा ने दी ले बेड़ा ने उन्नत किस्म चो बीज के लगा ले और जीव जतन करुन भाती मैं नुआ उवाट ले कमानी कर तो के मोचो बेड़ा ने दखा ये का सुंदर फसल दखा दे से और ये सोनू काय करे से एबे बोले हुनी जूना हिसाब ने बेड़ा के कमाए से रोजे बरक असन यूरिया खत और काय काय खत मन के दे से ये माटी बोले कितरो दिन थामे दे यही लागून एचो फसल नसे से और ये सोनू आ देखा मके ये भी फंदी बनाऊन भाती मार तो पीट तो काजे मके ऊपर यही से और तुम्हें सांगा काय मैं एचो बेड़ा के पांगुक सके है
4: सुन ला सो का गेला से बाटिया ये दाय मैं पूरे यून बोलेंदे देखा धनसाय दादा इतरो सुंदर गोट के सप्पाय चो पूरे सांगला आम चोले बोले गलती होली से नी जानू नी समझून आम के धनसाय दादा चो ऊपरे अंडकी नी दका तो रहे ए चो काजे मैं बोले हमी दुन्नो चो बाटले मा पंचायत के माफी मांगे से और तुम्ही कसन खाले मुड़ी करूं बसला सासो ए दे बाटिया यान ये बाटिया
5: हो ऐसे ऐसे सते गोट है सोना तीचो गोट बोल बिल्कुल फिट गोट है आरु संगे संगे आमचो गांव करी दादा दीदी मन सियान सजन मन आले

0: मैं असन विचार के भी को रुक नहीं सकते है। इतरो अच्छा उवाट के, इतरो सुंदर नियाओ के, और असन कहानी के सुनो भाती तो मोके अचरिज लागे से। हाँ देखा आमी जाले आमचो माटी के अपने नसाऊ से, ये माटी में आए आम के उपजाए से, आमचो बाढ़ती करे से, आम के पोसे से, आरु आम के जाले भूई बाड़ी के कसन जतन करतो राय, एक मैं आज ही जान ले, आज ही समझ ले। सबले पहल तो मैं बोले से मैं दखले कि मोचो बेड़ा असने अनगता नासे, और धन साचो बेड़ा खूबे नगत जतन न्यासे। यही लागू मोचो गलती होली महाप्रभु, आले तेबे मैं धन साय के आरु संगे संगे ये गाँव कारी भाई मन के और सरपंच दादा के जुहार करें से, और तुम्हें जमाए मोके माफी दियास महाप्रभु, अल माफी देऊं दियास मोके गलती होली मोचोले।
1: हाँ तो सोनू
0: ओए
1: एदाय काय विचार आसे?
0: काय विचार आए ता सरपंच दादा, सबले पहिल तो मैं

0: और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनावा, माटी जांच कराऊन हुंचो कार्ड बना ले, तुम्ही जाना से कि तुमचो माटी ने काय कमी आसे, काय नंगत आसे, कि काय घटी आसे, एक ही जानून भाती, तुम्ही हुन हिसाब ने खत भात देऊन भाती, तुम्ही नंगत फसल पाउक सका से, समझला? हाँ, तो ये चो काजे आमचो असन खेती साहब कहाँ बोले जो नास हो तुम चो लगे हो ता पूछुक सकास, आम के बोले पूछुक सकास, आपिस ने बोले उक सकास, और तुम्हें नगद फसल धरुक सकास, समझला? आले इतरे गोठाए मैं बस हैं से आई
1: तो गांव कारी भाई बहन मन तुमके मैं आगे बोल ले के नहीं कि सोनू आरु धन सा है चो गोट नु है सपाय गांव कारी चो आरु सपाय किसान भाई मन चो गोट है कि नहीं है धन सा है तो खुश खुश आप लोग माटी के जांच करा लो और काय रसिया फसल के धर लो है कि नहीं। हाँ मंतर असनी फसल धरतो काजे अपन मन सपाई के माटी के जांच कराओ पड़े दे आरु हरी कुदिम ने कमानी धमानी करुक लाए लाग तेवे अच्छा उपजन होए दे आए कि नहीं। हाँ कसन सोनू एदा धन साहेब मारत काज बाटी टाकू रसे
2: हां ये बाटे टाक तू बीती गोट नु आए मंत्र सरपंच दादा ये जमाए गोट खूब अच्छा लागली हो आले गोटो गीत हो नी कहीं बोले
1: हसन
2: हां चुन्ना चुन करे बोले जावा ने
1: हसन बोल
2: हो गाली घरे जाऊ ना चुन्ना चुन हो
1: आले जाओ आले जाओ।

0: प्रतिशत होली से कर ने कमी होले एबर घर अरु कारखाना असन बड़े प्रोजेक्ट बनातो ने सहायता हो दे असने संगमरमर अरु ट्रेवर्टिन ब्लॉक मन ने कर चो दर 12% ले कम होउन 5% होली से ग्रेनाइट ब्लॉक ऊपरे बले एबर 12% चो पलटा 5% GST लागे दे एचे संगे रेती चूना चो ईंटा अरु पखना जोड़तो काम ऊपरे बले कर चो दर 12% चो जगह 5% होली से।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सोनू
4: हाँ
3: देखना ये नगत नगत गोट मन दादी मन के सुनाऊं दिल उन्हें मातर ना दादी मन बोले जान सोत की बुता भाई ना समय आए
4: फिलिक जमाए ना घर फार कर सकते कौन तो मोटा सोत कौन तो अकराए कौन तो कर लिया है ने
3: सत्य बोली सावर बेड़ा अंदर फिर नांगर थाने फिर हिंड ले तो हाथ पाए बोले ना ने
4: दुखा
3: धरेस ची यार दुखा बेरा फिर खिंडिक गीत माँ हूँ दिलन फिर नहीं सांग
4: डंडिक मटक लोसन
3: और खिंडिक चंग चंगा बोले लागे से ने तो असनी ची आम चला के दादी मन का जी गोटो का नगद गीता से मैं बोलता रहे दादी मन के गीत के सुनाऊं दी और दादी मन गीत कुरी एक पक्का चीता हो तो नहीं और आमी बोले हूँ मन ना हो के पाचे सांगो
4: सांगो हाँ आलते भी गीत के सुनो नहीं
3: सुनो

0: తో చెత్మన్
1: హో అయినా సోను
0: దక్కనా ఇక్కా ఇరసియా గీత్ కి అంబల్ సోన్
1: సోన్ లై దక్ ఆయా చో జో నమాయ చో సుమర్ నా గీత రే నే
0: హో వందలా ఐ నే
1: హో తో ఔర్ గీత్ కే జోన్ గౌరవ తేమనాత్ మేఘనాథ్ పట్నాయక్ ఔర్ మంచో సంగవారి మన तो दखी तो सुंदर गीत के मन गाउन मतिर ने और सुनाला और हम दादी मन लगे कम रहन दिल तो दख समय आ रहलन तो हम गीत गोविंद दादी मन के सुनाउ छी दिन
0: सुनाउ देउ से जे
1: मतलब ना आमी गोटो बलतो गोटे आए कि दादी मन के ने तो केबे भर बूता भयना समय तो आए
0: आए का
1: पानी आए वर्षा आए घाम आए बोलो मा लेकिन कुन कुन वाट पानी मारे से कुन लग घाम बल छे के
0: घाम बल छे के सब
1: ने तो आम के सुरता करत गोटे आए ना त कसन समय नहीं खिंडिक दादी मन के आप लो देह पाए खिंडिक निको संगा तो रहे
0: हां बोलो ने दक जमात खेती यार भाई बहिना ने असन बेरा देह पाए नगत रन तबे तो नगर फाराय नहीं नाले जोन बल आए फेर आए ने
1: तो दक आमी बेड़ा वाड़ जाऊ पानी बल भिजुक लाए होय से और उसन ने काय की जूड़ खोकली जड़ मा झटकी खिंडिक भिड़न थे ना
0: सन समय हां मते काय हुए गो ने उन आगे जे बेरा नो हां ए बोलो ने सब खत भात के खाऊ से
1: लहरा पानी खत भात सब पाइप दक समय बदल ली से ने डंड की कई बल जूड़ खोकली मा झोटे से ने
0: हां होता है ना से
1: हां और जूड़ खोकली जर धरली बोले ना तो होली रोप तो बीती बोल बूता अटकुआ
0: हां आपन नी रोप लोन बूता नी कर लन बोले हां
1: बूती
0: गलती आरु पड़े से
1: लागे से लागे
0: घरे जर धरली जब कहां बूती बढ़ जाए
1: ने सूर ले तो जाऊक नहीं होय
0: नहीं होय
1: तो ई का जे हमी दादी मन के बोलू से कि खिंडिक आप लोग पानी मार ली बोले खिंडिक नहीं कोनी आयल लगे भिड़ तो रहा नोले पर छाता छाती छतड़ी के ने और तो रहे काय बस भीजन दे बोलते नहीं बोलतो रहे
0: नहीं बोलतो रहे
1: और खिंडिक खातो पियो तो बजन जिनी साइन है ना असन समय खिंडी का बासी असन जिनिस मन के नहीं खातो रहे
0: हां
1: ने
0: आए काय
1: हां तो राती पर आस नहीं नांगर नहीं दे भाई बासी खम खातिर बोल ले खिंडी का आजकल खिंडी बासी बोले खिंडी नसे से ना
0: नसे अदक ना बोल ने बासी कुछ तो खाउस को के पचेस को के
1: नहीं पचे नहीं पचे
0: और नहीं पचे पर दे पाए नसा
1: नसा बड़ा
0: होए से उन पर कहां बुता बोए ना करवा ना भर कमानी बेरा
1: सत्य बोल से हां तो मैं बोलते रले दखी के हम दादी मन के गोट के सांगु दिलु मात्र मोटा गटा काम सकलु जातो समय बोल होली ना मैं मोटा गटा सकले से आले तू फिर बेदा बिदा मान
0: हां जातो पूरे आम जो गांव कार्यक्रम के सुन तो सफा गांव करे दादा दीदी आया बुआ भाई भाई सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं सोनू।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुड़े फूल। इसमें सुनिए आज बसंती और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

बोलते बोला लगी मन जलते जला रे।

बोलते बोल लगी मन जलते जलारे।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुड़े फूल। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बसंती और साथियों के गाए हल्पी लोकगीत।

कुड़ाई फुल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बसंती और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पिलामन का जिगोट हल्बी बोली में, प्रस्तुति है सुब्लू राम कश्यप की।

0: तुमचो पाठ्य दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पिला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पिला मन
1: पिला मन का जी गोट आसे ही सपाय सुना पिला मन की खुबे खुबे मया और चुमा पिला मन भारत देश अंग्रेज मंचु हाथी गुलाम रली ये गोट के जानो भारत देश ने सबले आगे पूर्त गाली समुन बाटले बाट खोजला ये बाट चू पता सुनून

ले अंग्रेज मन जहाज ने सन 1608 ने भारत देश ने अमरला। भारत देश ने व्यापार कर तुकाजे ईस्ट इंडिया नाव चू कंपनी बनाला। ये कंपनी ने बड़े बड़े अंग्रेज साहेब मन रला। भारत देश ने सपाई बाटी पूरला और शहर मन ने चौकी बनाते गेला। दिल्ली, मुंबई, मेरठ, कलकत्ता असन चौकी मन ने कंपनी चो गोटो गोटो अंग्रेज साहब मन रला। अंग्रेज साहेब मन कंपनी खाजे सिपाही भर्ती करला। भारत देश चो जुआन लेका मन के सिपाही पद ने देवन बाती कंपनी सिपाही मन के आपलो हिसाब ने काम कराते रहे। भारत ने कंपनी काचा बीती फसल चो व्यापार करते रहे। ये खाचा बीती फसल आए आसाम ले चाय पत्ती, बंगाल ले जूट, महाराष्ट्र ले डांडा कपास, मद्रास ले धान तिल मूंगफली। ये फसल के ब्रिटेन पटाते रहोत। कंपनी के दूसर फसल ले कम फायदा होते रहे और ये बीती ले खूबे फायदा होते रहे। भारत देश जो किसान मन के असन फसल कमानी कर तो काजे जबरन कंपनी करते रहे। अंग्रेज मन भारत चो जीवना के बले टूटाला और नानी नानी कारखाना के बले नसाऊ दिला। भारत चो कच्चा बीती जिनिस के अंग्रेज मन इंग्लैंड नेउन बाती भिक्तो बीती बनाऊन और भारत ने आनून आगर मोल ने भिकते रहोत। और बाहरी चो देश चो पैसा ले भारत चो लोग के खूबे तकलीफ होते रहे। अंग्रेज मन असन करुन कुबे भारत देश चो लोग मन के दंड कसट करते रहोत। अंग्रेज मन भारत ने जमींदारी रैतावारी और मालवारी असन उवाट मन बनाला। किसान की आपलो जमीन चो हक के नंगाला। जमीन चो हिसाब ने पट्टी दरते गेला। जमींदार मन किसान की आगर धान पैसा मांगला। भारत देश चो लोग मन की खूबे दुख दंड देते रहोत और मार पेटा बले करते रहोत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश चो नंगत बुद्धि बीता मनुक ये चो नावाय मंगल पांडे सिपाही चो काम करते रहे। असन दखते दखते मन ने विचार कर लो ये खूबे अत्याचार कर सोत और आप लो संगवारी मन के समझा।

जो लोग रीस और अंग्रेज सरकार जो छावनी के आईग ने ढसाला और खूबे दिन झगड़ा ओली। भारत देश जो आज़ादी खाजे आप लोग जीव के बले सोपला, ए संगवारी मंचो नावाय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा नौरीज, गणेश शंकर मिश्रा, लाल बहादुर शास्त्री, अशफाक उल्ला खान, भारत देश जो आज़ादी खाजे सपाए पूरे एवं देश काजे सेवा करला। अई मंचो असन भारत देश काजे सेवा करला सोत एचो नावाय लाला लाजपत राय। ये मंचो सेवा गोट के जानवा। यमन असनी देश जो रहत के बचातो काजे कुबे सेवा करला। ये दादा चो नाव है लाला राजपत राय। लाला राजपत राय जो जन्म हुली पंजाब चो मेगा जिला ने सन 28 जनवरी 1865 ने बामन घरे। कुबे भरक चो पाचे हरियाणा चो रोहतक और इसार शहर ने वकालत करलो। भारत देश चो राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल चो मुख्य नेता रलो। संगे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र संगे ए तीन मूर्ति के लाल बाल पाल चो नाव ने भारत देश चो लोग जानला। लाला लाजपत राय चो बाप चो नावाय राधा कृष्ण अग्रवाल और माय चो नावाय गुलाब देवी अग्रवाल। लाला लाजपत राय चो नारा आय इनकलाब जिंदाबाद, बल्ले ने क्रांति अमर रही। भारत देश अंग्रेज मन चो हाथे नी रहो और देश सपाए लोग अंग्रेज मन के मार तो काजे तैयार रहोत और भारत देश चो मान सम्मान के बचाओत। लाला राजपत राय जैन 28 जनवरी 1865 17 नवंबर 1928 ने भारत चो गोटक जहल पल सेवा करी रलो। असन सेवा करतो की पंजाब केसरी बल्ला। लाला राजपत राय चो पढ़ाई लिखाई आप लोग कॉलेज ने होली। लाला अंशराज और गुरुदत्त असन और सेवा करी देशभक्त मन संगे भेंट ओला। लाला राजपत राय नंगत समाज सेवा करलो और समाज चो बाढ़ती बले करलो। बरक आय 1896 धरून 1899 1900 ले धरून 1907 1908 ने भूख पड़ली और कंगाड़ ने भूख मिली। उन समय के देश जो लोग मन के खूबे सहारा होलो। असन सेवा करतो की समाज सेवक बले बल्ला। लाला राजपत राय ने भारत देश जो आज़ादी खाजी खूबे मेहनत करलो। देश जो आज़ादी काजी पाटे नी होलो और समाज जो न्याय काजे वकालत करलो। लाला राजपत राय मैगजीन के राजनीतिक गुरु मान लो। लाला राजपत राय लाहौर शहर ने 30 अक्टूबर 1928 के झगड़ा होली। लाला राजपत राय अंग्रेज मन की खूबे रीस होलो। उनचो संगवारी मन के खूबे मारला। लाला राजपत राय की छाती ने ठेंगा पावली। ठेंगा पातो के लाला लाजपत राय मुरछाउन पड़लो। लाला राजपत राय मारतो बेरा अस्पताल ने 18 दिन तक लाला राजपत राय चु जीव फुटुक फुटुक करते रहे। लाला राजपत राय चु 17 नवंबर 1928 के जीव गेली और बल्लो अंग्रेज मन चु ठेंगा गोटो गोटो ठेंगा चु मार उन मन काजे गोटो गोटो खिला चु काम करे दे। लाला राजपत राय के मारतो के सपाए देश लोग रीस होला। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उन मंचो संगवारी मन लाला राजपत राय चु बदला धरतो काजे विचार करला और 17 दिसंबर 1928 ने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर सांडर्स की गोली मारला। पिलामन देशो सेवाकारी मंचो गोट बात के सुनला। सदाएं गोटो गीता से आले गीत के बोले सुनो।

तू पिलामन असन आमचो देश के बचा तो काजे आमचो वीरस पुरुष भाई मन कितरो लड़ला कितरो लोग के फांसी दिला कितरो लोग की गोली मारला असन करुण बारी आमचो देश के बचाला देश जो मान सम्मान के बचाला आज ही उन मन की आमी कितरो सुरता करूँ से और उन मन की 15 अगस्त 26 जनवरी काजे मंचो नाव धरूँ से यार उन मंचो फोटो के पूजा पाठ करूँ से असन बीस पुरुष मन के नाव धर तो रहा है पूजा पाठ कर तो रहा है और बारी आमचो देश के बचा तो काजे और देश जो कहीं काम कर तो काजे आम के अच्छा कर्म कर तो रहा है ते भी आमचो नाव रह दे जसन कि अभी आमी आमचो देश जो बीस पुरुष मन चो नाव धरूँ से उसने लोग मन नाव धर दे देश काजे समाज काजे आम के नाव धर तो रहा है नाम कमात रहा है नाव जगात रहा है पिलामन पढ़ाई लिखाई करुन बारी तुमन मन चो नाव संग संगे माय बाप चो बले नाव गांव कुबे बाड़े दे असन सोच विचार करुन आम के देश सेवा कर तो रहा है।

0: अभी आप सुन रहे थे पिलामन काजीगोट हल्बी बोली में, प्रस्तुति थी सुब्लूराम कश्यप की। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

0: रोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य अंगना संचिता उब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिंफनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम

0: ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषि जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
2: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वर्णा नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
3: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता

0: कोसुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्तेस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a

0: Chauhan expresses confidence rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Center assures all possible assistance to flood-affected states. U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk, Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semifinals. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पहला गीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। गीत लिखा है हजरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है एसडी परमन ने।

0: सामने।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट।

0: the perfect concrete choice.
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म तीन देवियां से।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। जब प्यार किसी से होता है, लीजिए सुनिए इस फिल्म का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है फिर कब मिलोगी। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत आरडी बर्मन का।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम ओवाट। इस कार्यक्रम में सुनिए शासकीय योजनाओं की जानकारी के तहत। विषय है किसान नीति। प्रस्तुति है लखमुराम मरकाम की।
1: वाट कार्यक्रम सुन तो सपाय गांवकारी दादा दीदी बोड़ू बढ़ाए संग जोरिया संगवारी मन के जुहार। असनी आमी रोजे दिने नुआ नुआ वाट धरुन एहू से। उसने आजी आमी नुआ वाट धरुन इलू से जेचो नाव आए कृषि नीति बल्लोनी किसानचो नीति आले एके सुनु। आमचो भारत देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश चो अर्थव्यवस्था खेती किसानी ले जुड़ली से। 70% जनसंख्या चो मूल व्यवसाय खेती किसानी आए। भारत चो जीव गांव ने बसली से। देश चो आत्मा बल्लो ने जीव खेती किसानी आए। देश चो सकल घरेलू उत्पादन चो 16.5% हिस्सा खेती किसानी ले मिरे से। आमचो राज्य ने कुल घरेलू उत्पादन खेती किसानी ले भागीदारी 13.35% आसे। कुल घरेलू उत्पादन में खेती किसानी ले भागीदारी चो स्तर रोजे एक जसन नी रहे। कोनी साले बाढ़ती तो कोनी साली घटती चो सामना करु पड़े से। घटती आमचो राज्य का जे चिंता चो विषय आए। बाढ़ती जनसंख्या विकसित होते जाए से कल कारखाना शहरी क्षेत्र चो विकास ये सब ने प्रभाव पड़े से। खेती कर तो भूई लगातार कम होते जाए से। रोजे दिने खेती किसानी भूई चो जगह कम होते जाए से। किसान उत्पादन बढ़तो चो जिम्मेदारी बाढ़ते जाए से। और ये तो दिने बले बाढ़ते जाऊआ। राज्य ने प्रति व्यक्ति 0.3 हेक्टेयर कृषि किसानी भूई उपलब्ध आसे। और ये उपलब्धता चो कारण बाढ़ती दिने और कम होते जाऊआ। देश चो किसानी व्यवस्था और नंगत किसान काजे भारत सरकार 1871 ने स्वतंत्र रूप ले किसान विभाग चो स्थापना कर ली से। 1871 ले 1885 चो मंजी प्रांतीय स्तर ले किसान विभाग शो स्थापना करला सत। हुनी काजे भारत देश ने कृषि महाविद्यालय 1905 ने पुणे और 1906 ने कोयम्बटूर ने स्थापित करला सो। 1906 ने देश चो किसान और गांव चो अर्थव्यवस्था चो जानकारी काजे रॉयल कमीशन चो गठन करला सोत। ये आयोग के देश ने किसान चो बाढ़ती और गांव चो विकास चो समृद्धि विषय ने विचार करतो चो जिम्मेदारी सौंपला सोत। 1976 ने राष्ट्रीय कृषि आयोग चो गठन करलोर

आसे ये आयोग ने भिने भिने विचार ने सुझाव दिली से सुझाव जसन कृषि अनुसंधान फसल उत्पादन पशुपालन जंगल बाढ़ती मछली पालन मिलुन जुलुन करतोर गाँव चु बाढ़ती किसान वित्त संचार व्यवस्था किसान बाजार व्यवस्था पढ़ाई लिखाई और जन स्वास्थ्य ले संबंधित आसे जबकि दार फसल तेल फसल शक्कर और उद्यानिकी की फसल का जे दूसर राज्य ले आश्रित आसे आदिकाल ले खेती किसानी प्रदेशवासी चो जीवना परंपरा और संस्कृति जुड़ून आसे किसान ले जुड़लो तीज त्यौहार के आजीबल गाँवकारी लोग नेंग नीति ले बनासो किसान भाई बहन मन ही सबले आगर काम बुता रोजगार चो बाढ़ती बुता करसोत भारत संविधान चो अनुसार खेती किसानी राज्य चो विषय आय ये तो जीवना चो खेती किसानी हरित व्यवस्था और जैविक खेती ले निर्भर होय दे और राज्य चो किसान और किसान चो सहायक व्यवसाय के बाढ़ती

भागीदारी और नीति कारक काजे खूबे चिंताचो विषय आए। कृषि पशुपालन संगे और मत्स्य पालन चो सकल घरेलू उत्पादन ने प्रचलित ने और स्थिर भाव ने भागीदारी सन 2021-22 ने 12.30% रली। कृषि नीति चो दृष्टिकोण किसान विकास चो पंचतत्व, पहला भूमि स्वास्थ्य चो सुरक्षा और नैसर्गिक चो संरक्षित प्रबंधन करतोर और उपयोग चो संगे संगे पानी और सूक्ष्म सिंचाई ने विशेष बल प्रदान करतोर। दूसरा कृषि उत्पादन और उत्पादन ने बाढ़ती करुण किसानी क्षेत्र ने रोजगार बनौन अवसर प्रदान करतोर। तीसरा समया समया ने कृषि आदान और लोन व्यवस्था उपलब्ध करातोर। चौथा कटायोंतर प्रबंध चो संघ सम्मिलित खाद प्रसंस्करण चो विकास करतोर। पाँचवा तकनीकी ज्ञान के गांवकारी दादा दीदी मन लगे अमरातोर और प्रयोगशाला चो माध्यम ले बेड़ा चो खाई के कम करतोर। किसान विकास चो कुल उत्पादन कारक, किसान विकास ने 12 विभाग एवं 6 संस्था मन के मिसाउन ये सपाई विभाग और संस्था ने आपसी तालमेल बनोन कुल उत्पादन कारक के गतिशील बनोक सकूं से। किसान अनुसंधान, किसान विस्तार सेवाएं, भूमि पानी पोषक तत्व जैव विविधता सिंचाई ऊर्जा विपणन सुदृढ़ अधोसंरचना ये सपाई कुल उत्पादकता कारक चो मुख्य आधार आय और कुल उत्पादकता कारक चो विकास ही किसान चो गोटोक महत्वपूर्ण चरण आय। किसान विकास के बाढ़ती बाटने नीति और कुशल प्रबंध और ये ने निवेश चो विस्तार नीति चो मुख्य आधार आय। किसान विकास ने संलग्न जमाय विभाग ने परस्पर संबंध स्थापित करुण भांति लक्ष्य प्राप्त करतोर आय। प्राकृतिक संसाधन समुचित प्रबंध करतोर। कृषि अनुसंधान विस्तार कृषक बाजार और आदान प्रदान करतो श्रृंखला के मजबूत प्रदान करतोर। खेती किसानी काम बुता निवेश के बढ़ावा देतोर। खेती किसानी उत्पादन काम बुता के बढ़ावा देतो। खेती किसानी नुआ ने बाढ़ती जीवना करतो काजे जोखिम उठातो। कृषि परिदृश्य और सिहावलोकन, छत्तीसगढ़ राज्य चो भू उपयोग संबंधी कृषि सांख्याकी भौगोलिक क्षेत्र 13,790 हेक्टेयर आसे जेने वन क्षेत्र 6,336 हेक्टेयर आसे। खेती काजे अनुपलब्ध भूमि 712 हेक्टेयर आसे। पड़त भूमि के छाणुन और भूई जेमे कास्त भूमि करतुक छाणुन 856 हेक्टेयर आसे और पड़त भूमि 528 हेक्टेयर आसे। निराकस्त जो क्षेत्रफल 4,770 हेक्टेयर आसे। खरीफ फसल काजे क्षेत्र 6,401 हेक्टेयर आसे और रवि फसल काजे 1,661 हेक्टेयर क्षेत्र आसे और येचो संगे संगे दुई फसल भूई 1,631 हेक्टेयर आसे। नीरा सिंचाई क्षेत्र 1,335 हेक्टेयर आसे और फसल सघनता चो क्षेत्र 134 हेक्टेयर आसे। कृषि जलवायु क्षेत्र, राज्य ने जलवायु ने विविधता आसे जेचो अनुसार राज्य के तीन कृषि जलवायु क्षेत्र ने बाटलो आसे। पहला उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसर छत्तीसगढ़ जो मैदानी क्षेत्र और तीसर बस्तर चो पठार। ये कृषि जलवायु क्षेत्र जो जलवायु और माटी चो भिन्न भिन्न प्रकार आसे ये तीनों क्षेत्र ने मुख्य फसल धान आए। ये सपाय जगह ने व्याप्त विभिन्न आसे ये सभी क्षेत्र चो माटी चो उपयोग करुण भांति और फसल के बल विकसित करुक सकूं से। ये चो काजे बल बढ़िया संभावना आसे और ये सपाय क्षेत्र के आगे सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र ने बाटून उनके उपयोग करुण विकसित करुण किसान मन के बाढ़ती चो बाटने नियुक्त सकूं से। राज्य चो जिला अनुसार दखलों ने उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र ने सरगुजा कोरिया जसपुर रायगढ़ आसे और छत्तीसगढ़ चो मैदानी क्षेत्र ने रायपुर महासमुंद धमतरी दुर्ग राजनांदगांव कवर्धा और बस्तर चो पठारी क्षेत्र ने बस्तर दंतेवाड़ा कांकेर आदि आसे। किसान विकास ने परिस्थिति जन्य प्रमुख सीमाएं, किसान चो विकास ने सामाजिक आर्थिक तकनीकी और अधोसंरचनागत परिस्थिति अन्य सीमा आसे। ये चो सीमा प्रमुख रूप ले गांव और शहरी क्षेत्र ने असंतुलन कृषि भूमि चो बिखराव लघु सीमाएं किसान मन भिन्न भिन्न आसत। किसान मन चो आर्थिक दशा अपर्याप्त सुनिश्चित सिंचाई अपर्याप्त भंडारण।

0: नी और अलाभकारी होली से किसान लग जे भूई आसे हुन बल कई टुकड़ा ने बटली से जे जमीन नानी नानी टुकड़ा ने रलेक आगर पैसा खर्चा होय से सीमांत कृषक के आपलो जमीन ले वार्षिक आय कृषि मजदूरी ले कम मिरे से जेचो कारण किसान आपलो जमीन के छानून गांव ले पलायन कर सोत कृषि भूमि के दूसर काम ने आनतोर खेती किसानी काजे उपलब्ध भूई के दूसर उपयोगी काम ने आनसत राज्य चो किसान भूमि जे प्रति व्यक्ति रकबा 0.3 हेक्टेयर उपलब्ध आसे और ए तो बीती समयाने और कम होक सके से गोटोक अनुमान ले जे अनुसार भारत वर्ष ने प्रति वर्ष लगभग 1,00,000 हेक्टेयर कृषि भूमि के दूसर काम काजे उपयोग ने आनसोत जनसंख्या वृद्धि घटतो कृषि उत्पादन ने अस्थिरता खाद्यान्न सुरक्षा काजे खूबे गंभीर चुनौती आए असने जमाए अनियमितता परिस्थिति ले चुनौती चो सामना करुन भाती संतुलन स्थापित करतो चो प्रयास करतोर आए आजी मैं सांगले किसान नीति के अपनों बढ़ती जीवना ने आगे बढ़तो राय सपाए के जुहार
1: एक मजबूत पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
3: उवर्ट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शासकीय योजनाओं की जानकारी के तहत विषय था किसान नीति प्रस्तुति थी लखमूराम मरकाम की मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है लीजिए सुनिए बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत

0: अभी आप सुन रहे थे बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के गाए हल्पी लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम परिचर्चा हल्पी बोली में। विषय है बस्तर की लोक साहित्य लोक संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। प्रतिभागी हैं रुद्र नारायण पानीग्राही और विक्रम कुमार सोनी। संचालन है बलबीर सिंह कच्छ का।
3: रेडियो सुन तो भाई बहन मन, आज आम्ही फिर बल्लेने जसन की अपन मन जानास बल्लेन का है कि बस्तर जो लोक संस्कृति जो संरक्षण आरु समर्थन करतो जो गोट बात आम्ही करूँ दे आरु एचो काजे आजी आमताने बल्लेन का है कि दुजन लोक साहित्यकार मन इलासे श्री रुद्र नारायण पाणिग्राही आरु श्री विक्रम कुमार सोनी तो ए दोनों संगे मैं गोट बात करें दे कि आमचो चुन बस्तर चो लोक संस्कृति आए कला संगीत आए लोक साहित्य आए बोले न कितलो उन्नति बढ़ती होली से आरु कसन एचोले लोग मन प्रेरित होन उनमें चो ज्ञान बाढ़े से तो सबले पहले मैं रुद्र नारायण पानीग्राही पूछवाएं भी आम चो बस्तर चो लोक कला हिसाब ने लोक साहित्य हिसाब ने बोले ने एवे काय आम के दखा दे।
4: सबले पहले तो आम चो प्रोग्राम सुन तो जितरो बोले दादा दीदी मन आसत हन मन के मैं अमृत महोत्सव चो बधाई देंगे और जितरो बोले आम चो बस्तर ने आज़ादी चो पाछे लोक साहित्य चो बढ़ती होली से

0: दुई चार जन चो नाव के मैं धरें दे, जसन पंडित गंगाधर सामंत बोलते गोटक सियान रला, गणेश प्रसाद सामंत रला, देवी रत्न अवस्थी करीर रला, ये असन लोग मन आजादी चो आगे बले लोक साहित्य चो खूबे सेवा करला और उनमन हुनमन चो रचना मन बोले कहाँ कहाँ बोले छपली और हुन छपलो बीती के बोले आज ही बोले आमी पढ़ुन सुनुन उनके मनन करूं से उनके सीखो से के हो दलदाई चो लेखनी कसन रहे काय के दखुन साहित्यकार मन लिखते रहला कसन लिखला और आज ही चो आज ही बोले आजादी चो पाछे खूबे बाढ़ती होली खूबे लिख सत बस्तर चो संस्कृति ऊपर साहित्य ऊपर काका ऊपर लोक बोली भाषा ऊपर बोले काम हो से और मोचो हिसाब ने आजादी चो पाछे खूबे काम होली से
1: तो ये तो अच्छा गोट की सुरता कर लास की आजादी चो पहले ले बोले काय की कई आमचो जन बुद्धिजीवी जैसन कि तुम नाम धरला से मन मोर करला आमचो बस्तर चो लोक संस्कृति की लिख तो काजे मंतर जसन जसन का है कि बस्तर चो मल्ले ने कहा कि स्कूल मन खेल खुलते गेली लोग मन खिनिक पढ़ा लिखा होते गेला और उन मन चो मन ने बोले सोच इली कि आमचो लोग संस्कृति के बचा तो काज कहीं ना कहीं आमी करूँ तो विक्रम कुमार सोनी भाई मैं पूछूँ अभी कि जैसन कि ए बेले तरुण बल्ले ने कहा कि 15-20 साल जो पहल बल्ले ने कितलो बल्ले ने कहा कि जो संरक्षण संवर्धन का जो लिखित रूप में सामने आम के दखा दे से
2: ये हम जो बस्तर जो लोक संस्कृति जो संरक्षण का जे जे प्रयास होली से उन सही मायने ने आज़ादी जो पाछे ची होली से आगे तो आज़ादी तो आगे लोक संस्कृति लोक परंपरा कला के संरक्षित कर तो काजे कहीं खास उगाट नहीं करला उदलदाय कहीं उतलो संसाधन बल नहीं रहे आज़ादी तो पाछे जैसे आकाशवाणी खुल ली दूरदर्शन केंद्र खुलला और नवा नवा कॉलेज स्कूल खुल तो के लोग पढ़ुक बल सीखला तो पढ़ुन लिखुन लिखुक मोरियाला और शोध कार्य बल होली तो हुन हिसाब ने बस्तर ने आज़ादी तो पाछे आज ले धरुन 30-35 बरख आगे ले खूबे काम हो मोरियाली तो आमचो जो लोक साहित्य मन साहित्यकार मन रला जसन कि आमचो जूना साहित्यकार मन ने लाला जगदलपुरी जी और गणेश प्रसाद पानीग्राही जी रला अभी पानीग्राही जी और नाव मन धरला जसन कि गंगाधर सामंत वगैरह मन रला ये मन लोक साहित्य और संगीत कला जो विविध जो रूप आसे उन ऊपर खिंडिक लिखला और रेडियो ने भेंट वार्ता ने या परिचर्चा ने बले ये ऊपर खिंडिक गोद बाट करला तो प्रकाशन चो जसन सुविधा होली उसने रिकॉर्डिंग चो सुविधा आकाशवाणी बाटले होली तो खूबे जितलो गांव गांव ने लोक कलाकार रला उन मन चो गीत और वादन जो संगीत आसे और बल लोक साहित्य आसे हुन जो अभिलेखीकरण होली ऑडियो कैसेट बनली और ये जितलो माध्यम रला हुन जो कारण ने लोक कला लोक संस्कृति जो संरक्षण जो काव खूबे तेजी ले बाढ़ ली मैबल पीला रहा तो बेरा रेडियो आकाशवाणी केंद्र था खुल तो के मैबल गाउक मोरिया पीला बेरा ले तो आम की प्रेरणा बल मिल लिया था रेडियो चो माध्यम ले आप लोग संस्कृति भाषा के संरक्षित कर तो काजे उन संरक्षण कर तो काजे ज्यों ज्यों बड़े होते गेलू तो ये दिशा ने हम खूब खिंड

0: और एबे विक्रम कुमार सोनी जो लिपि के बनाला और सबले पहल उन गोटक लघु कथा बल्ते गोटक किताब निकराला से उन किताब ने लिपि और देवनागरी लिपि हल बीचो उन दोनों भाषा ने उन प्रकाशित करला से उन चो संगे संगे आमची संगवारियात नरेंद्र कुमार पाढ़ी जी उन मन चो बोले गोट कविता संकलन छपली और उन कविता संकलन बोले पहिल हार देवनागरी और हल्बी लिपि ने छपली से।
1: अच्छा
0: एबे असने दखा दखी उनके आम के और प्रचार प्रसार करतो रहे लिपि ने हल्बी चो लिपि ने साहित्य छपो ये आम चो विचार है और उन चो प्रचार प्रसार का जे आमी जितरो बोले हो सके उन आम प्रयास करूं दे और ये चो प्रचार प्रसार हो और ये तो बेरा जो आए ये चो लेखन बोले लिपि ने ही हो ये चो संगे संगे आमी एबे आजी काली जो आए बस्तर ने गोटक साहित्य अकादमी बादल बलतो नाव ने खुले से जहाँ आम चो जितरो बले लोक कला आए संगीत आए कहनी आए ठसा आए नाट आए जगार गीत आए मुक्तावली गीत आए ये जमाई के होता दस्तावेजीकरण करतो काजे गोटक अकादमिक काम होए से उन आजी काली उनके मुरादे बे था और हुता बोले काय काम होए थे आगे तो ये बोलुक नहीं सकूं मानते रेचो काजे सरकार बाटले अच्छा प्रयास होली से और हुता काम करतो काजे हम के बोले मन होए से कि हमी हुता मिसुन काई बोले दस्तावेजी चुकरण दस्तावेजीकरण काम के हम करवा ये मने विचार है से हम।
1: अच्छा तो रुद्रनारायण पानीग्रह तुम्ही इतलो अच्छा सांगलास की आजादी चो बात ने आम के इतलो मतलब स्वतंत्रता मिरली इतलो हक मिरली कि आमी जो आमचो खुद चो चीज के काय की बाहरी आंतर कोशिश कर लूँ सपाए कलाकार भाई मिसुन बाती जैसन कि मग बोले सुरता है ऐसे कि नाट तो गोटियालू छू मानतर ऐसी संग संगे कई मंची नाटक बल होली जैसन कि अभियान चंद संस्थाने ये मुजरा मांझी छो नाटक बल करला है कि नहीं
0: अंधार राज बया
1: अंधार राज बया राजा होली और हिमांशु शेखर उन गोटो घोटुल चो बोले नाटक बनान वाती मंच ने प्रदर्शन करला बोले ने कई आम चो जो लोक विधा है उन पूरे एते के लिए बोलू है कि नहीं
0: आगे तो ये हिंदी ने होते रहे
1: पचे
0: पचे आम चो नाट गुरु मन दखला कि हल्बी चो जुगे करुन लोग मन मन कर सत और अखिल भारतीय स्तर ने बोले हमें बहुभाषी नाट्य प्रतियोगिता ने बोले हमें एता चो हल्बी भाषा ने जहाँ जहाँ बोले हमें नाट कर लू दखा लू खूबे लोग मन करला
1: तो ये तो अच्छा गुड बात हुए से मंत्र विक्रम कुमार सोनी फिर मैं पूछ लगे ऐसे कि जैसन कि कई साहित्यकार मंचो ना बले धरला उन मंचो पुस्तक लिख लो बीती बले सांगला तो और जैसन कि रुद्रनारायण भारी जो सुरता नहीं ली तो उनके बोले तुम सुरता करण बाती

0: कटक बड़े नाव आए हरिहर वैष्णव एवे एवे देवलो खोला से उन जगार का जे खूबे बूता कर ला हम चो जो बस्तर ने तीन ठन जगार आसे लक्ष्मी जगार बोलुआत ये ओड़ियान ने जुगे हुआ है मात्र हम चो ओड़ियान संद ने बल बस्तर ने बल हुआ है उन तो ची चारों जगार के हुन रिकॉर्डिंग कर ला ऑडियो वीडियो और जगार गीत मन के बसुन लिखते गेला सुनते गेला लिखते गेला टाइप करते गेला और किताब रूप ने उनके प्रकाशित कराला तो ये चारों जगार जो यार तो महाकाव्य यार
1: हाँ, तो
0: कई हजार 20,000 25,000 होता लाइना से और हुन हम जो मुखचरण परंपरा ने रहे मौखिक परंपरा ने उन चो कोनी लिखलो साहित्य नहीं रहे प्रकाशित होलो बीती तो गुरु शिष्य परंपरा ने उन गुरमाय मन आप लोग चेला चेली मन के सिखाओ तो आज जो हिसाब ने ये परंपरा खिंडी लुप्त होते जाए से नवा पीढ़ी च लोग नहीं सीख सक तो उन चो अभिलेखीकरण चो काम हरिहर वैष्णव कर ला और ये खूब बड़े काम है क्योंकि चार चार महाकाव्य के लिपिबद्ध करतो और किताब के रूप में छपातो सबले कोई तो काम उनके रिकॉर्डिंग करतो खूबे मेहनत जो मसाला का काम है उन करला उन चो पाछे और कैक शोधार्थी मन आसो होते था उन मन घोटूल और दूसर परंपरा उपरे वाले लिखला सो लोक कथा मन चो जसन की हम लाला जगदलपुरी जी ये चो पूरे लोक साहित्य के जसन संकलित करला और छपाला हम चो खास करून लोक कथा के हम चो कहनी धंधा जितलो आसे उनकी और व्याकरण के बले लाला जगदलपुरी जी लिखला उन्हीं परंपरा के हम जो गणेश प्रसाद पानीग्रही जी उन व्याकरण के धरून और शिक्षा हलवी ने स्थानीय भाषा ने शिक्षा डाइट ने रला तो शिक्षा का जे अलग से पाठ्यक्रम बनाला कॉमिक्स किताब तैयार करला उन चो पाछे हम चो पीढ़ी इली तो हम बोले जितलो हम के गीत गोविंद कह का ठसा जितलो मीरे से उनके संकलित करते जाओ से हम चो रुद्रनारायण पानीग्रही जी गदिया बोलून हलवी चो कह का और ठसा मंच संग्रह निकराला से और बोले क्षेत्र ने गोटो का और किताब नवाए मंचो ये हुए और हुन मन और मैं हलवी व्याकरण बोले भी और तैयार करूँ से छपा तो काजे असन हलवी व्याकरण तो सबले पहल ठाकुर पूरन सिंह चो नानी असन किताब छपू रहे 1937 ने उन चो पाचे नानी नानी सुनी असन किताब मन लिखला मात्र हुन इनफॉर्मेटिव रहे बड़े व्याकरण बल्ले कोनी उतलो नहीं छपू रहे ये हरिहर वैष्णव पाँच एक बर काजे गोटक छपाऊ रहा तेबे और विस्तृत व्याकरण पानीग्रही जी बल लिख सक मैं बल लिख सक हम लिखलू से छपातर बाचली से
1: अच्छा
0: तो उन व्याकरण ने लोक साहित्य चो खूबती जे आए दे जसन की हम चो कह का आसे ठसा आसे गीत बली ए दे बट हम चो भाषा शैली व्याकरण ने भाषा शैली चो बल संरक्षण हो दे धीरे धीरे मनुख काय हो से कि दूसरा भाषा चो प्रभाव नहीं हो नापलो भाषा के खंडिक नशा ऐसे तो व्याकरण लिख ले उन भाषा चो सुरक्षा हो दे उन चो स्वरूप चो सुरक्षा हो दे उन चो ग्रामर चो स्वरूप कसन आसे हूँ और चो संग संग आमी दूसरा काम एक करूँ से कि हम हिंदी नाटक करते करते हलवी नाटक करूँ से तो हम होता बस्तर चो लोक कथा मन के उन चो विषय वस्तु बनाऊँ से तो जसन किए बे अंधार राज बया राजा कह नहीं रहे अंधेर नगरी चौपट राजा अनुवाद रहे हमी बस्तर च भूमकाल कहनी के हलवी नाटक चो रूप में काय तो प्रदर्शित करा लू हम चो बकावन ब्लॉक चो करा भाटा चो नाट गुरु रला शालिग्राम ठाकुर हुन मन के बोल लू की हम चो भूमकाल जो हो रहे क्रांति ये चो ऊपरे तू हलवी ने नाट बना तो नाट बनाला तो भारत हम चो छत्तीसगढ़ शासन बांट ले उन मन के संस्कृति विभाग ले हाथ दिला और रायपुर और कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ ने उन चो नाट चो प्रदर्शन होली।
1: अच्छा
0: तो हम चो जो पारंपरिक हम दंत कथा च रूप ने गुंडा धुर चो बारे ने और भूमकाल क्रांति च बारे ने सुनते हूँ से अब हूं चो एक अभिलेखीकरण या कला च रूप ने प्रस्तुतिकरण होली तसने अभी हम चो गोटक लोकनाट्य आसे नाट मुंद्रा मांझी
1: हाँ
0: तो उनके नाटक के रूप ने तो हिंदी हलवी मिश्रित भाषा ने प्रदर्शित करते

0: रहूं।
1: हाँ।
0: अभी हम जो संगवारी कलाकार जी एस मनमोहन हूँ चोपरे हिंदी फिल्म बल बनासत।
1: हाँ।
0: सिनेमा
1: अच्छा
0: तो कथा तो हो नहीं रहे दे।
1: हाँ।
0: जो पारंपरिक कथा है।
1: हाँ।
0: माध्यम भाषा च माध्यम बदले दे तो हम जो लोक साहित्य च प्रचार हिंदी भाषा चो हल्वी हिंदी भाषा च फिल्म नहीं ले।
1: हाँ।
0: तो हम जो लोक साहित्य के बदले लोग जान दे
1: जान दे। हाँ।
0: तो असन हम के दोनों भाषा ने काम करो लागे थे आप लो भाषा ने और आप लो भाषा जो संस्कृति जो चीज बन के हिंदी नहले दूसरा भाषा ने बोले लिखो लागे दे तेबे दूसर लोग बोला हम चो भाषा चो प्रति आने के रुचि दिखा दे हम चो कला संस्कृति चो प्रति।
1: हाँ ये तो अच्छा है। मतलब मैं बोले मतलब सुरता ऐसे कि जैसन कि आम चो आकाशवाणी केंद्र ने वरिष्ठ उद्घोषक के में रहीम बल रला उन्हें भी वरिष्ठ रंगकर्मी बोले आत इमन बोले का है कि आम चो लोक संस्कृति चो ये पूरे खूब काम करला जैसन कि झिटकू मिटकू गोटक नाटक बोले रली उनके खूब लोग जानला खूब मन करला और इसी संग संग का है कि बाहरी मंचन बोले का है कि उन मन बोले ने हर समय ने कहीं कहीं करते रहे सोत लोग मन के जगाते रहे सोत और लोक नृत्य हिसाब ने आमी देखूँ जैसन कि एता चो जो सबले बड़े एक प्रतिनिधि लोक नृत्य हिसाब ने गौर नृत्य बोलूँ से ये दंतेवाड़ा बाट चो मैलावाड़ा है मोकपाल है एता चो आम चो भाई बहन मन बोले आम चो देश संग संगे दूसर देश ने बोले जाऊन पाती कर सोत और जैसन कि हमें नारायणपुर जिला के हमें सुरता करूँ तो ताले
2: माद्री नाचा है
1: मंडी बेरा है ये सब जैसन कि कीचो राम बलगोटक प्रसिद्ध नृत्यकार रहो गोंडीचो तो असन असन का है कि आम चो जो लोक संस्कृति आए बोले आम चो भारत संगे संगे का है कि विदेश ने बोले फैल ली लोग मन जान सोत तो ये आम चो का जे बोले ने खूबे अच्छा गोट है आए कि नहीं बोले ने आज़ादी हो तो कि आम के कितलो हक मिल लिया आम चो खुद चो चीज के बचा तो काजे
2: साहित्यकार मंचो नाव संगे संगे साहित्य चो बोले जहाला होली और मंचो बोले नाव होली और बस्तर चो संस्कृति चो बोले नाव होली
1: नाव होली। हाँ तो रुद्र नारायण पानीग्रह जैसन कि आमी जैसन कि आम की स्वतंत्रता मिली आमी लोक संगीत चो ऊपर खूब काम कर लूँ जानू से तो बोले ने अगर आमी देखूँ कि परिणाम चो रूप ने बोले नाम का बोलू सकुआ
2: देखा इतरो सब कुछ मिरलो पाछे बोले आम के लागे सके कैक चीज छूटली से उनके बोले लिखित दस्तावेजीकरण करुक लागे दे मके सुरता ऐसे एम ए रहीम बोले जसन अभी हम गोठियालू भूमकल नाट हुन लिखला उनके बोले हमें रायपुर ने उन हुन मंचो निर्देशन ने बल काम कर लो मैं बोले एक हार हुसने भूमकाल लिख ले हुनचो बोले रायपुर ने प्रदर्शन हो लिया बोले मंचन कर लो असने कई गीत आसे लोक कथा मना से पारंपरिक गीत मना से जसने भी मैं बोले से आम चो विश्व प्रसिद्ध दशहरा आम चो बस्तर ने हो से दशहरा चो लागून बोले कई असन पारंपरिक गीत मना से जसन गोटक एक रुसुम हो से रैला देवी रुसुम ने गोटक शोक गीत मिर्गान जनजाति चो लोग मन उनमन समाज चो लोग मन गौवा हुन कहा ये भी दस्तावेजीकरण नहीं होली से
1: अच्छा
2: उनके असन शोक गीत के जैसा नामे मुक्तावली गोटक गीत है धान मिंजई बेरा लोक गीत मन हो
1: से
2: तो खूबे आकाशवाणी ने बोले आसे मानतर ये श्रव्य माध्यम जे के हमें सुनू से
1: हुनी
2: माध्यम नहीं आसे अच्छा होती के ये किताब जो रूप ने आम चो पूरे हो पर तो लेखा लेखी मन बोले जानो और आम चो ये तो पीढ़ी चो लोग मन बोले जानो ते भी आम की असन लागे दे कि आमी ये तो पीढ़ी काजी कहीं करूं गेलू नहाले असने रलो ने टोंडे रलो ने हुन नहीं होए जैसे ने धलकुन गीत के बोले गांव सुजे कई प्रकार चो अलग अलग क्षेत्र ने अलग अलग धलकुन गीत आसे हरिहर वैष्णव जी तो खूबे काम कर ला जीवना भर उन दलकुन के जितरो बोले जगा रहे उनके करला और हुन जगार चो लागुन विदेश चो यात्रा बोले करला हुसने ये भी आम चो बस्तर जिला ने कई प्रकार चो और बोले लोग गीत गाओ तो लोग आसे एक के जमाई के आनुन हुन चो रिकॉर्डिंग करुन उनके श्रव्य माध्यम ने आकाशवाणी चो और दूरदर्शन चे माध्यम ने बोले हमें सुनाऊ और दिखाऊ हुन चो संगे संगे ये पारंपरिक लोकगीत और ये मंचो दस्तावेजीकरण बोले हो ताकि ये तो पढ़ तो पीला मन काजे बोले हो काम चो रहो।

0: ये हमचो विचार है।
1: हाँ हाँ तो विक्रम सोनी भाई जैसन कि अभी तो काम होते जाए से मानतर और बोले ये चो जो संरक्षण आए संवर्धन का जे बोले ने और काय कड़ुकलाय पड़े दे आम चो जो भाई बहन मन के कसन आगे उकलाय लागे दे
2: ये चो बारे ने मैं यही विचार करें से कि हम के ग्राम पंचायत स्तर ले काम को रुक लागे दे हम चो हर एक ग्राम पंचायत जो क्षेत्र भितरे कितलो असन लोक कलाकार आसत कहानी जानतलो धंधा जानतलो गीत कुरीन मन आसत गीत कुरिया मन आसत नाट कुरिया आसत कई किस्म चो कलाकार बजात लोग आसत तो जसन की भिने भिने वाद्य यंत्र आसे बिया बाजा बजात लोग आसत तो आप अलग अलग जनजाति चो लोग आप लोग अपलो पारंपरिक वाद्य यंत्र बजात लोग आसत नाचत लोग आसत तेमन चो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर तो जरूरी है और ये मन लगे जितलो मौखिक परंपरा ले लोक साहित्य आसे कहानी धंधा गीत और बोले कहीं विशेष गोठ आसे तो उनके रिकॉर्डिंग करून लिपिबद्ध करूक लागे दे अभिलेखीकरण कर लागे दे और उनमें के सम्मान बल बराबर सरकार बाट ले मिल तो रहे सम्मान और संरक्षण जैसन कई कैक लोग असन आसो कि दुई पहाड़ चूल्हा उनमन घर
1: तकली साहब
2: जरो उन चौका जे गांव के छान उन शहर ऐसो यथा कुली कर सो तुन कला ले लाफी होला यथा मजदूरी कर तो बीता दिन भर खटे से और घरे जाए से सांझ बेरा तुन चो कला उतलो तक सीमित होली उन गाय रहतो तो गांव चो वातावरण ने आप लोग कला चो प्रदर्शन कर तो आ नवा पीढ़ी चो लोग सीखता तो असन गरीब कलाकार मन की खिंडी आर्थिक सहायता बोले मिल तो सरकार बाटले वो आठ करूप लागे दे और नवा पीढ़ी के बल जागरूक करूप लागे दे कि जे पीला मन गांव ने आसो उन मन उन कला के सीखो।

0: मन के कॉलेज पाठ्यक्रम ने बोले संगाले एक आत्मविश्वास और गर्व भावना ए दे पढ़े लिखे पीढ़ी के बोले और उन सीखे दे और उन प्रैक्टिकल बोले होते रहे जैसन गायन वादन नर्तन जो नाव ने संगीत जैसन गोटक विषय संगीत रू है तो लोक संगीत जो विषय बोल रहो लोक नृत्य जो विषय बोल रहो स्कूल ने कम से कम हाई स्कूल और कॉलेज ने तेबे उन चो संरक्षण कर तो काजे अपने आप बाट निकरे दे और उन चो फायदा बल हो दे कि संरक्षण हम नवा पीढ़ी के दे तो काज करूं से संवर्धन करूं से तो ये चो काजे सरकार के और कलाकार मन के समाज के मिसुन कहीं उवाट करूक लागे दे।
1: ये तो अच्छा गोट के सांगला से जसन की ये बे जसन की नए शिक्षा नीति जोन बोल सोत पांच धन तीन धन तीन धन चार ने ये भी तो शुरू नहीं होली समांतर ये बोले कई असन आसे मतलब व्यवस्था आसे मतलब शुरू होली बल्ले ने पता चले दे कि एता काय काय चीज के प्राथमिकता दिली से असन तो जसन की अभी कई काम चो बस्तर विश्वविद्यालय ने बल्ले ये चो कोर्स मन बल्ले ये नया नया शुरू होली से ये लोक संस्कृति ऊपरे मांतर दसन की मैं मचो बल्ले सुरता ऐसे कि गाँव ने जसन की दो तीन गांव की मिलन बाती गोटुक बाजा मोर या गोची बाजा जे के बोलू से बोले कांची बोले काम होली बाजार हो तियार बाहर हो कहीं देर दाम हो पूजा पोटा हो तो हुन मंचो बोले बड़े महत्वपूर्ण रहे से और हुन मन पूरा बाजा मोहरी बजान बाती पूरा संपन्न कर सो है कितलो देवी देवता मंच उन मन की ज्ञान आसे हुन मंचो हिसाब ने पाड़ मन बजाते जाए पारंपरिक ज्ञान है तो असन ज्ञान मन के का है कि रेडियो बाटले बल्कि ने कोशिश तो हो सी थी मंत्र ये चुका जो का है कि गांव चो लोग मन की बोल तो पूरी उन बाती उनकी
0: उनकी जागरूक
1: जागरूक पड़े से जैसन की कहीं बोलती यार बार हो से हमें जैसन की बिया शादी बोला हमें गांव ने बनाऊ से मंत्र आजकल दखो से कि गांव चो जो मूल बाजा है उनकी छाण उन बाती
2: बाजा मोहरी के बोले
1: गुचा है
2: वाद्य यंत्र मन के हुन मन बजा सो
1: बजा
2: उन बाजार ने बोले मेरे से और बजा तो लोग मने नावा दखन उनके बजा तो काजी सिख तो और उनके बजा तो मंत्र ये एके भुलकला जाले तो फिर मस्कुल है
1: मस्कुल है
2: जो पारंपरिक चीज के सियान मन सुरक्षित नहीं सगाला बोले ये तो लोग मन कसन
1: कर दे है कि
2: तो ये पीला मन के शिक्षा देतो बोले गांव चो सियान मन चो जिम्मेदारी है कि हुन मन बोले आप लोग पीला जिला मन के आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिन जो बाजा के बजा सो उनके ये तो पीढ़ी के बोले सिखाओ तो उनके करो।
1: हाँ तो देखा जैसन कि आमी लोक संस्कृति संरक्षण संवर्धन जो गोट बात आमी कर लूँ कि सब चीज़ यही है कि जैसन कि माने चो जो जीवना जीवतो रहे से सौ साल हो जितो बल जिए से मतलब उनका है कि एकदम स्वस्थ रहो उन बाती कहीं बीमारी से मारी नहीं पड़ो असन हो उन बाती उन पूरा जीवना जियो ये गोटों को उद्देश्य बोले ऐसे और ये सब चीज़ का है कि आम के ये लोक संस्कृति ने ही मीरे से है कि नहीं
0: लोक संस्कृति बाँच ले आम चो पहचान बल बाँच
1: पहचान बल बाँचे
2: और यही आम चो जीवना बोले
1: जीवना बोले है तो देखा आज ही आमें कितलो अच्छा बिल्ले ने कहा कि आजादी जो अमृत महोत्सव बनाऊ से और ये हिसाब ने कहा कि आम चो गोट बात कर तो कितलो उन चो महत्व के आम की कि जानुक लाए होली है कि
0: सुन ले हरिक बल लागे
1: लागे से गोट मन के तो इतलो अच्छा तो रुद्रनारायण पानीग्रही और विक्रम कुमार सोनी तो इतलो अच्छा गोट बात कर लो जरूर आम चो रेडियो सुन तो भाई बहन मन ये चो जो संरक्षण आए संवर्धन आए ये चो बचा तो काजे पूरे ये दे काम कर दे यही आज ये चो गोट बात रली बोलू बे आल तुम्हें दोनों खूब खूब जुआर
3: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा हल्बी बोली में। विषय था बस्तर की लोक साहित्य लोक संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। प्रतिभागी थे रुद्र नारायण पानीग्रही और विक्रम कुमार सोनी। संचालन था बलबीर सिंह कच्छ का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। गीत रचना असद भोपाली की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना।

लता मंगेशकर के स्वर में लीजिए सुनिए योगेश का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रजनीगंधा। सुरों में ढाला है सलील चौधरी ने।

गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है राजपूत और इस गीत को स्वर दिया है किशोर कुमार ने।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। अगला गीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों को सुरों में ढाला है आर डी बर्मन ने।

0: यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टा कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक ने जैस्मिन पावलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।